श्रोताओं, इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यही सम्पन्न होता है। अलमास रसा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात नेहा बेनीवाल के साथ। इसके बाद 7:05 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सोनू भट्ट ये कार्यक्रम लेकर आएंगे। और 8 आप सुनेंगे दिल के तराने गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम होगा 9 और 8 आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

श्रोता आनंद ले सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक का 10:05 पर और पेशकश होगी आकांक्षा मोहन की। 11:05 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स रंजन अर्नेजा के साथ और इसके बाद श्रोता सुनेंगे 10:00 समाचार होंगे और माफ कीजिएगा 1:00 समाचार होंगे और 1:05 पर आप सुनेंगे बिंदास बोल रंजन अर्नेजा के साथ।

हमारे श्रोता आनंद लेंगे आशियाना कार्यक्रम का 2 बजे और कार्यक्रम लेकर आएंगे शालिनी सिंह। 3 बजे होगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, शैली भाषांजलि यह कार्यक्रम पेश करेंगे।

अल्फा जैन आप सुनेंगे 4:05 पर, और 5 बजे कार्यक्रम आप सुनेंगे सिटी लाइट। इसके बाद 6:05 पर मैसेज मसाला मिक्स, और 7:05 पर होगा वेस्टर्न म्यूजिक।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार

0: बुलियन से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो एक व्यक्ति को जो उठ बैठ नहीं सकता था, कुछ लोग उसको प्रभु के पास लाए ताकि वो उसको चंगाई दे। दोस्तों, प्रभु यीशु ने जब लोगों का और उस लाचार व्यक्ति का विश्वास देखा तो कहा, उठ और अपने घर चला जा। और प्रभु की ये वाणी सुनते ही वो व्यक्ति अपनी खाट उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। ये आश्चर्यक्रम देखकर वहां मौजूद लोग प्रभु की महिमा करने लगे। ये देखकर प्रभु ने लोगों से कहा, अगर तुम भी विश्वास रखोगे तो इससे बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते देख पाओगे।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने बहुत से ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए जिन्हें देखकर लोग यही कहते थे कि हाँ, यही वो मसीहा है जिसकी राह हम बरसों से देख रहे थे। दोस्तों, चार दिन के मरे लाजर को जीवित करना हो या 5 रोटी से 5,000 लोगों का पेट भरना हो या दृष्टिहीन या अपाहिज लोगों को शिफा देना हो, हजारों ऐसे आश्चर्य क्रम प्रभु यीशु ने किए जो इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है जो मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और फिर तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर लोगों के सामने ये कहते हुए स्वर्ग पर उठा लिए गए कि वो दोबारा फिर आएंगे और अपने अनुयायियों को अपने संग स्वर्ग

जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक विश्वास योग बना रहेगा और अपने प्रभु के नाम का अंगीकार करता रहेगा, वही अनंत जीवन का वारिस कहलाएगा।

दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और प्रभु का अनुग्रह आप पर बरसता रहे, हम लेते हैं आपसे विदा। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके या फोन करके जरूर बताएं। मैसेज भेजने या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

आने वाला हर पल जिंदगी की किताब में नया अध्याय लिख जाता है साथियों, और जाने वाला पल चुपके से हमें वक्त की कीमत समझा जाता है। आज का ये दिन भी कुछ ही पलों में याद बन जाएगा। जिंदगी का हर लम्हा हमें यही सिखाता है कि वक्त चलता रहता है, लेकिन उसकी मिठास दिलों में रह जाती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, और विभिन्न माध्यमों से आप विश्व भर में हमें सुन रहे हैं। आज 15 तारीख है और मई का महीना चल रहा है, शुक्रवार का दिन है, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात में, जहां बातें होंगी जिंदगी के बारे में और मधुर गीतों के साथ हम अपने मन को भर लेंगे, क्योंकि जब अच्छा संगीत हमें सुनने को मिलता है तो मन बेहद प्रसन्न हो जाता है। सुप्रभात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे

मन की बात। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के 6:38 और 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं। सुप्रभात में नेहा है आपके साथ। दोस्तों, अगर आपने अगर अपने घर की खिड़की से बाहर देखा है या बालकनी से बाहर देखा है तो सूर्यदेव बहुत अच्छे से चमक रहे हैं और दिन शुरू हो चुका है ऐसे में। और जब दिन शुरू हो जाता है तो एक विचार मन में आता है कि बस वही हमारी दौड़ धूप शुरू हो जाती है, वही मंजिलों के पीछे दौड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर आज के वक्त पर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक भेड़चाल का हिस्सा हैं, जहां हम सभी भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, और जो सफ़र है उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। तो मंजिलों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम सफ़र का मज़ा लें, और प्रमोशन के पीछे भागना, कोई मंजिल हमें चाहिए, कोई अचीवमेंट हमें चाहिए, उसके पीछे दौड़ने से बेहतर है कि हम ज़िंदगी में जो सुख है और सफलता का जो सुंदरता है उसे तब हम महसूस कर पाएंगे जब हम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देंगे। हर पल को केवल कुछ हासिल करने की दौड़ में जीने की बजाय अगर हम अपने काम, रिश्तों और जीवन के अर्थ को महसूस करेंगे तो खुशी अपने आप हमारे भीतर जगह बना लेगी। और ऐसे ही विचार हैं एक जाने माने मनोचिकित्सक के, जो कहते हैं कि सफलता के पीछे भागना ही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसका मिलना मुश्किल होने लगता है हमारे लिए, ऐसा उनका मानना है। और मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो चीज़ हमें चाहिए बस हम उसके लिए बिल्कुल नेचुरली मेहनत करते रहें। हमें कोई स्पेशल कुछ ऐसा टारगेट नहीं रखना है कि बस यही मुझे चाहिए। मेहनत अगर करते रहेंगे और उस दिशा में काम करते रहेंगे, ज़िंदगी को जीते हुए, ज़िंदगी के हर पल को महसूस करते हुए, तो उस मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए ज़्यादा आसान और ज़्यादा सुगम हो जाएगा।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर्ष

सुबह के 6:51 हो चुके हैं। सुप्रभात में नेहा है आपके साथ और आप सभी से बातें हो रही हैं जो मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंच रही हैं श्रोताओं। और अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बता दूं कि आगे आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद लेने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक सुबह 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और हिंदी में समाचारों के बाद आप सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, जिसमें आज आपके साथ रहेंगी सोनू, और सोनू के साथ ये कार्यक्रम आप जरूर सुनेंगे। और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा जो रहेगा सुबह 8 से 9 के बीच में। और उसमें ये आपके जो हम दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, मेरा नाम है नेहा, मैं आपके साथ रहूँगी 8 से 9 के बीच में। और उसके बाद हम चलेंगे आगे, कार्यक्रमों का सिलसिला बढ़ता रहेगा। 9 से 10 के बीच में सुबह आप सुनिएगा दिल के तरह अनेक गाने, नए पुराने, सोनू भट्ट इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। और जैसा कार्यक्रम का नाम है वैसा ही काम यहाँ पर होगा, नए और पुराने दोनों जमाने के गाने आप यहाँ पर सुनेंगे। सुबह 10 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और 10:05 पर आप सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक, आओ और आकांक्षा मोहन इस कार्यक्रम में आपके साथ रहने वाली हैं। सुबह 11 बजे हिंदी में समाचारों के बाद आप सुनिए 11:05 पर कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, रंजन अरनेजा इस कार्यक्रम में आपके साथ रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचारों के बाद 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल में आकांक्षा आपके साथ रहेंगी, और वेस्टर्न धुनों पे आपको नचाएंगी, थिरकाएंगी, मजा आएगा। और उसके बाद दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार एक बार फिर से होंगे, हम आपको अवगत कराएंगे कि देश दुनिया में क्या खास हो रहा है। और 1:05 से 2 बजे के बीच में आप सुनिएगा बिंदास बोल, आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन आप सुनते हैं बिंदास बोल, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें आपके फीडबैक हमारे हर कार्यक्रम के बारे में हम शामिल करेंगे, और पता चलेगा कि भाई क्या क्या हो रहा है, क्या हमारे जो लिसनर्स हैं उनका फीडबैक है हमारे शोज के बारे में। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे फोन इन कार्यक्रम के बारे में श्रोताओं। 3 बजे आप सुनिएगा 3 से 4 के बीच में रेडियो डॉक्टर, हमारा महत्वपूर्ण प्रसारण होता है, स्पेशल प्रोग्राम रहेगा आज ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, इसकी थीम रहेगी फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे डॉक्टर MS तोमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और केया चैटर्जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हैं। हमारा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा श्रोताओं। और इसी के साथ आकाशवाणी पर आगे भी पूरा दिन 24 घंटे कार्यक्रमों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। हमारा जो प्रयास है कि आपको एंटरटेन करते रहें और साथ में आपकी जानकारी में भी इजाफा करते रहें, बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये काम करते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है, सतत प्रयास रहता है। अब कार्यक्रम का आखिरी गाना समझ लिया आपने कौन सा गाना है भाई? अगर आप एक अच्छे फिल्मची हैं और गाने पसंद करते हैं स्पेशली 90s के, तो आई एम श्योर आपने गैस कर लिया है। इसी गाने के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ब्यूटिफुल फ्राइडे टुडे। नमस्कार।

0: साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री

डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसी भी सफर को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी होता है, और इसी लाइफ लेसन को इतनी ब्यूटीफुल वे में सुनने और जानने के बाद स्वागत आप सभी का 15 मई 2026 की शुक्रवार की सुबह में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट, आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो है जिसमें हमेशा की तरह बहुत सारी बातें आपके साथ बांटने के लिए, साझा करने के लिए मेरे पास हैं। फिलहाल तो जो मौसम है ना वो हलचल में है, बहुत ज़्यादा करवट ले चुका है, और जो बहुत सी गर्म हवाएं कल रात तक चल रही थी, आज सुबह जब देखा तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका था। फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस है और बादल लगे हुए हैं दिल्ली एनसीआर के आसमान में। संभावना है कि शायद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, बरस जाए, और नहीं भी बरसेंगे तो भी वो जो हल्की हल्की धूप झांक रही है ना बादलों के बीच में से, उसने मौसम को बहुत अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन दोपहर आते आते गर्मी ज़रूर बढ़ेगी, 39 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जो है वो रहने की उम्मीद है इस टेम्परेचर की, पर शाम और रात जो है वो सुहानी होगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि शाम से शुरू होने वाला जो हमारा वीकेंड है ना उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपको क्या करना है इस फ्राइडे मॉर्निंग में आपने जो हफ्ते भर के पेंडिंग काम है उनको निपटाना है ताकि आगे आने वाले वीकेंड को, शाम से शुरू होने वाले वीकेंड को आप अच्छे से इंजॉय कर सकें, और ये जो काम है वो करते जाने आपने अपने आकाशवाणी रेनबो को सुनते हुए, जिसे आप सुन रहे हैं दिल्ली एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप का करते हैं अगर आप इस्तेमाल, तो भी आप हमें सुन सकते हैं, और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के जरिए भी हम पहुँच रहे हैं दिल से दिल तक। खूबसूरत ये गाना, खूबसूरत ये दिन, और ये रेडियो स्टेशन आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। चौदह पंद्रह अगस्त की आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो की तरंगों पर स्वतंत्र भारत का पहला स्वर गूंजा। 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू का कालजयी भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबोधन सीधा रेडियो पर प्रसारित किया गया। 15 अगस्त की सुबह 5:30 बजे पूर्णम विश्वनाथन ने बाह्य प्रसारण के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता की पहली आधिकारिक घोषणा पूर्वी एशिया तक पहुंचाई। विभाजन की त्रासदी के बीच आकाशवाणी ही वो एकमात्र जरिया था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखा। तो श्रोताओ, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेल, आज का दिन तो शायराना लग ही रहा है क्योंकि दिन बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती के साथ शुरू हुआ है। लेकिन आज का ये जो दिन है 15 मई, इतिहास में क्या मायने रखता है ये भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान पाएं कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाओं ने जगह बनाई आज के दिन से जुड़े हुए पेजेस पर। और इतिहास को हम ने आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं चुनकर लेकर आई हूं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, आपके साथ साझा करें ताकि मेरे साथ साथ आपके और आपके साथ साथ मेरी जानकारी यूं ही बढ़ती रहे। 1817 से हम शुरू करेंगे जब बंगाली दार्शनिक और धार्मिक विद्वान देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। आज इनकी जयंती है 15 मई को। वो 19वीं सदी के बंगाल पुनर्जागरण के एक प्रमुख दार्शनिक रहे, धार्मिक सुधारक और ब्रह्म समाज के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने ही शांति निकेतन आश्रम की नींव रखी थी जिसे आगे चल के उनके सुपुत्रों ने महाविद्यालय बनाया। और 15 मई 1817 को उनका ये जो जन्म हुआ वो भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इनकी जयंती पर आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि देश दुनिया के इतिहास में 15 मई की जो तारीख है ये बच्चों के पसंदीदा जो कार्टून कैरेक्टर है मिकी माउस उससे भी जुड़ी हुई है क्योंकि 1928 में डिज्नी ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म प्लेन क्रेजी की एक टेस्ट स्क्रीनिंग की थी जिसमें पहली बार ये जो बच्चों का पसंदीदा कार्टून था मिकी माउस इसकी झलक पर्दे पर दिखाई गई थी। 1940 में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड्स नाम के दो भाइयों ने मिलकर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था जो कि आज फास्ट फूड रेस्टोरेंट की दुनिया की सबसे बड़ी चेन बन चुका है। 1991 में जब हम आते हैं तब हम बात करते हैं प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार कालिंदी चरण पानीग्रही की, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया से विदा ली थी। साल था 1991, 15 मई का दिन था। मातिरे मनीषी जैसे इनका जो उपन्यास था इसके लिए इन्हें 1971 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इसी मातिरा मनीषी के लिए ही ये प्रसिद्ध भी हुए थे। और इनको ये जो अवार्ड्स दिए गए थे वो दिए गए थे साहित्य जगत में इनके बहुमूल्य योगदान के लिए। इनको आज इनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और एक उपलब्धि यहाँ मैं बताना चाहूँगी, भारतीय मूल की मंजुला सूद की जो कि ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। साल था 2008। तो इतिहास की जुड़ी हुई बातें, कुछ बातें जो मैंने

आप तक पहुंचाई, ताकि हम इसी तरह से अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहें। सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट। स्टे ट्यून।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और अब हम बात करने जा रहे हैं आज के खास दिन पर। आज का जो दिन जुड़ा है वो जुड़ा है हमारी फैमिली से, हमारे परिवारों से। हम सभी जानते हैं फैमिली हमारे लिए एक कम्फर्ट जोन होती है, एक सेफ प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपने सुख बांट सकते हैं, अपने दुख बांट सकते हैं। हमें पता है कि हम लाइफ के चैलेंजेस से अगर हार कर जाएंगे तो भी हमें वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और अगर हम किसी चीज़ को अचीव करके जाएंगे तो वहाँ पर हमें सेलिब्रेशन मिलेगा। यानी कि हर परिस्थिति में परिवार साथ होता है एंड फैमिली कम्स फर्स्ट। ये हम सुनते भी आए हैं और हम मानते भी हैं कि परिवार की ये जो इकाई है ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके हर तरह से विकास के लिए और एक अच्छे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1994 में जब अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से यानी कि 1995 से ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है। पूरे संसार भर में ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये सिलसिला आज तक जारी है। हम सभी जानते हैं कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, केंद्र है समाज का परिवार, और परिवार में ही हर उम्र के जो व्यक्ति होते हैं हर प्राणी को सुकून मिलता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ना, हर साल इसकी एक थीम रखी जाती है और उसी के तहत काम भी किए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह से हम किसी भी दिन को मनाते हैं तो उसकी महत्वता को, उसके प्रति जागरूकता को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही ज़रूरी होता है ये बताना कि उसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में, और यही उद्देश्य है इस बार की थीम का भी। इस बार जो थीम रखी गई है वो है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, यानी कि फैमिलीज इन इक्वलिटीज एंड चाइल्ड वेल बींग। ये जो थीम है वो इस चीज पर ध्यान आकर्षित करती है सभी का कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बच्चों के जीवन और उनके विकास को किस तरह से प्रभावित करती हैं जब हम परिवार के परिप्रेक्ष्य में उसे देखते हैं, और इस असमानता को कम करने के लिए परिवार में किस तरह कि जो परिवार केंद्रित नीतियां हैं, चाहे वो परिवार के भीतर हो या फिर एक बड़े लेवल पे बनाई जाती हैं, वो किस हिसाब से बनाई जानी चाहिए और उनका क्या महत्व होता है, इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए थीम बनाई गई है। और इसी पर पूरे साल भर में कोशिशें होती रहेंगी कि काम किया जाए और एक अच्छा आउटपुट जो है उस थीम के अगेंस्ट निकल कर आए। फैमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आज सभी को, आप सभी को जो भी हमें सुन रहे हैं उन्हें आज के इस दिन के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाइए, उनके साथ अपने समय को और भी सार्थक बनाइए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। परिवार की हमने बात की और कुछ लोग इतिहास में ऐसे भी गुजरे जिन्होंने पूरे के पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार ही माना और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। और उन्हीं में से एक नाम जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है सुखदेव, जिन्हें हम हमेशा ही भगत सिंह और राजगुरु के साथी के रूप में याद करते हैं। और एक ही सांस में आज़ादी के इन तीनों परवानों के, इन तीनों जांबाजों के हम नाम लेते रहे। ये तीनों अपने आप में महान क्रांतिकारी रहे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज उन्हीं में से एक सुखदेव थापर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आज उनकी जयंती है। 24 साल की उम्र में देश पर कुर्बान होने वाले शहीद क्रांति सुखदेव को याद करते हुए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पंजाब के लुधियाना में ये जन्मे थे। कम उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से ये शामिल हो गए। इन्होंने 1929 में जेल में बंद क्रांतिकारियों द्वारा की गई ऐतिहासिक जो भूख हड़ताल, जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं, उसका हिस्सा भी ये रहे इतनी छोटी और इतनी कम उम्र में। और जब इन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ मृत्यु दंड दिया गया तब अंग्रेजों द्वारा 23 मार्च 1931 में इन्हें भी फांसी पर चढ़ाया गया। उनके बलिदान

को शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है, जो न्याय और स्वतंत्रता की खोज में भारतीयों की पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं हम प्रेरित करता रहेगा। सुखदेव थापर को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी क्रांतिकारियों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जाता आज भी जाता है, पहले भी जाता था और हमेशा जाता रहेगा। उन्हें जाना जाता रहेगा एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में जिन्होंने बहुत ही छोटी और कम उम्र में बिना अपने प्राणों के बारे में सोचे हुए भारत की आजादी के लिए उन्हें न्यौछावर कर दिया और अपने दोस्तों का अंतिम समय तक साथ निभाया।

जब हम शौर्य गाथाओं की बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक हमारे सामने आते हैं, और ऐसे ही एक नाम है के एम करियप्पा का, जिन्हें का जन्म हुआ 28 जनवरी को। लेकिन आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आज इनकी पुण्यतिथि है। 15 मई 1993 को बेंगलुरु में इन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इनके का जो पूरा करियर है वो अपने आप में एक मिसाल है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और साल था 1899, 28 जनवरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, के एम करियप्पा साहब आज़ाद भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, जिन्हें 15 जनवरी 1949 को, इनके 1949 को सेना का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। पहले सेना प्रमुख होने के साथ साथ वह भारतीय सेना के पहले 5-स्टार रैंक के अधिकारी भी थे, और भारतीय सेना में उन्होंने लगभग 30 साल रहकर देश की सेवा की। और जब वो रिटायर हुए उसके बाद भी वो अपना योगदान किसी न किसी रूप में देते रहे।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली NCR में और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक और ऐसी ही खास हस्ती की, महावीर चक्र विजेता कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की जब हम बात करते हैं तो ये एक नौसेना अधिकारी थे, एक ऐसे नौसैनिक जिन्होंने जहाज के साथ ही अपने जल समाधि ली थी। 15 मई 1926 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये जन्मे और जब नेवी में शामिल हुए और फिर अपनी वीरता से इन्होंने रूबरू करवाया पूरे देश को, पूरी दुनिया को। हुआ यूं कि जब 1971 में युद्ध छिड़ चुका था, अंदेशा था कि जो दुश्मन की नौसेना है वो भी किसी तरह से मुंबई के बंदरगाह को निशाना बना सकती है, इसीलिए नौसेना फ्लीट अब अरब सागर में सक्रिय हो गई भारत की। अब क्या हुआ कि PNS हंगोर नाम की पनडुब्बी भारतीय नौसेना को निशाना बनाने के लिए भारतीय जल सीमा में दाखिल हो चुकी थी और उस समय भारतीय नौसेना को मालूम चल गया था कि ये जो पनडुब्बी है वो भारत की जल सीमा में ही घूम रही है और इससे अब उनको सामना करना होगा। तो इसके चलते 8 दिसंबर को मुंबई से चली दो हमारी जो पनडुब्बी है उनको किया गया INS खुकरी और कृपान को, और 9 दिसंबर तक वो उस इलाके में पहुंच गई जहां पर पनडुब्बी हंगोर के होने का अंदेशा था। हंगोर ने भारतीय एंटी सबमरीनों के पहुंचते ही सबमरीन कृपान पर टॉर्पीडो छोड़ा और

ये जो निशाना था वो चूक गया, लेकिन उसके तुरंत बाद पाक की पनडुब्बी ने, हंगोर नाम की जो पनडुब्बी थी, उसने दोबारा जो टॉर्पिडो छोड़ा वो छोड़ा खुकरी पर, और खुकरी पर दो छेद हुए और जहाज ने डूबना शुरू कर दिया। और उसका जो चार्ज था वो कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला के हाथों में था। कैप्टन मुल्ला ने अपने सभी साथियों को जल्द से जल्द लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनाकर अरब सागर में कूदने को बोला।

के उनको पहना दिया और उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भेज दिया और अपना वो जहाज़ में खड़े रहे। नेवी में कहा जाता है कि जो कैप्टन होते हैं वो अपने जहाज़ को नहीं छोड़ते, और उन्होंने इस जो उनकी परंपरा कही है, उनके मन का जो एक दृढ़ निश्चय कही है, वो उन्होंने निभाया और वो खड़े रहे अपने जहाज़ पे, उस डूबते हुए जहाज़ पर बिल्कुल बेखौफ खड़े रहे और देखते रहे वो अपने जहाज़ को डूबते हुए और अपने साथियों को बचते हुए। मरणोपरांत कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र जो है उससे सम्मानित किया गया। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और हम हमेशा उनकी वीरता और शौर्य को इसी तरह से याद करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा इस प्रोग्राम से। आपकी मेरी मुलाकात होगी 9 से 10 के बीच, दिल के तराने गाने नए पुराने में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के जब 8 बज जाते हैं तो आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुनते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा घंटा। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार ते सस्रियकाल। मैं आशा करती हूं कि आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होंगी और उन खुशियों के साथ आप ज़िंदगी का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप 102.6 के माध्यम से हमें दिल्ली एनसीआर में सुन रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से विश्व भर में आपकी और हमारी बातचीत यहाँ हो रही है। बातें करेंगे इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर की खास खबरों पर और साथ ही अमेजिंग सा म्यूज़िक आपके लिए लाइन अप करके मैंने रखा है यहाँ पर, जहाँ पर पहला गाना श्रेया घोषाल और शान आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये गाना तो आप एंजॉय कीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए और हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में जो बुरी चीजें होती हैं वो ज्यादा समय के लिए नहीं रुकती हैं, उसी तरीके से अच्छी चीजें भी कम समय के लिए आती हैं। तो लाइफ का जो मोमेंट अभी आप जी रहे हैं बस इसका बेस्ट आपने यूज करना है और जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना है। गुड मॉर्निंग मेरी जान।

हमने कई बार एक बात सुनी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और ये बात मुझे लगता है कि बादलों को देखकर ही बिल्कुल सही तरीके से कही गई है। क्योंकि मुझे याद है कि आज रात, यानी कि आज जो मतलब पिछली रात थी, मॉर्निंग में सुबह 2-2:30 बजे के आसपास बहुत बादल गरज रहे थे और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी जिसमें धूल मिट्टी भी थी। लेकिन मुझे लगा कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं। और बारिश की अगर आस आप लगा के बैठे हैं तो आपको थोड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आज बारिश के कोई आसार नहीं ये बताए जा रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार। और तापमान की बात करें तो फिलहाल दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा लगभग 40 के आसपास पहुँचने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और खिड़की के बाहर से देख रही हूं तो सूर्य देव मेरे स्टूडियो में मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत तेजी से चमक रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सूर्य देव चमकते हैं, लेकिन जब उनकी संगत में हम आते हैं ना तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा चलिए देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, गर्मी जब बढ़ जाती है तो अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है और अपने साथ साथ उन सभी का ख्याल रखना है जो शायद किसी भी वजह से अपना ख्याल रखने में सक्षम नहीं है, चाहे वो बाकी मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी। तो आप क्या करेंगे, कोशिश कर सकते हैं कि उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकें, शीतल जल, अगर आप साफ निर्मल शीतल जल उनके लिए रख सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी और खुशी की बात है। साथ में जो लोग हमारे आसपास हैं उनको भी, अगर उनके पास पानी नहीं है, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इस तरह के कर्मचारी हैं जो धूप में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स एंड सो मेनी ऑफ देम, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क पर काम कर रहे हैं, उनके पास छांव तक नहीं है, तो हमारी कोशिश रह सकती है ना कि हम उनको एक पानी की बॉटल दे सकें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी किसी ना किसी व्यक्ति के लिए और कुछ नहीं तो एक पानी की बॉटल तो मुहैया कराई सकूं। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गीत संगीत का जो बहुत ही बेहतरीन सा सिलसिला चल रहा है इसको आगे बढ़ाते हुए अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाजों में क्या बात है, मर जावा जावा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

सुबह के 8:20 पूरे हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा। यंग टैलेंट नेशनल प्राइड इस मोटिव के साथ साथियों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 में नामांकन शुरू हो चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप www.awards.gov.in पर जाकर लॉग इन कीजिए। साथ में आपको जानकारी तो मिलेगी, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इन पुरस्कारों के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख रहेगी 31 जुलाई 2026। इसीलिए जल्दी से जाएं इस वेबसाइट पर और चेक करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां।

इस गाने में बस पकड़ के जो हीरो हैं वो चल पड़ते हैं हीरोइन के साथ में, एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं तो वो ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इन समर वेकेशंस में आप कहाँ जा रहे हैं? यू नो, समर वेकेशंस आर अ वेरी वेरी गुड टाइम टू डू थिंग्स जो हम यूजुअली कर नहीं पाते हैं, जैसे कि अपने पसंद की चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, घूमने जाना चाहते हैं तो हमारे पास छुट्टियाँ नहीं होती, बहुत सारा काम होता है, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, पढ़ाई होती है, सो मेनी थिंग्स आर देयर ना। लेकिन समर वेकेशंस अगर आ गई हैं ऐसे में, तो मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली आप एक्सप्लोर कीजिए। जी हाँ, दिल्ली एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि दिल्ली टूरिज्म कह रहा है, दिल्ली को देखो, महसूस करो और जी लो। और ऐसा करने के लिए दो ऑप्शंस आपके पास हैं। आप हेरिटेज वॉक्स में हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ पर रिनाउंड स्टोरी टेलर्स एंड वॉक एक्सपर्ट्स आपको मेजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, कलरफुल बाजार्स के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही स्पिरिचुअल साइट्स आपको घुमाएंगे, रिच ट्रेडिशन ऑफ द सिटी के बारे में आपसे बात होगी, और साथ ही जो हमारी हमारे शहर की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कभी कही नहीं गई हैं, और उन्हें सुनने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बस बरकरार हैं कि उन्हें कोई सुनाए और कोई उन्हें सुने। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दिल्ली टूरिज्म के साथ आप हेरिटेज वॉक्स ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हमारी सिटी में हैं, जो लैंडमार्क्स हैं, जो आइकॉनिक लोकेशंस हैं, उन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दिल्ली टूरिज्म की डबल डेकर बस के साथ में, और डिलाइटफुल राइड आपको मिलेगी विद प्रॉपर

कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आप जा सकते हैं, दिल्ली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई नेहा इतनी सारी बातें बता रही हैं, एक्साइटेड तो लग रहा है, लेकिन कहाँ कैसे किसको संपर्क करना है, कहाँ ज्वाइन करें, क्या करें, तो मैं आपको फ़ोन नंबर्स बता रही हूँ। जल्दी से कागज़ कलम उठा लें, और अगर वो नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन पर ये फ़ोन नंबर्स आप करें। ये दिल्ली टूरिज़्म का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप फ़ोन करके जानकारी भी ले सकते हैं, साथ ही अपने लिए टिकट्स भी आप बुक करा सकते हैं, हेरिटेज वॉक एंड बहुत सारी और भी एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं। सो द कॉन्टैक्ट नंबर इज 011, सबसे पहले नंबर आपको बता रही हूँ, 011-2336-5358, और दूसरा नंबर है 011-2336-3607। ये दो नंबर हैं, इन पर आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली के बारे में, कौन सी ऐसी मज़ेदार सी बात आप पता करके आए जो शायद पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, तो आप आकाशवाणी के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई बार ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ पर मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आप पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज़ बिंदास बोल एक बहुत अच्छा शो होता है हमारा, जिसमें आप हमें बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ आपने क्या किया। देखिए सिर्फ फीडबैक नहीं, आपके दिल की बात भी हम जानना चाहते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप जाइए घूम कर आइए, और हाँ ये जरा अगला गाना सुनिए, ये कुंवारी कुड़ी जरा कहीं किसी के पीछे पड़े।

0: your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

ये भाई साहब कह रहे हैं कि तेरे बिन आई कांट फ्लाई हायर। अब हायर उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा ना, और हल्का होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और दिल्ली के जो पार्क्स हैं, स्पेशली जो DDA के पार्क्स हैं, उनमें आप जाते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत से ऐसे पार्क्स हैं दिल्ली में जहाँ पर आपको कुछ मामूली सा शुल्क देना पड़ता है। और आपको लगता होगा कि भाई क्यों ये शुल्क देना होता है, जो भी आपके मन में सवाल आते होंगे, लेकिन अब ये सवाल मन में नहीं आएंगे, क्योंकि अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने उन पार्कों, हरित क्षेत्रों और हेरिटेज साइट्स में जहां अभी प्रवेश शुल्क लिया जाता है, सुबह 10 बजे तक एंट्री मुफ्त करने का फैसला लिया है। तो आप अपनी फिटनेस पर मुफ्त मुफ्त मुफ्त ध्यान दे सकते हैं। मॉर्निंग वॉकर्स और फिटनेस प्रेमियों के लिए ये बहुत ही लाभकारी बात होगी, और साथ ही फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक आपको मिलेगा मुफ्त प्रवेश। अच्छा, कौन से ऐसे पार्क्स हैं? वैसे तो बहुत सारे पार्क्स हैं, लेकिन कुछ पार्क्स के बारे में चलिए मैं आपको नाम बता देती हूँ। जैसे कि मेहरौली पुरातत्व पार्क, बांसेरा, असिता ईस्ट, क्रांति उद्यान, वाटिका, अटल सद्भावना पार्क, वासुदेव घाट, वैष्णवी पार्क, स्मृति वन, लाला हरदयाल पार्क, और बहुत से पार्क हैं भाई, सबके नाम नहीं बताऊंगी, आई विल बी आउट ऑफ ब्रेथ अदरवाइज। चलिए एक और मजेदार गाना आपको सुनवाती हूँ, सोनू निगम और अलीशा शिनॉय की आवाजों में, और इसके बाद हमारी और आपकी बातें जारी रहेंगी 9 बजे तक। 8:45 हो चुके हैं, घड़ी मिला सकते हैं।

0: हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। जब मुस्कुराने में इतनी ताकत है तो आप मुस्कुराने में इतना संकोच क्यों करते हैं, ज़रा बता दीजिए आज मुझे आप। हाँ, कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना यार, कभी स्माइल ही नहीं देखी उनके फेस पे, पता नहीं क्या तकलीफ है उनको, और उनको देख के हमारी स्माइल और छुमंतर हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा यार, यू नो, बिकॉज स्माइलिंग इज़ समथिंग विच इज़ कंटेजियस। आप किसी को देखते हो तो आपके चेहरे पर भी बेसाख्ता एक वो स्माइल आ जाती है, आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। बट देन स्माइलिंग इज़ सच अ ब्यूटिफुल एक्शन, इसको बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे। आप इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए कि ऐसा गहना है जो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। इसे कोई आपसे चुरा नहीं सकता, कोई इसे कम नहीं कर सकता, बल्कि ये और बढ़ता रहता है। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है यार, मैं तो बहुत स्माइल करती हूँ जहाँ पॉसिबल होता है। आई कॉन्ट सिट विद अ सैड फेस, है ना, क्यों बैठना है। और पता है क्या, अभी मैं गाने के दौरान जब मैं सोच रही थी कि स्माइल के बारे में, मुस्कुराने के बारे में आपसे बात करूंगी, तो एक थॉट मन में आया कि यार बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास, एंड आई एम श्योर आप अग्री करोगे इस बात से, जो हमें मुस्कुराते हुए देखकर खुद बड़े परेशान हो जाते हैं। है ना, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ हैप्पी टू सी यू हैप्पी, राइट। लेकिन कोशिश तो देखो, पॉजिटिव बातें करनी है तो मैं तो यही बोलूंगी कि हमें उन लोगों में शामिल होना चाहिए जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो फिर अगर स्माइल करने भर से, विच इज़ द लीस्ट हार्मलेस थिंग, तो आप स्माइल करके अगर दूसरों को घायल कर सकते हो तो क्या दिक्कत है, करो ना, लगा दो आग इस दुनिया में, क्या दिक्कत है। मैं तो भाई साहब स्माइल किया, हम तो दहाड़े मार मार के हंसेंगे और ज़िंदगी को ऐसे जिएंगे जैसे आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि ज़िंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए। हमें क्या पता कि इस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, तो क्यों ना हमें जो ज़िंदगी का मज़ा है वो हर मौके पर, हर मंज़र पर लेना है। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा एड ब्रेक है, उसके बाद आपको बताएंगे आगे कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद आप लेने वाले हैं FM रेनबो दिल्ली 102.6 पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

इट्स 8:52 बाय द रेनबो क्लॉक, और आपको बता दें कि आगे कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद आप लेने वाले हैं। भाई देखिए, जो अगला शो करने वाली हैं सोनू, वो स्टूडियो में आ चुकी हैं, बिल्कुल मेरे पीछे खड़े होकर वेट कर रही हैं कि मैं कब इस कुर्सी को छोड़ूंगी और उनको थमा दूंगी। भाई देखिए, उनका भी वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। तो अभी फिलहाल आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेनी एस आर का दूसरा घंटा, 8:53 अब हो चुके हैं, और 9 से 10 के बीच में आप सुनिएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फोन इन कार्यक्रम रहता है 3 से 4 के बीच में, रेडियो डॉक्टर, दिस इज अ वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ये कार्यक्रम आप जरूर सुने जो आपकी सेहत के बारे में बात करता है। और आज स्पेशल प्रोग्राम रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज विषय पर, थीम रहेगी फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे डॉक्टर MS तोमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, और डॉक्टर किया चैटर्जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, और ये विशेष कार्यक्रम का संचालन करेंगी शैली भाषांजलि। ये विशेष कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा। और इसके पहले दोपहर 1:05 से 2 के बीच में आज बिंदास बोल आप जरूर सुनिएगा, इसमें फीडबैक आप लोगों का हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जो आया है वो शेयर होगा, और मैं भी बड़े ध्यान से सुनूंगी कि क्या किसी ने मेरे किसी शो के बारे में क्या लिखा है, कोई फीडबैक है या कोई शिकायत है, कोई त्रुटि हो गई। सो ऑल ऑफ दिस इज वेलकम। सो बड़ा मजा आएगा जब आज का शो ये सुनने वाले हैं हम बिंदास बोल। और अब फिलहाल वक्त आ गया है कि आज के शो का आखिरी गीत मैं आपकी नजर करूं, क्या बात है मजेदार गाना। और इस गाने के साथ साथ मेरी जान, हमेशा की तरह वही बात मैं कहूंगी कि आप सभी बहुत खुश रहिएगा, जिंदगी का मजा लीजिए, और हाँ अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखिएगा और नियम कानूनों का पालन जरूर कीजिएगा। इसी बात पर नेहा को दीजिए अनुमति। नमस्कार एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दिल के तराने गाने नए पुराने में, वही प्रोग्राम जिसमें हम सुनवाते हैं आपको हर 15 मिनट के गैप पर एक ब्यूटीफुल रेट्रो म्यूजिक से भरा हुआ बहुत ही प्यारा सा गाना, जो हम गोल्डन एरा से चुनकर आपके लिए लेकर आते हैं। आज के गाने भी एक हस्ती से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस प्रोग्राम में, जो कि है दिल के तराने गाने नए पुराने। और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, लेकिन वो मैसेज होने चाहिए ट्रैफिक अपडेट के। दिल्ली NCR में अगर आप अपने वाहनों को लेकर आ गए हैं सड़कों पर और पहुंच रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ, तो ज़रूर बताइए हमें कि क्या स्थिति है सड़कों की, कहाँ जाम लगा है, कहाँ पर बिल्कुल आपको स्मूथ मिल रहा है रास्ता और आप आराम से वहाँ पहुँचने की उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ पे कोई रास्ता किसी काम की वजह से बंद है या कोई और हर्डल है जो आपको दिखाई दे रही है, जो आप चाहते हैं कि आपके फेलो पैसेंजर्स को पता चले, तो ज़रूर बताइए। 9868107070 इज द नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बताइए अपने नाम के साथ ट्रैफिक की अपडेट दिल्ली NCR की। शुरुआत करते हैं दिल के तराने गाने नए पुराने की इस गीत के साथ अरिजीत की आवाज़ में।

वेल, अब इसी के साथ टाइम हो गया है आपको रेट्रो फ्लेवर तक पहुंचाने का और उस एरा में ले जाने का जहां पे गाने बहुत ही सुंदर बना करते थे। सुनहरा दौर उसे कहा जाता था और वो आज भी हमारे मन में उसी तरह से बसे हुए हैं। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए जो पहला रेट्रो फ्लेवर, वो है 1956 की मूवी CID से, जिसे डायरेक्ट किया राज खोसला साहब ने और इसको प्रोड्यूस किया गुरुदत्त साहब ने। देवानंद, शकीला और वहीदा रहमान इसमें नजर आए और शमशाद बेगम की आवाज़ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक चलाने जा रही हूँ मैं।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल्ली एनसीआर में और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने गाने नए पुराने। टाइम हो गया एक बार फिर से आपको लेके चलने का गोल्डन दौर में हमारे हिंदी सिनेमा जगत के 1975 से लेकर आई हूँ मैं बहुत ही ब्यूटिफुल सी एक फिल्म प्रतिज्ञा। इस फिल्म का गाना जिसमें नजर आए धर्मेंद्र और साथ में हेमा मालिनी, और बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और उतने धमाकेदार तरीके से इसमें डांस किया है हमारे धर्मेंद्र साहब ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर

एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर लवली लिसनर्स एंड म्यूजिक लवर्स। इट्स अ फैबुलस फ्राइडे मॉर्निंग द 15th ऑफ मई एंड यू आर ट्यून्ड इनटू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर और द मे मेलोडिक आवर एज आई लाइक टू कॉल इट दिस मंथ। आई एम आकांक्षा मोहन and today we are going to enjoy listening to some timeless English music and Hindi soundtracks as well. So whether you're mid-commute in your car, bus, metro or just finishing that second coffee, let's get started and let's get grooving a bit. The first track today is a timeless country pop from the late 50s and the singer Patsy Cline was one of the first music artists to cross over into the pop charts. So here is Stop, Look, Listen.

0: So if you're also stuck in traffic or know of roads which are jammed or choked, you can send us a message on 9868107070, and it might benefit others too. We can let them know. And it's time for a short break, so stay tuned and I'll be right back.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एंड वी आर बैक एंड यू आर ट्यून्ड इनटू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर। नाउ लेट्स स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ Hindi film music. The next track I have for you is a playful masterpiece from the film Paying Guest, featuring the incredible chemistry of Kishore Kumar and Asha Bhosle, starring Nutan and Devanand. It's a song that captures the light-hearted, romantic tug of war we've all seen in the classics. And I'm sure and I guarantee it's going to put a smile on your face. I'm sure you would have guessed it. Here is the evergreen Chhod Do Aanchal.

0: That was Lemon Tree by The Seekers. Now we're slipping into a short break, so stay tuned and don't go anywhere. We'll be right back.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है

0: तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: वेलकम बैक एंड यू आर ट्यून्ड इनटू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर। आई हैव अ मैसेज फ्रॉम डॉली जी हु सेज शी लव द सॉन्ग छोड़ दो आंचल। थैंक यू सो मच डॉली जी। And you know, just as these voices have become a permanent part of our lives, the very platform you're listening to is reaching a historic milestone. This June 8th, Akashvani completes 90 glorious years of broadcasting. It's incredible to think that for nearly a century, we have been the voice from the sky, connecting every corner of this vast nation. True to its name, do you know? Akashvani operates the world's highest radio station in Hambatingla, in Kargil, Ladakh. Situated at an altitude of approximately 13,300 feet above the sea level. Inaugurated in 2021, it serves as a crucial communication link in high-altitude border region. Today, Akashvani broadcasts programs in 23 languages and 179 dialects. Making it one of the largest organization in the world to do so. And it's been an honor to be a part of your homes and your journeys for 9 decades. Now let's get back to the music with a song that has been ranked as one of the most played songs in the radio history, with more than 7 billion airplays. Here is Yesterday by the Beatles.

0: Now it's time for a short break, and don't go anywhere. We'll be right back.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: Welcome to 102.6 MHz Akashwani Rainbow, and this is the Matchless Music Hour. Next up, a song that defined the late 60s with its storytelling charm, a Parisian dream in a song. Peter Sarsgaard asked the question, "Where do you go, my lovely?"

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वेलकम बैक एंड यू आर ट्यून्ड टू 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर। यू नो समटाइम्स होम इजंट अ प्लेस विद फोर वॉल्स एंड अ रूफ, इट्स अ पर्सन हु मेक्स यू फील नो मैटर where you're in the world special. From for everyone listening today at home or with their family, here is the timeless "You Are My Home" by Billy Joel.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए।

यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, मैं हूं आपके साथ रंजन और प्रोग्राम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। तो फिर फिल्मी दुनिया के दीवानों हमारे साथ हाथ से हाथ आगे बढ़ाओ और हम आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड की उन गलियों में जहां पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। आपके प्यारे सितारे क्या कर रहे हैं, कौन सी मूवीज़ में मसरूफ़ हैं, और हाँ वो सवाल जिससे आप बन सकते हैं बॉलीवुड के सरताज। तो फिर जुड़े रहें हमारे साथ कल आज और हर मोमेंट। आप चाहें तो हमारा न्यूज़ ऑन एयर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इस ऐप के माध्यम से आप 2400 घंटे पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग।

जी आ गए, आपने बुलाया और हम आ गए। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं रंजन आपके साथ। और ये बहुत दफ़ा नहीं होता, ये बहुत कम होता है कि कोई मूवी बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाल मचा दे, और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप उसे प्लान करें, आपने एक साथ ही दो पार्ट्स बना लियो। हम बात कर रहे हैं धुरंधर की। तो धुरंधर द रिवेंज का 8th week कलेक्शन आप सुन के हैरान रह जाएंगे, लगभग 1000 करोड़ के करीब पहुंच गया है, टू बी प्रिसाइज 985 करोड़। देखिए, ना आपको कुछ मिल रहा है ना मुझे कुछ मिल रहा है पैसे के हिसाब से, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है वो बड़ी बिंदास है। इस मूवी ने बहुत सारे इतिहास रच दिया है, और जाहिर सी बात है ऐसी खबरें गर्म हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको धुरंधर सीरीज में तीसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। आर यू एक्साइटेड? यस, यू आर एक्साइटेड। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर।

मैं और तू, बहुत ही खूबसूरत गाना धुरंधर से आपने सुना, और मैं हूँ आपके साथ रंजन, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और आपको पता है स्टूडियो के अंदर मैं बैठा हूँ और मेरी तन्हाई है, ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि मेरे साथ यहाँ बहुत सारे भाई हैं, तालियां, लॉट ऑफ ब्रदर्स आर अराउंड। और देखिए क्या होता है, कई बार कुछ शूट भी चल रहा होता है, अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज। आज ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ आपसे बात ही नहीं कर रहे लेकिन आपको दिखने की तैयारी भी करेंगे, आने वाले दिनों में आपको इस बारे में पता चलेगा। वैसे भूत बंगला फिल्म की बात करूँ तो 154 करोड़ का उसने बिजनेस किया लगभग 28 दिन में, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ धुरंधर से कंपेयर करने बैठ गए तो फिर फिगर्स कुछ भी नहीं है। अदरवाइज ऑन इट्स ओन इट्स इट्स हिट मूवी। आई

थिंक, और अक्षय कुमार की मूवीज़ धीरे धीरे भी कई बार बहुत पिक कर जाती हैं, और ऐसा इसके साथ होगा ऐसा हमें महसूस होता है। थोड़ी देर में आपसे सवाल पूछेंगे बॉलीवुड सरताज का, तो फिर जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे इस स्टेशन के साथ, हमारे साथ हाथ पकड़ के चलते रहिए। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स 102.6 मेगाहर्ट्ज़ दिल्ली और आसपास।

जी, बॉलीवुड सरताज का सवाल आपसे जो मैंने पूछना है वो ये है कि दिल तो पागल है फिल्म आपने जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कभी कभी सब हर किसी का दिल वैसे भी पागल तो हो ही जाता है, मतलब वॉट एवर रीज़न। तो ये बड़ा एक सिंपल सा फिनोमिनन है, ये बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है। हमारा सवाल आज का ये है कि माधुरी दीक्षित ने जो कैरेक्टर प्ले किया था फिल्म दिल तो पागल है में, उसका नाम क्या था? आपने हमें सिर्फ उसका नाम लिख के भेजना है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, और हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं आज आपको बॉलीवुड सरताज बना दूं। तो अपने नाम के साथ इस सवाल का जवाब लिख के भेजिएगा 9868107070 पर, और फोन के आसपास रहिएगा, बिकॉज हो सकता है आज आप लकी बने और मैं आपको कॉल करूं। सो स्टे ट्यून्ड विद 102.6 FM Rainbow.

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जी हाँ, बॉलीवुड में बहुत दफ़ा ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनको देख के उस कंटेंट को लोग कहते हैं कि भाई ये थोड़ा फूहड़ है, इसमें थोड़ी बेशर्मी है, लेकिन क्रिएटिव लोग हैं, बहुत कुछ होता है जो उन्हें बताना है, उनका अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, सोसाइटी को देखने का नज़रिया है, और ऑब्वियसली यही तो ताना बाना है जिससे मिल के फिल्में बनती हैं, और फिल्में जो हैं वो हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का आईना है। आईने से मुझे ध्यान आया और एक बात समझ में आई कि आज किसी का बड़ा ख़ास शख्सियत का बर्थडे है और उनका नाम ज़्यादा आपको सरप्राइज ना करते हुए बता देता हूँ, वो है माधुरी दीक्षित। जी हाँ, आज है 15 मई, आज ही के दिन पैदा हुई थी माधुरी दीक्षित, द डांसिंग दीवा जो आपके दिल में उतर गई ये कहते हुए कि दिल तो पागल है। ये गाना इतना अमर हो गया है लता जी की आवाज़ में कि अगर माधुरी की बात होती है तो इस गाने की भी बात होती है, इस फिल्म की भी बात होती है। हम बताना चाहेंगे कि कितनी ही मूवीज़ इन्होंने की, तेजाब में बेहतरीन अदाकारी की फिल्म दिल की बात हो या फिर बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, इन्होंने बतेरे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं और साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि जब माधुरी दीक्षित का फिल्म तेजाब का ये गाना आया तो अपने दौर का एक रेज था, एक ऐसा मापदंड था जिसने पुराने सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अच्छा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। आई थिंक जावेद अख्तर साहब इसके लिरिक्स लिख रहे थे और उनसे पूछा गया कि भाई कैसे लिखना है, तो उन्होंने गिनती लिखना चालू कर दी। तो गिनती लिखते गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से इस गाने का भी जन्म हुआ और इसने बहुत ही प्यारा संगीत दिया गया और ये बहुत हिट रहा अपने दौर में। तो हम आज यही कहना चाहते हैं कि माधुरी दीक्षित जो डांस भी बाखूबी करती हैं, फिल्म साजन की उनकी अदाकारी हो या फिर खलनायक में काम किया हो या फिर राजा फिल्म में या फिर थानेदार, इतने बेशुमार फिल्मों में उन्होंने काम किया है, हम आज के दिन उनको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहते हैं, उनको बर्थडे विश करना चाहते हैं और उनके फैंस को भी यही कहना चाहते हैं कि
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
0: जी हाँ, इनकी फिल्म के अंदर नाम मोहिनी भी था, ये कैरेक्टर मुझे याद आता है, आई थिंक तेजाब की बात हो रही है। फिलहाल ये गाना आपके लिए, ये जवानी है दीवानी फिल्म से। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, चाहे दिल्ली हो या फिर आगरा या हमारे देश का कोई और कोना, आज है 15 मई और आज है फ्राइडे और आज के दिन होती हैं नई मूवीज रिलीज। तो आज कौन सी वो खास दो मूवीज हैं जो रिलीज हो रही हैं थिएटर्स में? तो पहली है पति पत्नी और वो दो, स्टारिंग सारा अली खान, वामिका गाबी, रकुल प्रीत सिंह, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव। पति पत्नी और वो पहले इससे फिल्म आई थी जिसके अंदर आई थिंक कार्तिक आर्यन थे और साथ में थी अनन्या पांडे, लेकिन वो मूवी खास तौर से मुझे बड़ी अच्छी लगी थी एंड आई होप कि ये मूवी भी उतना ही अच्छा या उससे बढ़ के काम करेगी। और दूसरी मूवी की है आखिरी सवाल। अगर आप पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो उसी के ताने बाने पर बुनी हुई फिल्म है। संजय दत्त, नमाशी चक्रवर्ती एंड नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी इसके अंदर स्टार कर रहे हैं। और अगर आप OTT के दीवाने हैं तो सैफ अली खान की कर्तव्य आज OTT पे आपको देखने को मिलेगी। चैनल नहीं बता रहा हूँ, खुद से सर्च कीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज भी एक कुछ है, थ्रिलर, हॉरर थ्रिलर है और इसकी भी कुछ ऐसी रिलीज आज बताई जा रही है। खैर, हमने आपसे सवाल पूछा था कि दिल तो पागल है फिल्म के अंदर जो माधुरी दीक्षित जी ने रोल अदा किया था, उस किरदार का नाम फिल्म में क्या है, हमें लिख के बताइए। व्हाट्सएप नंबर है 9868107063।

9868 10 70 70 और हो सकता है हम आज आपको बना दें बॉलीवुड सरताज। तो बस फिर जुड़े रहें हमारे साथ और सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूँ आपके साथ रंजन और घड़ी में समय समय हो गया 11:50 और जैसा हमने कहा था कि हम बनाएंगे बॉलीवुड सरताज किसी को। इस समय हमारे साथ बॉलीवुड सरताज ऑन एयर आ गए हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते
1: जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर
0: जी। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: सर विवेक हेम प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से?
1: रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़
0: जी। तो विवेक, हमने पूछा था दिल तो पागल है में माधुरी दीक्षित ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, वो फिल्म में उनका नाम क्या था?
1: जी सर, उनका नाम पूजा था सर।
0: किसी पूजा को वैसे जानते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में?
1: जी सर, जी सर, वैसे तो फ्रेंड सर्कल्स में है।
0: हाँ, वैसे देखिए ये नाम बड़ा कॉमन है और मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि उस दौर में जब 90s में मूवीज बन रही थी तो माधुरी जी का नाम पूजा इस फिल्म के अलावा और भी फिल्मों में था, और करिश्मा का जो नाम था वो माधुरी का एक्सचेंज हो जाता था किसी फिल्म में, किसी में जो माधुरी का नाम होता था वो करिश्मा जी को मिल जाता था। और शाहरुख खान को तो आपको पता ही है, वो वर्ल्ड फेमस,
1: उनका नाम राहुल।
0: राहुल नाम से उन्हें जाना जाता है। खैर, तो फिल्मों की आपकी दीवानगी, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है?
1: सर माधुरी ही है सर।
0: और हाँ, आज देखिए, आज तो डबल सेलिब्रेशन का मौका हो गया। एक तो आप बॉलीवुड सरताज बन गए विवेक जी, और दूसरा आज माधुरी जी का जन्मदिन भी है, पता है आपको? तो उनको विश अपनी आवाज में विश कर दीजिए, हो सकता है सुन रही हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ऐसे ही दिन रात प्रगति करते रहे और हमारे देश के आइकॉन बने और उनसे लाखों लोग प्रेरणा लेते रहे।
0: All right,
1: और यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
0: थैंक यू सो मच, और आपको हमारी शुभकामनाएं आज बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, बाय बाय। तो ये थे हमारे साथ विवेक और ये बने बॉलीवुड सरताज। वैसे आंसर तो देखिए बहुत से लोगों ने सही दिया है, मैं कोशिश करूंगा कुछ नाम यहाँ पर मैं पढ़ सकूं क्योंकि
2: नमस्ते
0: समय अब उतना नहीं हमें इजाजत दे रहा, बट फिर भी आई विल ट्राई एंड स्क्वीज इन फ्यू नेम्स।
2: लोकप्रिय गीत
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
2: सलाम ले जाता हुआ, खोड़न खटोला और तीन बजाती हुई

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ रंजन। बस अब समय ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि आकांक्षा आ गई हैं स्टूडियो में और उनका प्रोग्राम अगला रहेगा और विच इज़ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम एंड लेट्स सी, आप उनके साथ रहिए, एंजॉय कीजिए। प्ले इट कूल इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम। और बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं बताना भूल ही गया आपको कि राजा शिवाजी जो फिल्म है वो मराठी फिल्म है जो रिलीज़ हुई थी हाल ही में, वो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है, यानी वो भी अच्छा बिजनेस कर रही है। रितेश देशमुख इसके अंदर और बहुत बड़े और भी कई स्टार्स हैं, आई थिंक अभिषेक बच्चन भी उसमें काम कर रहे हैं। तो फिर आपसे होगी मुलाकात इन्हीं एयरवेव्स पर। टिल द टाइम वी मीट अगेन, मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छा वैसे 1:20 पे भी आपके साथ रहूंगा बिंदास बोल में। यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग, ये सफर यूं ही जारी रहेगा। ठीक है, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: It's time for a short break and we'll be right back. So stay tuned and don't go anywhere.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल

या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो। And now, if you're a fan of big stages, royal costumes and incredible music, get ready. Tomorrow, May 16th is the grand final of the 70th Eurovision Song Contest being held at Vienna, Austria. It's going to be a night of pure spectacle, so don't miss it. Next up is Adele's breathtaking take on Bob Dylan's classic, a reminder of the power of a simple, beautiful melody.

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: वेलकम बैक to Play It Cool, only on 102.6 MHz, Akashwani Rainbow. The week's work is almost behind you, and I bet a lot of you are already dreaming of a cozy weekend in. And nothing describes a happy home better than the word cozy. Here is Love with his 2024 track Cozy.
7: Said I'm in to you, you all right? You knew by the way you touched my hair, like your hand's always been there. So I dropped my guard and it hit real hard. Couldn't even make a sound. Felt the whole world slowing down.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर

0: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
1: नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल इंडियन कैंसर सोसाइटी की ओर से सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जागरूकता बहुत कम है, लेकिन जानकारी होना हर महिला के लिए बेहद जरूरी है। आज का विषय है एंडोमेट्रियल कैंसर। ये एक ऐसा कैंसर जो महिलाओं के गर्भाशय की अंदरूनी परत में होता है और जिसकी समय पर पहचान एक महिला की जिंदगी बचा सकती है। क्या आप जानते हैं मीनोपॉज के बाद होने वाली हल्की सी ब्लीडिंग भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी का संकेत हो सकती है? क्या आप जानते हैं मोटापा, PCOS और हार्मोनल असंतुलन के बढ़ने के साथ साथ एंडोमेट्रियल कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं? ये कैंसर उनमें से है जिन्हें अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इलाज की संभावना काफी बेहतर होती है। सबसे पहले समझते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर आखिर होता क्या है। महिलाओं के शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग होता है गर्भाशय यानी यूट्रस। गर्भाशय के अंदर एक परत या झिल्ली होती है जिसे एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है। हर महीने मासिक धर्म के दौरान ये परत बनती और टूटती है, लेकिन जब इस परत की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है तो ये कैंसर का रूप ले सकती हैं। इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 6,000 से अधिक मौतें एंडोमेट्रियल कैंसर के कारण दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है आने वाले वर्षों में बढ़ता मोटापा, डायबिटीज, कम शारीरिक गतिविधि, हार्मोनल असंतुलन और बदलती जीवन शैली इस बीमारी के मामले में और वृद्धि कर सकते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में इसका खतरा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक देखा जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कैंसर शुरुआती समय में संकेत देता है, लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु महिलाएं शर्म, संकोच या जानकारी के अभाव में इसे उम्र का असर, हार्मोनल बदलाव इत्यादि समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। नतीजा डायग्नोज बहुत लेट होता है और लेट डायग्नोज का मतलब इलाज में जोखिम ज्यादा। अगर शुरुआती समय पर ये कैंसर की जांच हो जाए और कैंसर पकड़ में आ जाए तो 90-95% केसों में इन महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती हैं और बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। तो आए जाने ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको ध्यान में रखने पर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है। यदि किसी महिला के पीरियड्स बंद हो चुके हैं और फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसे कभी भी सामान्य ना समझें, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अनियमित पीरियड्स, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, समय समय पर स्पॉटिंग होना, लंबे समय तक पीरियड्स का चलना इत्यादि, सफेद या पानी जैसा डिस्चार्ज, कई महिलाओं को लगातार वाटरी डिस्चार्ज होता है जिसमें दुर्गंध आती है, ये डिस्चार्ज गुलाबी या भूरे रंग का भी हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस होना, लगातार कमजोरी और थकान का बने रहना, इन सब सिम्टम्स को नजरअंदाज मत करें। याद रखें, हर ब्लीडिंग कैंसर नहीं होती, लेकिन हर असामान्य ब्लीडिंग की जांच होना जरूरी है। क्या कारण है, क्यों होता है ये कैंसर? विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का असंतुलन है। ईस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। जब शरीर में ईस्ट्रोजन का प्रभाव लंबे समय तक बढ़ जाता है तो एंडोमेट्रियम कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। किन्हें हो सकता है इसका खतरा, आए जाने। मोटापा इसका सबसे बड़ा जोखिम कारक है, क्योंकि शरीर की अतिरिक्त चर्बी ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली महिलाओं में हार्मोनल

0: शिवानी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ।

असंतुलन के कारण खतरा बढ़ सकता है। डायबिटीज और हाई बीपी मेटाबॉलिक समस्याएं भी इसी से जुड़ी हुई हैं। देर से मीनोपॉज, यानी कि जिन महिलाओं में पीरियड्स काफी लंबे समय तक आते हैं और देर बड़ी उम्र में मीनोपॉज होता है। कभी भी गर्भधारण ना होना। फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार में यूट्रस, ओवेरियन और कोलोन कैंसर रहा है तो सजग रहें। बढ़ती उम्र, ये कैंसर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में देखा जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं अक्सर अपने भोजन, नींद, मानसिक स्वास्थ्य और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं। जंक फूड, तनाव, स्क्रीन टाइम, कम नींद और फिजिकल एक्टिविटी की कमी धीरे धीरे शरीर में हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है। बीमारी अचानक नहीं आती, शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देता है। सवाल है कि क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, कई मामलों में इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्या करें? वजन को नियंत्रण में रखें। सिर्फ 5-10% वजन कम करने से भी हार्मोनल स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। रोज व्यायाम करें, तेज साल से चलें, योग, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संतुलित भोजन लें, अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, बीज और नट्स, हाई फाइबर फूड शामिल करें। परहेज करें ज्यादा चीनी, पैकेज्ड फूड, अधिक तला हुआ भोजन, ट्रांस फैट इत्यादि से परहेज करें। PCOS और थायराइड का इलाज करवाएं। डॉक्टर की सलाह से ही हार्मोन दवाइयों का इस्तेमाल करें, इसे इग्नोर ना करें। तनाव को कम करें, स्ट्रेस हार्मोन्स भी शरीर के संतुलन को प्रभावित करते हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को नियमित गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। हमेशा इलाज से परहेज बेहतर है। कैंसर शब्द सुनते ही डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हर कैंसर का मतलब जिंदगी का अंत नहीं होता। अगर एंडोमेट्रियम कैंसर की शुरुआती स्टेज में पकड़ लें तो इलाज के परिणाम काफी अच्छे हैं। इलाज मरीज की उम्र, स्टेज और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। डॉक्टर, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी की मदद से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो कई महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। आज महिलाएं पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी सेहत को पीछे रख देती हैं। शर्म, संकोच या जानकारी के अभाव में डॉक्टर के पास देरी से पहुंचती हैं। याद रखिए, यदि आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपके आसपास कोई महिला मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, असामान्य डिस्चार्ज, अनियमित पीरियड्स या पैल्विक दर्द या लगातार कमजोरी महसूस कर रही हो तो उसे डॉक्टर पर जाने के लिए प्रेरित करें, चुप रहने के लिए मत कहें। आज का संदेश बहुत स्पष्ट है, शर्म नहीं जागरूकता जरूरी है, डर नहीं समय पर जांच जरूरी है। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत करें। हर एबनॉर्मल ब्लीडिंग कैंसर नहीं है, परंतु जांच जरूरी है। याद रखें, कैंसर की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत समय पर पहचान है। खुद से वादा करें, मैं अपने शरीर को गंभीरता से लूंगी, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करूंगी। इंडियन कैंसर सोसाइटी कैंसर के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्यरत है। इनके 3 विंग्स हैं, जागृति, सहयोग और प्रशांति। जागृति में हमारे वॉलंटियर्स टॉक्स, रेडियो टॉक्स, स्क्रीनिंग कैंप्स, वेबिनार्स इत्यादि के जरिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने और जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। सहयोग में हमारे वॉलंटियर्स दिल्ली और NCR के सभी प्रमुख हॉस्पिटल्स में जाते हैं और इलाज करा रहे पेशेंट्स की हर संभव मदद और सहयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रशांति में हम इलाज करा चुके पेशेंट्स को दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने, इमोशनल सपोर्ट और पुनर्निर्वास में मदद करते हैं। अनेक तरह के प्रोजेक्ट्स में उन्हें शामिल करते हैं ताकि उनका हौसला और कॉन्फिडेंस दोबारा आ सके। इंडियन कैंसर सोसाइटी का डिटेक्शन सेंटर 42 बाबा रोड नियर बंगाली मार्केट न्यू दिल्ली में स्थित है, जहां विशेषज्ञों द्वारा

0: बहुत कम कीमत पर शुरुआती जांच का फायदा उठाया जा सकता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी की ऐप राइज अगेंस्ट कैंसर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और 5 विभिन्न भाषाओं द्वारा कैंसर में कैंसर विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी का फायदा उठाएं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9910516562। आई रिपीट 9910516562। ये वार्तालाप पंचशील फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, और आज क्या दिन है आप जानते ही होंगे। और आज है फ्राइडे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्राइडे है ये ख़ास फ्राइडे है। आज है मंथ का थर्ड फ्राइडे, और आज के दिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका आपको ही नहीं बल्कि हमारे सभी रेडियो जॉकी, सभी प्रेजेंटर्स को भी इंतज़ार रहता है, और कार्यक्रम है बिंदास बोल। आज बिंदास बोल में मैं हूं रंजन आपके साथ। आप चाहें तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9868107070, और किसी भी कार्यक्रम से जो रेनबो पर प्रसारित होता है उससे जुड़ी कोई शिकायत है, कोई तारीफ है, कोई सुझाव है, ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपकी कुछ ईमेल्स भी मेरे पास हैं, वो भी जरूर लेंगे। तो बस फिर बने रहिए इस कार्यक्रम में।

जी हाँ, सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं। और ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे नगमे, गीत और ढेरों बातें आप सुनते ही रहते हैं आकाशवाणी रेनबो के ऊपर। और जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए, कुछ लोगों को आज वो गलत फहमी हो गई है कि भाई ये प्रोग्राम जो है मेरे वाला सॉन्ग का है और वो बिना सुने ही मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो अगर आप अब रेडियो सुन रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया कि आज थर्ड फ्राइडे है, थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ हमारा खास कार्यक्रम बिंदास बोल आता है। वैसे इससे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम मैंने कई साल पहले किया था, उसकी भी चर्चा करूंगा। और क्यों करूंगा बताता हूँ, क्योंकि आपकी मेल्स मेरे पास हैं, बहुत बड़ी बड़ी, कई लोगों ने अच्छी मेल्स तो सभी अच्छी लिखी हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें अभी के अभी तुरंत, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। जैसे हमारे पास मैसेज लिख के भेजा है पंकज ने अमरावती से, और कह रहे हैं सर मैंने आकाशवाणी पर ईमेल भेजा था। मैं देखता हूं पंकज, शायद आपका ईमेल मेरे पास आया है कि नहीं, आई रियली हैव टू सी। और ये आजकल तो ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना आ गया। एक दौर वो था जब हम सिर्फ पोस्ट कार्ड मंगाते थे, मैं आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक हमारा कार्यक्रम हर हफ्ते आता था, पोस्ट बॉक्स 503, जिसमें दो आवाज़ें होती थी, आकाश और वाणी की। उसके अंदर एक आवाज़ आकाश की कई साल मेरी भी रही थी। खैर, अब पुरानी बातों को नहीं करते, आज की बात करते हैं। आदाब, भेजा है हमारे पास, नाम है इनका पूरा अब्बास परिवार है, आपके बड़े सारे नाम भेजे हैं भैया आपने, फारूक अली खान, फैजी, फराज, वरीन, वरहान, वारिया, ताहिरा, बुलंदशहर से लिखते हैं। और लिखते हैं किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा। तो आप भी जागिए, आपके अभी कार्यक्रम आज चल रहा है बिंदास बोल। और मैं बिंदास बोल में जो पहली ईमेल लेने जा रहा हूँ वो है इरशद जहान की, जो असम नज़ीरा से हमारे पास लिख के भेज रही हैं। इन्होंने मोक्षी जी के नाम ये ईमेल लिखी है, लेकिन हम बताना चाहेंगे आज मोक्षी जी नहीं है इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही, मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम है रंजन। तो कोई बात नहीं, बात आपकी हम पढ़ देते हैं। विषय अच्छे लेते हैं आप, ड्राइविंग और ऑपरेशन परीक्षाओं में लिखना धैर्य से और वक्त से अंदर आपको जाना चाहिए। अगर काम में पूर्णता लानी है तो जल्दी नहीं बल्कि धैर्य से काम करना चाहिए, और मुझसे भी जल्दी में काम करने में गलतियां हो जाती हैं। तो इरशाद जी, आपकी ये जो बात है ये लगता है किसी पिछले कार्यक्रम से आपने जोड़ के भेजी है, तो कोशिश कीजिए। अब मैं उसका संदर्भ तो नहीं समझ पा रहा हूँ लेकिन आप ड्राइविंग की और धैर्य की बात कर रही हैं, तो हम सबको यहाँ पर संदेश आपके द्वारा देना चाहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं या सड़क पे हों तो धैर्य से रहें, ताकि आप अपना भी नुकसान ना करें और किसी और का नुकसान ना करें। और ड्राइविंग में तो करना ही होता है, बाकी आपने लिखा है कि परीक्षाओं में भी आपको धैर्य रखना है, विच इज़ वेरी ट्रू। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। आपको हमारे आकाशवाणी रेनबो के किसी भी कार्यक्रम के बारे में, उसके संदर्भ में कोई भी बात कहनी है, आप लिख के भेज सकते हैं हमारे पास। आपके जो सुझाव हैं उनको हम बड़े गौर से देखते हैं, उन पे काम करते हैं। आपकी तारीफों के लिए हम अपनी पलके बिछा के बैठते हैं, और आपके जो शिकायतें हैं उन्हें हम बहुत गौर से सुनते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, और आज बिंदास बोल में मैं हूं रंजन आपके साथ। चलिए आपकी एक ईमेल और लेते हैं। विजय कुमार नामदेव ने दिल्ली से हमारे पास मेल लिख के भेजी है और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। जाहिर सी बात है, ये लिख रहे हैं कि इन्हें चंद्रानी मुखर्जी का मैसेज मसाला मिक्स पसंद आता है। इसके अंदर इस कार्यक्रम में इन्हें जो लास्ट इन्होंने 2 और 3 मई को लिखते हैं कि सुना था और उसमें जो टॉपिक था इन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा सबिया नकवी का बहुत दिनों बाद इन्होंने कार्यक्रम सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। 19, 20 और 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं और आपकी याद आती रही प्रोग्राम में, उन्होंने एक से बढ़कर एक 90s के सॉन्ग बजाए थे जिन्हें सुनकर ये बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं और जो ओल्ड सॉन्ग्स शायरी और मोटिवेट करने वाली बातें करती हैं उन्हें सुनकर बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लिखा है इन्होंने। और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रभात प्रोग्राम में जो प्रेजेंटर्स हैं उनसे कहिए कि सुबह के समय पूरे दिन के जो हमारी कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि कुछ आरजेस नहीं बताते हैं जिससे कि ये मिस कर जाते हैं जो उनके बेस्ट या फेवरेट आरजेस हैं वो उस समय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये हमारा बिल्कुल प्रयास रहता है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम होता है, सजीव होता है, और इसमें जब टाइम का कई बार कंस्ट्रेंट हो जाता है तो हो सकता है कभी कभार आपने सुना हो और ऐसा वही दिन हो जब आपने सुना हो, और सुबह से लेके रात 12 बजे तक के कार्यक्रम जनरली बताते हैं। अगर उन्होंने नहीं बताए तो उसके लिए माफ़ी, वरना आप कोशिश कीजिएगा। मैं भी कई बार सुनता हूँ सुबह उठ के, तो बाकायदा पूरे दिन की जो विवरण है, कार्यक्रम की जो लिस्ट है वो बताई जाती है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि आकाशवाणी रेनबो दिल्ली के कार्यक्रम रोजाना सुनते हैं और इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, सभी आरजेस की प्रस्तुति बहुत बढ़िया लगती है। और आगे लिख रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी एट 90 इस श्रृंखला में आरजे निशा भारद्वाज मैम जी का रोज गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में वो जो जानकारियां देती हैं ये इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। तो

थैंक यू सो वेरी मच पंकज जी. इनफैक्ट आजकल आप सुन रहे होंगे, आज सुबह भी ऐसे ही 90 साल पूरे होने पर जो जानकारियां दी गई मैंने खुद भी सुनी हैं, कई दिनों से हम सुन रहे हैं, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, और जाहिर सी बात है इससे आपके भी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी. और ये बहुत दिलचस्प रोचक जानकारियां, आपने इनको पसंद किया उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, और हमें मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9868107070. थोड़ी देर में लेंगे आपके व्हाट्सएप मैसेज, तो बस जुड़े रहें आकाशवाणी के संग.

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है।

विशेष भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं बिंदास बोल और आपके मैसेजेस लेने का समय आ गया है। जैसा ये हमें पास लिख के भेजा है गौरव ने, और लिखते हैं कि रंजन जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी और बहुत दिनों के बाद एफएम रेनबो भी सुना। आपको हॉटलाइन बातें इधर उधर कार्यक्रम में सुना करते थे शायद हर मंगलवार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शायद नहीं, इट इज़ ट्रू। उसके बाद वो कार्यक्रम बदल के नाम हो गया था उस टाइम पे, बात से बने बात। तो जो हॉटलाइन था उसके अंदर तो हम आपके कॉल्स लेते थे, फिर आपके मैसेजेस लेने लगे। अब वो आप लिखते हैं कि बुधवार को प्रीति मोहन जी आती थी और सोमवार को सुषमा जी आती थी, इसलिए मुझे भी याद है कि मैंने आपको उस कार्यक्रम में सुना था। काफ़ी अच्छा लगता था, बहुत दिनों के बाद आपको सुना। बस कहना चाहता हूँ कि बिंदास बोल को हर हफ्ते करवा दीजिए। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, इनफैक्ट इवन आई फील कि हर हफ्ते होना चाहिए, बट ठीक बात है, जायज़ आपने बात कही है। और आप कह रहे हैं अभी बहुत सारे गाने सुनाए, उसके पीछे कुछ राज है, और राज की बात थोड़ी देर में बताऊंगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, कितने गौर से सुनते हो भाई, आप तो पिछले 5-7-10 साल पुरानी बातें भी बता रहे हो। तो प्रीति जी तो अब रिटायर हो गई हैं और वैसे कभी कभी यहाँ आती हैं, उनको भी आपका हम यू नो आपका नमस्कार पहुँचा देंगे। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, गुड्डू धाकड़ लिख रहे हैं कि बात से बने बात को फिर से चालू कराइए, यही बात लिख के भेजा है। हमारे पास एक और नाम है दीपक खत्री फरीदाबाद से, और ये लिखते हैं कि 10 बजे पर बात से बने बात प्रोग्राम अच्छा लगता था, उसको दोबारा से चलवा दो। हाँ जी, बस आपने कहा तो चलवा देते हैं। देखिए अब क्या है कि सुबह 10 बजे का जो कार्यक्रम है वो वेस्टर्न म्यूजिक वालों की तरफ चला गया है, तो हमारा तो स्लॉट ही चला गया है। आई हाय, इवन आई फील इट सो, बिकॉज पता क्यों, मेरा तो बहुत जुड़ाव था भाई, मैं वो खास कार्यक्रम खुद ही करता था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। आपसे ज़्यादा दुख तो मुझे हो रहा है, लेकिन आप इस तरह से मैसेजेस भेजते रहिए, पता नहीं भगवान कब सुन ले, और भगवान से पहले भगवान का इंसान कब सुन ले, यानी हमारे जो ऊपर बॉसेस हैं, जो लोग नीति बनाते हैं और जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि किस समय क्या जाएगा। हो सकता है सुन के 10 बजे हमें वापस ऑन एयर कर दें, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ पॉसिबल, बट इसीलिए तो ये कार्यक्रम बना है जिसका नाम है बिंदास बोल। और यहाँ पर आपके जो बोल हैं, जो आपके वचन हैं, आपकी जो बातें हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से बिना किसी संकोच के आप जो करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए, इतनी प्यारी ईमेल लिख के भेजी है, बहुत बड़ी ईमेल लिखी है, थोड़ा सा यहां पे मैं पढ़ देता हूं। संजीव कुमार ग्राम खुखानी जिला करनाल हरियाणा से लिखते हैं, महोदय मैं वर्ष 2007 से एफएम रेनबो सुन रहा हूं और आकाशवाणी दिल्ली का श्रोता हूं। कह रहे हैं कि इसके अंदर इस कार्यक्रम में मैं आपको श्रोताओं पर मैंने श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रमों में पोस्ट कार्ड और अंतरदेशीय पत्र कार्ड कई पत्र लिखे और भेजे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 2007 से पहले की भी अगर मैं बात करूं तो बोरे भर के चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड आते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, बोरी भर के। उन्हें उठाने के लिए बाकायदा 2 लोग लगते थे, और क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, एक कार्यक्रम आता था पीओ बॉक्स 503 जो हर हफ्ते आता था, और उसमें मैंने कुछ एक साल मैंने भी आवाज़ दी, तो उस कार्यक्रम से पहले बहुत सारे पोस्ट कार्ड हमें शॉर्टलिस्ट करने पड़ते थे, पढ़ने पड़ते थे, और आपकी हैंडराइटिंग जो होती थी अलग अलग लोग की, हर किसी की अपनी हैंडराइटिंग होती है, उसको समझने के लिए बहुत सारी हमारा प्रयास उसमें जाता था। लेकिन क्योंकि अब मैसेजेस आते हैं या ईमेल आते हैं तो उसमें ये जो हैंडराइटिंग की जो बात है वो तो अब दूर की बात हो गई, और टेक्नोलॉजी ने हमें इसमें तो ज़रूर साथ दिया। खैर, अब और बहुत सारी यहाँ पर बातें आपने लिख के भेजी हैं। आपने लिखा है कि रश्मि जी का इन्होंने कार्यक्रम सुना, सुषमा जी का

कार्यक्रम सुना सिटी लाइट्स, उनको पसंद आया। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं और एक बड़ी ख़ास बात लिखी कि डायल अ करियर नाम का कार्यक्रम होता था और इसे सुनते थे, और मेरे ख्याल से इस तरह का कार्यक्रम अभी भी आता है या नहीं आता है आप कहते हैं, लेकिन करियर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर कभी ना कभी आते ही रहते हैं, हर वक्त आते हैं, और स्पेशली जब एडमिशन्स का दौर होता है या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल्स में, उस टाइम तो हम उससे रिलेटेड इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको एडमिशन में या करियर चुनने में आसानी हो सके। तो बस इसी तरह से अपना प्यार आपने बनाए रखना है, हमको सुनते रहना है। यहाँ पर फिर से एक गाना आपको सुनवाता हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बिंदास बोल। आपके मैसेजेस लेंगे, ईमेल्स लेंगे, जुड़े रहें आकाशवाणी के संग। दिन के 2400 घंटे, साल के 362 दिन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अनिता मुखी, सिमरन मुखी और सुदर्शन मुखी का ईमेल भी मेरे पास है। साथ साथ इन्होंने इतना प्रयास किया कि इन्होंने मैसेज भी कर दिया है कि लिख रहे हैं कि मेरे वाला सॉन्ग अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। 1:39 में मैसेज भेजा था, हमारी पसंद का गीत सुनवाया तो बहुत दूर की बात हमारा मैसेज भी कार्यक्रम से दूर रखा गया। फिर हमारे मैसेज भेजने और कार्यक्रम सुनने का अर्थ क्या रहा? बहुत निराशा हुई कार्यक्रम से। पहले तो मुझे आपके इन दो शब्द जो आपने लिखे हैं, ये सुन के या ये पढ़ के मुझे देखिए मैं मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही हैं। और आखिर में आप लिखते हैं कोटि कोटि धन्यवाद। पहले आप निराश हैं, उसके बाद करोड़ों धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए मैं समझ सकता हूं क्योंकि ये कार्यक्रम मैं भी करता हूं, मेरे वाला सॉन्ग। इसमें हमारी मजबूरी ये होती है कि देखिए पूरे एक घंटा 55 मिनट का अगर कार्यक्रम है तो उसके अंदर हम 8, 10, 12 रिक्वेस्ट ले सकते हैं हद लगा के, और जोर लगाएं तो 15 गाने, वो भी अगर थोड़ा थोड़ा गाना चलाएं तो फिर वो गाने के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसे में हमारे पास अगर 150, 200, 500 मैसेज आ जाएं तो आप बताइए, कुछ मैसेज छूट जाएंगे ना? तो दुर्भाग्यवश आपके मैसेज उसमें छूट गए। बाकी मुझे याद पड़ता है आपके, मैंने अपने कार्यक्रम में बहुत दफ़ा आपके गाने शामिल किए हैं। तो निराश मत होइएगा, ट्राई करते रहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझान, रसरियात जात के सिल पर पड़े निशान, तो फिर आरजे के सर पर भी निशान पड़ सकता है आपके आपकी बातों का। खैर जोक्स अपार्ट, वी रियली लव जब इस तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। अच्छा, सुदर्शन जी लिख रहे हैं जिला मुरादाबाद यूपी से के बाद से बने बात प्रोग्राम कहां कर दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहां कर दिया मतलब कहां चला गया? आएगा आएगा, आज बहुत सारे लोगों की इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है और हम अपनी कॉपी में से रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका हो सकता है, आप यू नो जस्ट बी होपफुल, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक प्रोग्राम होता था सवरती जाए जीवन की राहें, आंखें हैं अनमोल, पोक्स बॉक्स 111, और बहुत सारी बातें लिख के भेजी हैं। अपना नाम बताइए, आपने नाम अपना नहीं लिखा है, बाकी सारी बातें लिख दी हैं। देखिए कुछ इसमें आपने जो नाम लिया है ना, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होते, ये बन के आते हैं और जब उनका समय हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। इनकी और सीरीज़ बनेंगी तो आगे आपको सुनने को मिलेगा। तो फिर जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल रेनबो के संग। आपके केंद्र और आपके आपसे तनिक भी शिकायत या उसकी गुंजाइश भी नहीं है, अरे वाह, दिल खुश कर दिया आपने। राहुल सिंह लिख रहे हैं बिजनौर से, आपके यहाँ से प्रसारित सभी प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और भी महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। थैंक यू राहुल जी, आपकी बातें सुन के हमारे अंदर फिर से ऊर्जा आ गई। अब मुझे लगता है मुझे चाय नहीं पीनी पड़ेगी, अब मैं वैसे ही स्फूर्ति से भर गया हूँ। वैसे भी ये चाय का टाइम थोड़ा है, ये तो खाना खाने का टाइम है, लंच टाइम है, और अधिकतर महिलाएं होती हैं जो इस में काम में लगी रहती हैं, ज़्यादातर किचन में। और ऑल द लेडीज, ऑल द आंटीज, सब के लिए ये गाना थोड़ी देर के लिए, ये सुनते हैं बिंदास बोल में।

भैया आपसे बातें करते हुए समय का पता ही नहीं लगता, समय यूं उड़ जाता है जैसे कि कोई चिड़िया। और आपके नाम हम यहाँ ज़रूर पढ़ेंगे। एक मेल हमारे पास आई है, मोहम्मद सरफराज आलम जोगिहार दशना बिहार से, अररिया बिहार से लिखते हैं कि नियमित श्रोता हैं, लगभग 2 दशकों से कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं और ये साथ में लेखक हैं, शायर। हमें पता है सर आपकी, हमने कई बार 2-4 कविताएँ 2-4 पंक्तियाँ हमने ज़रूर अपनी आवाज़ दी है, तो इसलिए हम भी बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं आपकी बात सुन के। आप चाहें तो हमें फीडबैक fmrainbow@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं अगले बिंदास बोल के लिए। एक बार फिर से हमारा एड्रेस नोट कीजिए, ये वन वर्ड है, feedback@fm

rainbow@gmail.com। और एक दो लोगों के और ईमेल आए हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ, नाम एटलीस्ट यहाँ पे ज़रूर लूँगा। विजय कुमार नामदेव, इनका मैं ईमेल पढ़ चुका हूँ, और बाकी मैं कुछ एक मैसेजेस यहाँ पर चलते चलते लेना चाहूँगा, क्योंकि अगले कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सेंसस के ऊपर जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उससे जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। पिछले हफ्ते भी हमारे यहाँ पर बहुत सम्माननीय हैवी वेट हमारे गेस्ट आए थे, और आज भी हमारे स्टूडियो में थोड़ी देर के अंदर शालिनी सिंह के साथ रहेंगे। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, और थोड़ी देर में आपके साथ वो हाजिर भी हो जाएंगे। हमारे गेस्ट रहेंगे आज सलोनी राय, जो IAS हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ की। शैलेंद्र सिंह परिहार जी हैं, वो भी IAS हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर सेंट्रल नॉर्थ के। और साथ ही साथ विभा शर्मा हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस के। तो बड़ा खास कार्यक्रम है, बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। आप कहीं मत जाइएगा, रेनबो को सुनते रहिए। यहाँ पर रंजन को इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम से। एक दो नाम आपके जाते जाते यहाँ पर ज़रूर लूँगा। और राजा हिंदुस्तानी का गाना सुनना चाहते हैं, तो मैंने आपसे जैसा कहा अभी कार्यक्रम बिंदास बोल है, आज कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग नहीं है। और चलते चलते दिनेश, सीमा, लक्ष्य, आपकी जाते हुए लास्ट मैसेज मैं ये कहूँगा, आपने हमारी प्रेजेंटेशन की यहाँ तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच। कुछ एक नाम यहाँ पे आपने लिए हैं, चंद्रानी मुखर्जी, सुजाता रथ, प्रियंका मामगीन, वीर दमन, RJ गोपाल, और बाकी सभी हमारे RJs जिनकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन कहता है टेक केयर, गुड बाय, आपसे होगी फिर से मुलाकात इन्हीं एयरवेव्स पर। जुड़े रहे हमारे साथ 2400 घंटे आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, जय हिंद। आशियाना में है आपका स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। यूं तो हम सभी अपने अपने आशियानों में रहते हैं, लेकिन एक साझा आशियाना हम सबका है जिसे भारत देश कहते हैं। और उस भारत देश में रहने वाले भारतवासियों यानी जन जन की जो भागीदारी है और उनका जो सहयोग है वो सुनिश्चित करने के लिए हम करते हैं जन

0: आपके लिए ये जो अभियान है वो सहज और सरल बन सके। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास तीन मेहमानों का। सबसे पहले आप हैं सलोनी राय, IAS, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और इसके अलावा हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह परिहार, IAS, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर सेंट्रल नॉर्थ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू जी।
0: और इसके अलावा हमारे साथ हैं विभा शर्मा, आप हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सेंसस की बात करें, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि क्योंकि कल से हमारा फील्ड सर्वे स्टार्ट हो जाएगा पहले चरण का सेंसस के, तो अच्छा है कि आज हम इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूकता फैल पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ कहना है सर, बताएं आप।
3: हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों की इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। जैसा कि अभी आपको पता है कि 1 मई से 15 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन का हमारा ये कार्यकाल चल रहा है, आज इसका लास्ट डे है। तो लोगों से मेरी अपील ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ एन्यूमरेशन में पार्टिसिपेट करें, और जब हमारे सेंसस ऑफिसर कल से लोगों के घरों में विजिट करें तो उनका स्वागत करें और जो जानकारी उनसे मांगी जा रही है वो सहर्ष उनको प्रदान करें।
0: बिल्कुल, स्वगणना के लिए तैयार है आपका कहना है। बिल्कुल, आप सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये होने वाला है कि पिछली जनगणना और अब में क्या कुछ खास नया है, क्या बदलाव आए हैं उसमें?
2: देखिए, एक तो जैसा अभी हम कह रहे हैं कि पहला सेंसस है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल मोड में होगा
0: जी,
2: जिसमें हमारा प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हम मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग्स और सारी चीजें, और अब जो फाइनल हमारा स्टेप है डेटा कलेक्शन, वो भी थ्रू डिजिटल मोड में होगा। तो उसकी वजह से एक तो ये है कि डेटा में ट्रांसपेरेंसी और डेटा जो हमारा डिसेमिनेशन की जल्दी हम डेटा पब्लिश कर पाएंगे। दूसरी चीज है, पहली बार आएगा जो स्वगणना वाला, जो सर ने अभी बताया कि नागरिक खुद ही अपना डेटा फिल कर सकते हैं, तो ये चीज पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में विभा जी?
4: नमस्कार, मैं सलोनी, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। हमारा लोगों से अभी सबसे पहले हमारी यही अपील है कि कल से जो हमारी सेंसस की एन्यूमरेशन की टीम्स फील्ड पे उतरने वाली हैं, तो सभी लोग इसमें अपना पूरी तरह से कोऑपरेशन दें और अपना डेटा जो प्रोवाइड कराते हैं वो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करें। इसमें लोगों को जानकारी देने के लिए हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारी जो टीम्स कल से घर घर विजिट करें। कई लोगों को ये डाउट होता है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन टीम्स को प्रोवाइड कराएं या नहीं, मगर ये जो डेटा है ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। हमारी जो टीम्स हैं उनका, सभी टीम्स को आईडी कार्ड्स होंगे, आईडी कार्ड्स पे क्यूआर कोड होंगे, आप उन टीम्स की ऑथेंटिसिटी खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसा कि पहले के दो स्पीकर्स ने बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, इस बार एक नया एक पहल की गई है जिसमें आप सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते थे जो कि 1 मई से 15 मई तक है। उसमें ये फायदा है कि एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है।
0: जी बिल्कुल, और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल हैं शायद समय हमारे पास कम पड़े। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ शैलेंद्र जी, आप बताएं कि कितने फेजेस इसमें होने वाले? सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कितना समय लगेगा वो जानना चाहेंगे लोग इसमें।
3: सबसे पहले तो फर्स्ट फेज हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन का था जो 1 मई से 15 मई तक का था, आज इसकी समाप्ति है। इसके बाद हाउस टू हाउस हमारी टीम जाएगी, तो ये 16 मई से 14 जून तक ये हाउस लिस्टिंग का फेज चलेगा
0: जी।
3: इसके बाद फिर 2027 में, फिर जनवरी फरवरी में आएगा जिसमें हम पर्सन टू पर्सन काउंटिंग करेंगे और इसको फाइनल कंक्लूजन तक ले जाएंगे
0: जी। ये बात तो सही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चलेगा क्या, या सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा?
3: ऑनलाइन तो अभी तक सेल्फ एन्यूमरेशन जिसमें आप 70% अपनी इन्फॉर्मेशन खुद से भर सकते हैं, फिर हमारे एन्यूमरेटर्स घर घर जाएंगे और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है उनसे लेकर उसमें फिल करेंगे
0: जी।
3: तो ऑनलाइन ये जैसा मैडम ने अभी बताया कि ये फर्स्ट टाइम है जिसमें फुल्ली डिजिटल हो रहा है, और ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो शायद कभी नहीं और कहीं नहीं होती है, जिसमें एवरी पर्सन इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हमारे लोग इस बार टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया जा रहा है, और जैसे आप लोगों को याद होगा जैसे 2011 में पहले जो सेंसस हो रही थी, उसके पहले जो सेंसस हुई है, आजादी के बाद से अब तक 8 बार सेंसस हो चुकी है और ये 8वीं 9वीं सेंसस होगी। इसी तरीके से जितनी भी सेंसस होती है जिसमें बहुत सारा जो है तो हार्ड कॉपी लेके जाते थे लोग, हमारे इन्वर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, इस बार वे बेल

0: इक्विप्ड हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने सारे जो प्रोसीजर होगा उसमें ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा, तो उसमें आप ट्रैक कैसे रख पाएंगे?
0: ऑफलाइन नहीं होगा, सारी चीजें इसमें जो है तो ऑनलाइन ही होंगी, डिजिटल फॉर्म में ही होंगी। तो ऑफलाइन का इसमें वो नहीं है कि मैनुअली हम प्रेजेंट होंगे वहां पर।
1: अच्छा, ओके।
0: हाउस टू हाउस सर्वे करने के लिए, जैसे मैं अभी आपके स्टूडियो में आया तो आप यहां पर हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास माइक है, टीवी है, कंप्यूटर है, घर में एसी है, कूलर है, कार है, ये सारी चीजें उसमें फिल करनी है।
1: यानी कि सारी तो चीजें डिजिटली ही ऑपरेट
0: वो हमारे इस मोबाइल के माध्यम से हमारे ऑफिसर आपसे पूछेंगे इन्फॉर्मेशन और वही भरेंगे, जो आप बताएंगे वही भरेंगे
1: जी। पब्लिक भी डेटा ट्रैक कर सकती है? सलोनी जी आप बताएं।
2: पब्लिक अपना जो इन्फॉर्मेशन भर रही है, जैसा कि सेल्फ एन्यूमरेशन में 70% तक इन्फॉर्मेशन वो खुद ही भरते हैं, तो वो उनको पता है, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन भी है वो भी वो खुद व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा आपने पूछा, हमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के और चार्ज ऑफिसर्स लेवल के डैशबोर्ड का एक्सेस प्रोवाइड कराया गया, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो कितने उन्होंने घर कवर किए, कितने हाउसेस को उन्होंने कवर किया मैन्युअली, कितनी जगह पे गए, वो सब ऑनलाइन हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट टाइम इस लेवल का ये एक्टिविटी की जा रही है कि ऑनलाइन माध्यम से हम इसको मॉनिटर करेंगे।
1: बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं अपने लिसनर्स से भी बीच में कहना चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच में हम आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे जिसका आपको जवाब देना होगा, और जो जवाब देगा उसका नाम यहाँ पर हम रेडियो पर अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं।

0: बिल्कुल, लक्ष्य को हर हाल में पाना है क्योंकि हमें जो जनगणना का अभियान है उसे सफल बनाना है। कहाँ आशियाना में बात कर रहे हैं हम आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कि जो जनगणना होने वाली है, जो जिसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है 2027 की, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान तीन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खास मेहमान है। आप हैं सलोनी राय, IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, और साथ में हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ से हैं आप। और इसके अलावा शैलेंद्र सिंह परिहार हैं हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ। और इसके अलावा हमारे साथ हैं विभा शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, आप सभी का, लिसनर्स का भी। और अब तक हमने बात करी कि क्या कुछ सेंसस के फेजेस हैं और इसमें क्या क्या हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग हैं वो कौन लोग इसमें इंक्लूडेड हैं और कौन लोग इंक्लूडेड नहीं हैं? जी
1: हाँ, जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो किराए पर हों, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन भी है, तो जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं वो सभी को करना है। सिर्फ किन्हीं नहीं करना है, जो कि कैजुअल विजिटर्स हैं, कोई घूमने आया हुआ है, कोई मेहमान किसी के घर पर आया हुआ है, या वो लोग जिन जो कि बाहर, मतलब अगर फॉरेनर्स यहाँ रह रहे हैं उन्हें इंक्लूड करना है, लेकिन हमारे जिनको इम्यूनिटी प्राप्त, जो कि हमारे एम्बेसी में, बाहर के जो एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, सिर्फ उनको काउंट नहीं करते हैं, कैजुअल विजिटर्स एंड डिप्लोमेट्स, उसके अलावा सभी लोग काउंट होते हैं।
0: जी, और जो बाहर से लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं या जो दिल्ली में है और बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, उनका
1: जो घूमने के लिए जाते हैं, सिर्फ उनको जिस जगह पे के वो मूल निवासी है, मतलब रहते हैं नॉर्मली, वहीं पर काउंट करना है। अगर दिल्ली का कोई पर्सन बाहर घूमने गया हुआ है अभी इस टाइम पर, तो उसका जहाँ घर है दिल्ली में वहीं काउंट होगा।
0: जी जी, ठीक ठीक है। आपकी तरफ आते हैं शैलेंद्र जी, आप बताएं कि जो ये, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हमारा जो सेंसस का सारा प्रोग्राम है वो कितना समय लेता है, शुरू से लेके आखिर तक कितने दिनों की प्रक्रिया है ये?
2: ये काफ़ी टीडियस एक्सरसाइज है, और इसमें हम लोग सबसे पहले यह इंश्योर करते हैं कि हमारी पूरी मशीनरी पूरी तरीके से तैयार हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, सबको साथ में लेकर चलें, पब्लिक में भी अवेयरनेस लगे। लगभग इसमें एक साल का समय लगता है, और पहले की भी जो हुई हैं उनमें एक एक साल में इस तरीके से हुई हैं। हमारे यहाँ जैसे ऑल इंडिया एक्सरसाइज एक साथ होती है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बार दो फेजेज में किया है। फर्स्ट फेज में, जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस का एनुमरेशन चल रहा है। हर घर में हमारी टीम जाएगी। जैसा कि अभी आपने पूछा कि इसमें कौन इंक्लूड है, तो सब कोई इंक्लूड है, ऑल द बिल्डिंग्स इंक्लूड हैं इसमें। जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है। बस जैसे कि मैडम ने बताया, फॉरेन डिप्लोमेट्स और जो कैजुअल विजिटर्स हैं, जैसे घूमने टहलने के लिए लोग जाते हैं, वो लोग काउंट नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे लोग इसमें काउंट होंगे। और ये ऑलमोस्ट पूरी एक साल की प्रक्रिया कह सकते हैं हम लोग।
0: दो फेजेस में जो हमारा अलग अलग चलता है ये प्रोसीजर, मैं आपके पास आना चाहूंगी सलोनी जी, कि एक होता है हमारा हाउसिंग और हाउस लिस्टिंग को लेकर, और दूसरा होता है हमारा काउंटिंग को लेकर, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी, ये दो फेजेस में ये प्रक्रिया होगी जनगणना की, जिसमें पहले फेज जो अभी कल से हमारे एन्यूमरेटर्स की टीम आएगी, वो चलेगा 16 मई से लेके 14 जून तक, हमारा पहला फेज रहेगा जहाँ पे हाउस होल्ड लेवल का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अगला फेज जो होगा, जो कि फरवरी 2027 में अप्रॉक्सीमेटली शुरू होगा, उसमें एक पर्सन लेवल तक, एक ह्यूमन लेवल तक वहाँ पे काउंट किया जाएगा, जिसमें कि उनकी इनकम और जो भी एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तब हमारी सेकंड फेज में कलेक्ट होंगी। अभी एक हाउसहोल्ड लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स इस फर्स्ट फेज में कलेक्ट होंगी।
0: जी, और ये अगले साल 2027 तक, कब तक खत्म होने की आशा है इसकी?
3: जी, मार्च तक हमारा, लगभग हमारा

0: सेकेंड फेज की डेटा कलेक्शन खत्म होगी, उसके बाद कंपाइलेशन एनालिसिस करके, तो ये लगभग हम मिड ऑफ 27 या 2027 तक हमारा ये सेंसस की जो रिजल्ट्स हैं वो तब तक आ जाएंगे।
1: जी, पहले से बहुत बेहतर और बहुत आसान हो गया। मैं आपके पास आना चाहूंगी विभा जी, यहाँ पर जो लोग दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में आसपास में लोग रहते हैं, वो कई लोग रेंटल अकोमोडेशन में भी रहते हैं या पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको किस तरह से काउंट किया जाएगा या काउंट किया नहीं जाएगा?
2: काउंट किया जाएगा, क्योंकि देखिए सेंसस का पर्पस जो है प्लानिंग के लिए है। गवर्नमेंट प्लानिंग कैसे करेगी कि कितने रिसोर्सेज यूज में आ रहे हैं, उसके लिए हमें कितने लोग वहां रह रहे हैं जो वहां के रिसोर्सेज यूज में लेंगे, वो सबकी होनी चाहिए गिनती। इसलिए हमारी रेंटेड पॉपुलेशन भी काउंट होगी, पीजी वाले भी काउंट होंगे, हॉस्टल वाले भी काउंट होंगे,
1: और इसमें वो भी काउंट होंगे जिनके पेरेंटल हाउस यहाँ से।
2: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है।
2: सब लोग जो जहाँ रहते हैं, सामान्यतः जहाँ रह रहे हैं वहीं पर उनकी गिनती होती है सेंसस।
1: जी, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी शैलेंद्र जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए? मान लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन तो नहीं ही कर रहे हम, एक तरह से मान लेते हैं कि ऑनलाइन सारा फॉर्म फिल करने के बाद में जब आप विजिट करते हैं वहां पर, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने?
3: सिटीजन्स के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
1: अच्छा,
3: ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल डेटा उनसे लिया जाता है
1: जी।
3: एज पर एक्ट के हिसाब से एम्पावर्ड है, जैसे आरटीआई के तहत भी कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है, और सब लोगों को अपनी स्वेच्छा से अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि उनके घर की क्या पोजीशन है, उनका घर कच्चा है, पक्का है, घर में उनके गाड़ी है, नहीं है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी हमारे इस तरह के सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब उसमें देना है। और किसी के साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
1: जी बिल्कुल, मुझे लगता है इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन पहली बार ही ली जा रही है, ये टीवी, फ्रिज, कार, एसी, इस सब का क्या लाभ होने वाला, मैं जानना चाहती हूँ, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था कभी भी।
0: देखिए, हमें ये समझना होगा कि सेंसस का जो ये डेटा कलेक्शन है, इट इज़ जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लानिंग आवर स्ट्रैटेजीज इन द नियर फ्यूचर, और जो एसेट्स की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इस पर्सपेक्टिव से मांगी जा रही है कि हमारा लोगों का, फैमिलीज़ का इनकम लेवल क्या है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसको असेस करने के लिए मांगी जा रही है। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन एक अहम रोल प्ले करती है कि अभी लोगों का इनकम लेवल क्या है, कितने लोग हमारे उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, और कितने लोग पावर्टी लाइन में नीचे हैं, कितने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये सब चीज़ें असेस करने के लिए एसेट्स की इन्फॉर्मेशन भी लोगों से सीख की जाएगी।
3: इसमें मैं चीज़ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 में, तो उसके लिए सारे डेटा हमारे पास आज की डेट में आ जाएंगे। जैसे ही हमारा सेंसस कंप्लीट होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, सोशियो इकोनॉमिक क्या पोजीशन है लोगों की, उसके हिसाब से हम फर्दर प्लानिंग बना सकते हैं और जो गैप्स हैं उनको हम फिल कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है उज्ज्वला योजना का, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 के डेटा लिए गए थे, उसके हिसाब से ये स्कीम बनी थी, और आज की डेट में हम सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गए हैं कि इंडिया के हर घर में गैस कनेक्शन होगा। तो हम इसी को इस लेवल पर ले जाना चाहेंगे कि जब हमारा डेटा जितना एक्यूरेट होगा, सही होगा, सच्चा होगा, लोगों के पास क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, कहाँ रोड है, कहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उसको हम लोग जो होते हैं इस डेटा को उतनी बेहतर प्लानिंग, उतना बेहतर एग्जीक्यूशन।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी जो है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला, और मैं अपने लिसनर्स से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है 2027 की जनगणना को लेकर, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर, हमारा नंबर है। आप सुन रहे आशानिया आशियाना कार्यक्रम का नाम है हमारे, और 102.6 पर आप इसे सुन पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। मैं हूं आपके साथ शालिनी।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
5: पता का चाय गजब का स्वाद।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: वेलकम बैक। यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, और आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, साथ में 102.6 हमारी फ्रीक्वेंसी है और कार्यक्रम है आशियाना। आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं कि 2027 की जो जनगणना है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरह से आप इस पूरे प्रोसीजर को करेंगे पूरा, और क्या क्या आपके लिए सहूलियतें यहाँ पर दी गई हैं, उसे बताने के लिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे खास मेहमान हैं यहाँ पर सलोनी राय हैं, आप हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, और साथ में हैं शैलेंद्र सिंह परिहार, डेजिग्नेशन है इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर सेंट्रल नॉर्थ। विभा शर्मा है हमारे साथ में, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। आप तीनों का बहुत स्वागत एक बार फिर से, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी हैं, और साथ साथ मैं अब आगे बढ़ रही हूं और जानना चाहती हूं आपसे कि जो डोर टू डोर हमारे जो एन्यूमरेटर्स जाएंगे उनकी पहचान, उनकी जो ऑथेंटिसिटी की पहचान कैसे करेंगे लोग, अचानक से कोई आ जाए घर पर तो कोई कैसे एंट्री देगा उन्हें?
1: आपकी बात एकदम सही है। इसके लिए हम लोगों ने अपने जितने भी सारे हमारे सेंसस से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं सबको हमने आइडेंटिटी कार्ड इशू किए हुए हैं और एक लेटर भी इशू किया है, सो दैट जिसके घर में जाएं वो लोग वो बताएं, अपनी पहचान बताएंगे और साथ में वो लेटर भी दिखाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की तरफ से हमारे चार्ज ऑफिसर्स के इस द्वारा इशू किया गया लेटर के साथ में आपके यहाँ पर आएंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक और कोशिश की है कि जितने भी हमारे RWAs हैं उनके पदाधिकारियों के साथ में हमारे ऑफिसर्स की मीटिंग्स हो चुकी हैं, हम लोगों ने उनको मैसेजिंग भी कर दी है। इसी तरीके से पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है तो कर दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के सारे टीचर्स को भी हमने कन्वे कर दिया है, सो दैट ये नीचे तक मैसेज पहुंच जाए कि हमारी जब ऑफिसर्स आएंगे तो किस तरह का उनके पास आई कार्ड होगा और किस तरीके से जो है तो उनको इंटरटेन करना और मेन करना और देखना है। ये बात सही है कि अगर सेंसस ऑफिसर्स के चक्कर में अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि जो आपसे अनवांटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है तो कतई शेयर ना करें, किसी भी तरह के डिजिटल फ्रॉड में या किसी भी तरीके से उसमें मत फंसें। एक्चुअल सेंसस ऑफिसर्स के पास आई कार्ड होगा, उसका जो है एक ऑफिसर्स का लेटर होगा, तभी उसको इंटरटेन करें।
0: और अगर मान लीजिए कोई फंस जाता है इस तरह से किसी साइबर फ्रॉड में डिजिटली, तो क्या इसके लिए प्रोसीजर है, फिर क्या कर सकते हैं?
1: हमारी टीम इसके लिए चाक चौबंद है, कंट्रोल रूम भी हमने स्थापित कर दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम है और उसके लिए हर वार्ड में भी हमारा एक कंट्रोल रूम है। पुलिस के साथ में, पुलिस स्टेशन के साथ में हमारा प्रॉपर टाइप है, कहीं पर भी अगर किसी भी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे हमारे ऑफिसर को या सिटीजन को, हमारी टीम तुरंत उसको कैटर करेगी।
0: जी बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसे जानना चाह रही हूँ कि इस कैटर करने के लिए वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, क्या कॉन्टैक्ट करने का जरिया है?
1: कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने RWAs को जो है तो भेजे हुए हैं, RWAs के साथ हम लोगों की मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमारे ऑफिसर्स जो एन्यूमरेटर्स हैं उन RWAs के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं।
2: इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि लोगों को ये हम अवेयरनेस देना चाहेंगे कि किसी भी तरह का उनको ऐसा कोई भी इंस्टेंस सामने आता है तो वो अपने कंसर्न सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में या कंसर्न DM ऑफिस में कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड हैं, वहाँ जाके किसी भी तरह की सेंसस रिलेटेड उनको कोई कंप्लेंट करनी हो तो वो ज़रूर हमारे ऑफिस उनके लिए हर वक्त खुले हैं।
0: जी बिल्कुल। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इस बार जो ID कार्ड दिए गए हैं उनमें एक QR कोड भी है जिसको कि रिस्पॉन्डेंट मतलब जो सिटीजन है वो स्कैन करेंगे तो जो आपके पास पर्सन आए उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पोर्टल का लिंक खुल जाएगा और वहां पर भी उनका नाम और डिटेल्स आ जाएंगे तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सेंसस से ही आए हैं।
3: ग्रेट। लेकिन जो लोग डिजिटली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है उनका क्या?
0: हाँ, वही उसी के लिए मैडम और सर ने बताया कि फिर वो जो कंसर्न मतलब जैसे जो नॉर्मल प्रोसीजर है अगर फ्रॉड हो जाता है कुछ SDM के नोटिस में लाएं और कंप्लेंट करें।
3: ठीक है, चलिए अब हमारे लिसनर्स का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास पहला मैसेज आया है इनका, सुधीर सिंह खुतुबगढ़ से इन्होंने हमें मैसेज किया है, कह रहे नमस्कार, और कहते हैं कि मैं जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे जो है वो हरियाणा के हैं और मैं रह रहा दिल्ली में हूँ, तो मेरे लिए क्या सही होगा?
1: उनकी सेंसस होगी, उसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा, ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं आशियाना 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं 2027 की जनगणना को लेकर। एक छोटे से ब्रेक में जाते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं और जानेंगे हम सेंसस को लेकर बहुत सी और भी बातें।

0: आज कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, है कि नहीं। मैं हूं आपके साथ शालिनी और आप सुन रहे हैं आशियाना 102.6 पर। बात हो रही है आज जनगणना 2027 की, सेंसस 2027 की, और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं। तीन खास मेहमान जुड़े हैं। सलोनी राय हैं हमारे साथ, आप हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। साथ में है शैलेंद्र सिंह परिहार, आप हैं IAS और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ। और इसके अलावा हमारे साथ हैं तीसरे मेहमान विभाष शर्मा, डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। बहुत स्वागत एक बार फिर से। चलिए शुरुआत हो चुकी है, बहुत अच्छी हुई है और उसको और आगे बढ़ाते हैं। ये बताएं हमें कि क्या सेल्फ इनुमरेशन जो है वो कंपल्सरी है, स्वगणना जिसे कहते हैं?
1: सेल्फ एन्यूमरेशन की जो प्रक्रिया है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज़ रेकमेंडेड। क्योंकि जब कोई भी इंसान सेल्फ एन्यूमरेशन में अपना डेटा भरता है तो वो अपनी कन्वीनियंस में और एक्यूरेसी में, उसमें डेफिनेटली एक लोगों की इंफॉर्मेशन जो भर रहे हैं वो एक्यूरेट रहती है। इसलिए हम एंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि वो सेल्फ एन्यूमरेशन में अपना डेटा भरें। और जब भी एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर्स घर आएंगे आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए, सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे कि अपना सेल्फ एन्यूमरेशन का ID हमें बताइए। तो वो अगर ID उन्होंने भरा होगा तो वो ID जनरेट हुआ होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वो स्वैच्छिक तरह से एन्यूमरेटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे हमारा टाइम और एफर्ट भी कम होता है और एक्यूरेसी भी उसमें बढ़ती है।
0: और मान लीजिए किसी के पास ID मिस हो गई है या किसी भी वजह से नहीं है, फिर वो क्या कर सकते हैं? क्या वो दोबारा से पूरी प्रक्रिया होगी?
2: नहीं, वो जिस तरीके से एन्यूमरेटर उन घरों में जा रहे हैं जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन किया ही नहीं है, तो ये भी उसी तरीके से काउंट होगा और पूरा डेटा एन्यूमरेटर उनसे फ्रेश भरेगा।
0: ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कोई खुद से नहीं फिल कर पा रहा है तो क्या जो हमारे ऑफिसर्स जाते हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं फिर से?
2: नहीं नहीं, सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड तो आज आखिरी दिन है, कल से तो फील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी सेल्फ एन्यूमरेशन जिनको करना है वो आज तक कर सकते हैं, आज कर सकते हैं।
0: आज कितने बजे तक का समय है हमारे पास?
2: आज रात तक का समय है, और कल से एन्यूमरेटर जाएंगे। तो जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया है वो सिर्फ अपना ID शेयर कर सकते हैं एन्यूमरेटर के आने पर, जिन्होंने नहीं किया है उनका पूरा डेटा एन्यूमरेटर फिल करेंगे, लेकिन एन्यूमरेटर हर घर में जाएंगे ही।
0: ठीक है, और जो सेल्फ एन्यूमरेशन है शैलेंद्र जी, वो करने के बाद क्या फर्स्ट प्लेस कंप्लीट हो जाता है? ऐसा लोगों का सवाल आता है, क्या इतना कर लिया तो काफी है, उसके बाद पॉज कितना लेना है फिर?
3: नहीं, सेल्फ एन्यूमरेशन इसमें क्या है, ये पहली बार ऐसी भागीदारी है जिसमें जनता सीधे सपोर्ट कर रही है। जैसे आपकी जनगणना तो आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ एन्यूमरेशन का पर्पज ये है कि आप हमारा काम कम कर रहे हैं और साथ में इस जनगणना में भागीदारी भी कर रहे हैं। तो लगभग 70% इन्फॉर्मेशन पब्लिक खुद अपनी उसमें भर देगी अपने पोर्टल के से जुड़कर, और उसका एक 11 डिजिट का जो है तो एक कोड मिलेगा, उस कोड को अपने पास सिक्योर रखेगी। जब हमारे एन्यूमरेटर ऑफिसर्स जाएंगे आपके घर में तो जब पूछेंगे आप अपना वो 11 डिजिट का नंबर बताएंगे, वो जब डालेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पोर्टल पर भी आ जाएगी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी बची हुई 30% इन्फॉर्मेशन आपसे पूछकर हमारे ऑफिसर वहीं पर भर देंगे आपके घर में ही, और वो कंप्लीट हो जाएगी।
0: जी बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं?
3: मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल सेल्फ एन्यूमरेशन से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, पूरी प्रक्रिया तभी कंप्लीट होगी जब हमारे ऑफिसर आपके घर जाएंगे। लेकिन 70% की सहभागिता किसी भी नागरिक के लिए सेंसस अभियान से जुड़ना एक बहुत बड़ा कदम है।
0: जी बहुत बड़ा कदम है, और उस बहुत बड़े कदम को बढ़ाते बढ़ाते ना लोगों की सांस फूलने लगती है इतनी गर्मी में। आपको भी ख्याल रखना है, अपने लिसनर से कहना चाहती हूँ मैं कि जो ऑफिसर्स आपके घर में आते हैं इतने दूर से, आपके ख्याल को लेकर वो आते हैं, आपके विकास को लेकर आते हैं आपके पास, आप उनसे इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा चाय पानी के लिए, चाय पानी से मतलब आप कुछ दूसरा मत लगाइएगा, मेरा मतलब है सिर्फ पानी, या कुछ उनको गर्मी में राहत देने के लिए कुछ ठंडा कुछ उनको पेश कर दें, उनको उतना ही अच्छा लगता है। आप किसी घर आए मेहमान को कैसे उनका स्वागत करते हैं, बस उसी तरह से उनका भी स्वागत करें, तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान हो जाएगा और उन्हें भी खुशी मिलेगी। चलिए अब हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको मैंने कहा था कि आपके लिए एक सवाल होगा, तो सवाल ये है कि हमारे जो जनगणना के फेजेस हैं, जो दो फेजेस की हमने बात करी है, वो कौन से हैं? अगर आपने ध्यान से शुरू से शो सुना है तो आपको जरूर पता होगा। नंबर नोट कर लीजिए 9868107070, इस पे आपको मैसेज करके अपना आंसर देना है। फटाफट से मैसेज कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं शो में, छोटा सा एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और फिर से सवाल जवाब का दौर जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, आशियाना सुन रहे हैं आप 102.6 पर आकाशवाणी रेनबो विद मी शालिनी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं शालिनी और आप सुन रहे हैं आशियाना। आशियाना में आज बात हो रही है सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज सेल्फ एन्यूमरेशन का आखिरी दिन है। आपके पास बहुत कम समय बचा है, फटाफट से उसे कर लीजिए। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं, खास मेहमान है हमारे साथ आप सलोनी राय IAS और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। शैलेंद्र सिंह परिहार है हमारे साथ, आप हैं IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ। और साथ में है विभाष शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। वेलकम बैक अगेन लिसनर्स, आपका भी और हमारे जो गेस्ट हैं उनका भी। अब तक हमने बात की सारी कि किस तरह से दिल्ली में हमको लोगों को रेंटेड अकोमोडेशन और बहुत तरह की चीज़ें हमने बात करी, और हमारे साथ जो लिसनर्स भी जुड़े हैं। उससे पहले कि आगे बढ़े, मैं अपने सवाल करूं आपसे, मैं लिसनर का एक सवाल ले लेती हूं आपसे। ये है संजय बोल रहे हैं मेरठ से, कहते हैं कि नमस्कार मजिस्ट्रेट साहब, मेरा एक सवाल है कि 2011 की जनगणना में इनका शायद किसी वजह से नाम नहीं है, इनकी ये शिकायत है। कहते हैं कि इनका जो आयुष्मान कार्ड है वो भी नहीं बन सका है, कैसे इन्हें पता चलेगा कि जो मेरी जनगणना में इनका जो नाम है या नहीं है, ताकि दोबारा से गलती ना हो। बताएं आपसे चलेंद्र जी।
1: सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा अभियान ये है कि एक भी हमारे यहाँ का नागरिक छूटना नहीं चाहिए, और हमारी ये जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी। हो सकता है किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई होगी। अब मुझे नहीं लगता है 2027 की जनगणना में कोई भी व्यक्ति छूटेगा। किसी स्कीम का पार्ट बनना नहीं पार्ट बनना एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन कोई भी हमारे यहाँ से, चाहे वो छोटे से बच्चे को एक दिन पहले भी जन्म हुआ होगा, तब भी उसका इस जनगणना में भागीदारी अवश्य होगी।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आपको जो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया होगा। और लिसनर से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके कोई भी और सवाल है जनगणना से लेकर 2027 की, तो आप कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी आ रही है आपके सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल करते वक्त, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फटाफट से हमें मैसेज करिए, 9868107070 है नंबर। आप सुन रहे हैं आशियाना, बात कर रहे हैं हम सेंसस 2027 की। जी, कितना जरूरी है सेंसस में पार्टिसिपेट करना, और क्या वजह है इतने बड़े लेवल पर इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन लेने की, मैं आपसे जानना चाहूंगी। सलोनी जी बताएं।
2: देखिए, सेंसस में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही जरूरी, एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रेगुलरली 10 साल के इंटरवल में, इस बार ये लगभग 16 साल के इंटरवल पे की जा रही है ये एंटायर एक्सरसाइज। और ये इन्फॉर्मेशन हमारी देश की प्लान्स, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज बनाने के लिए एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल, एक ग्राउंडिंग है जिसके ऊपर हमारी सारी डिसीजन मेकिंग निर्भर करती है। और इसीलिए सेंसस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी एक जिम्मेदारी है, और उसी से ही हम एक देश की एक प्लानिंग को एक सही दिशा में और एक सही पर्सपेक्टिव में हम लेके जा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, और लोगों से हमारी ये अपील है, हम आज यहाँ आए भी इसीलिए हैं कि हम लोगों को अपने माध्यम से अपील कर पाएं कि वो इस सेंसस की प्रक्रिया में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें और अपना सेल्फ एन्यूमरेशन से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। और जो कल से हमारी टीम्स घर घर

0: मैप पूरी तरीके से कॉपरेट करें और ये समझते हुए करें कि डेटा जितना एक्यूरेट होगा उसमें हम सबकी भलाई है, तभी गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसी मेकिंग कर पाएगी प्रगति और विकास के लिए।
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जैसे
0: जी।
1: हम होली मनाते हैं, हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसके
0: जी
1: लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसी
0: बिल्कुल।
1: तरीके से अगर हमको विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें इस जनगणना में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसको त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। और ये
0: बिल्कुल।
1: फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जिसमें इतनी व्यापक जानकारी इकट्ठी होती है, और शायद ये भी एक अपने आप में बड़ा उत्सव होना चाहिए कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, सबकी जानकारी एक साथ एक पोर्टल पर मिल सकती है।
0: जी, ये जानकारी सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए भी।
1: पब्लिक के लिए जब जब हम इसको लेके आएंगे तो इसमें हमारा जो है www.censusindia.government.in, इस पर जो है कोई भी एक्सेस कर सकता है।
0: कोई भी एक्सेस कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात का डर है कहीं इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना हो, ये कैसे अश्योर
1: ये
0: करेंगे?
1: हमारे जो सेंसस एक्ट 1948 है उसके तहत सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। आप RTI के तहत भी इस इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते हैं।
0: जी
1: ये इंफॉर्मेशन किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं की जा सकती है।
0: जी
1: ये और किसी जो है तो कहीं पर जो है तो एज ए एविडेंस के रूप में इसकी मान्यता नहीं हो सकती है। तो ये केवल और केवल लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है, या ये नॉलेज होना जरूरी है कि ये एक्ट के तहत ही जो है तो किया जाएगा, और डेटा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होगा, जो कहीं पर मिसयूज होने की संभावना जीरो है।
0: बिल्कुल। और अगर कोई, जी जी बताएं विभा जी, आप कुछ इसमें
1: कहना चाहते
0: हमारा जो डेटा पब्लिश होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है,
1: हैं?
0: इसलिए जो वेबसाइट पर या कहीं भी जो डेटा है तो उस तरीके से मिसयूज नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: डेटा हम लोग एग्रीगेट लेवल पर, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर, उस तरीके से पब्लिश होता है,
1: जी।
0: और इंडिविजुअल
1: और ये
0: डेटा ना
1: डेटा, जी,
0: पब्लिश होता है ना कहीं पर शेयर किया जाता है।
1: ये डेटा जो आप अगर मान लीजिए किसी को शेयर करते हैं तो वो कौन
0: हम
1: कंसर्न्ड
0: किसी
1: ऑफिसर्स
0: से
1: हैं,
0: शेयर नहीं
1: किसी से
0: करते
1: शेयर
0: ये
1: नहीं कर
0: डेटा,
1: सकते?
0: इंडिविजुअल लेवल डेटा, जैसा सर ने बताया कि इवन एज एविडेंस भी हम कोर्ट में भी ये डेटा पेश नहीं करते
1: वाह
0: हैं।
1: क्या बात है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे सलोनी जी इस बारे में?
2: जैसा कि मेरे फेलो स्पीकर्स ने बताया, ये कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा इज़ अ प्राइमरी कंसर्न, और ये पूरी प्रक्रिया और पूरी ये जो प्लानिंग है इसी हिसाब से की गई है कि हम जो सिटीजन्स का सबसे प्राइमरी कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इट हैज़ बीन ड्यूली टेकन केयर ऑफ, एंड सिटीजन्स को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू लीकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो बेझिझक अपने एन्यूमरेटर्स को बताएं और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें।
1: जी, और बाकी तो आपको बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं पहले ही कर दी गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी शैलेंद्र जी कि अगर इन सब के बावजूद भी कोई ऐसा है जो किसी भी वजह से, आलस की वजह से या उसको नहीं जाना है, तो क्या वो चलेगा कि अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है इस अभियान में, और नहीं,
0: क्या पेनल्टी है उसके लिए?
1: हाँ, पेनल्टी का प्रोविजन से भी आपकी बात सही है कि अगर कोई इसको किसी भी तरीके से इस प्रक्रिया में बाधा बनता है या निगेटिव उसके लिए करता है तो एक्ट में प्रोविजन है पेनल्टी का भी। इसमें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, और साथ में ₹1,000 का जो है तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सिटीजन ये चाहे कि मैं अपनी जनगणना नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, कंपलसरी है, ये हमें करना ही करना है। अगर कोई अपने घर में एक बार में नहीं मिलेगा तो हमारे ऑफिसर दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, जिस समय नहीं मिलता उस समय उनके पड़ोसी से बात करेंगे या RWA के मेंबर से बात करेंगे। तो सारे नागरिकों से मेरी अपील यही है कि अगर इस दौरान वो बाहर रहते हैं तो अपने RWAs को, अपने पड़ोसियों को बताकर जाएं, और हमारे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएं, सो देट हमारे ऑफिसर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और इस प्रक्रिया में भागीदारी आपको दिला सकें।
0: जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे हम, उसके बाद जारी रखेंगे अपनी चर्चा को। आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूँ आपके साथ शालिनी, और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आएंगे लौटकर फिर से यहाँ पर 102.6 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आय हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी।

वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ चालिनी और आशियाना सुन रहे हैं आप। आज के इस हमारे शो में आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 की। वो सारी प्रक्रिया क्या है, कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितना आसान हो गया पहले से अब आपके लिए, ये सारी जानकारी आपको मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सलोनी राय है हमारे साथ, IAS डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, और साथ में है शैलेंद्र सिंह परिहार, IAS

0: चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो सवालों की प्रक्रिया है जो शुरू होगी, जो फॉर्म भरने में कितने सवाल होते हैं और किस तरह के सवाल किए जाते हैं, लोग अक्सर डरते हैं कि हमसे क्या पूछ लिया जाएगा, आप बताएं शैलेंद्र जी।
1: सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम बखूबी देखते हैं और जानते हैं, वस्तु स्थिति हमारी आज की कंडीशन क्या है। जैसे उसमें टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे
0: जी,
1: और वो सवाल होंगे जैसे आपका घर है तो आपका घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, साथ में आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो यूज करते हैं वो क्या हैं, आपके घर में कोई गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, या आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। साथ में आपके यहाँ टॉयलेट्स है या नहीं है, इसी तरीके से वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है या नहीं है, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, ये सारे सवाल इसलिए होते हैं कि इसी तरह के सवालों को इकट्ठा करके हम लोगों के गवर्नमेंट ये जान सके कि हमारे देश के नागरिकों की हालत किस तरह की है, कैसे लोगों के, और हम ऐसी कौन सी पॉलिसी और नीति बनाएं जो लंबे समय तक जो है तो हम उनको इस गरीबी की हालत से निजात दिलाकर एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आ सके
0: जी। आपका क्या कहना है सलोनी जी इस बारे में, अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन सही ना दे, दो एसी घर में है और वो एक भी ना बताए या एसी की जगह कूलर बताए, क्या करेंगे आप उस केस में?
2: देखिए, सेंसस की प्रक्रिया में सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन देंगे, इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स या क्रॉस चेकिंग नहीं होता है इन्फॉर्मेशन का। मगर अगर सिटीजन्स गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो एक्ट में उसके अगेंस्ट पीनल प्रोविजन्स भी हैं और फाइन भी लग सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है अगर लोग गलत इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसीलिए हम ये लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन दें, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। विमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह के रेजिडेंट, एक नॉर्मल रेजिडेंट सेंसस की अगर हम बात करें उस प्रक्रिया में, तो वो कैसे एक नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होगा, वो पूरा प्रोसीजर क्या कंप्लीट कर लेंगे जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही सिटीजन है?
3: नहीं, देखिए, जनगणना में हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, इवन अगर कोई बाहर का नागरिक भी यहाँ रह रहा है एक्सेप्ट फॉर डिप्लोमेट्स, हम उनको भी काउंट करेंगे
0: जी।
3: तो सामान्यतया जो जहाँ रह रहा है उसकी गिनती सेंसस में होती है, उसके लिए ना तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, हम लीगल इलीगल इस सब में कुछ भी सेंसस नहीं देखता है, जो जहाँ रह रहे हैं उसकी वहाँ पर गिनती की जाती है
0: जी। एक हमारे पास सवाल आया है हमारे लिसनर का, शैलेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि कर्मवीर नाम है इनका, ये जिला झज्जर हरियाणा से ये भेज रहे हैं, मैं कहते हैं कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म अगर ये भर लेते हैं और जब ये वापस आते हैं अपने घर पर उन्हें पता चलता है कि उनकी तो गणना पहले ही हो गई है, तो फिर क्या करेंगे वो? इट्स काइंड ऑफ फनी सिचुएशन, इजंट इट?
1: ऐसी सिचुएशन वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी होती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है, इसमें एक घर में कोई भी एक मेल या फीमेल, जिसको भी इस बात की जिम्मेदारी, जिसको जनरली जो घर के काम करते हैं वो एक जो है तो जिनको आप मालिक की हैसियत समझते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं
0: जी।
1: अगर जज साहब हैं, अगर नहीं हैं उनके घर में, या उनकी वाइफ हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और उन्होंने जो है तो वो शेयर नहीं किया है हमारे ऑफिसर से, तब भी उनकी काउंटिंग वही होगी जो हमारे एनुमरेटर ऑफिसर ने ही की है और उसको लॉक किया है,
0: क्योंकि डेटा वहां पर,
1: जब तक हमारे ऑफिसर उसको लॉक नहीं करेंगे तब तक वो काउंटिंग में नहीं आएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप दो बार काउंट नहीं हो पाएंगे, डोंट वरी। आपके पास आती हूँ विभा जी, आप बताएं कि जैसे आपने अभी बात करी शैलेंद्र जी की, ओनरशिप की बात करी उन्होंने कि कौन काउंट होगा मेन ओनर के तौर पर, उन्होंने क्या सिलेक्ट करना चाहिए फॉर्म भरते वक्त?
3: आप ओनरशिप की बात कर रहे हैं या हेड ऑफ हाउस?
1: हेड ऑफ द फैमिली।
0: मैं हेड ऑफ द फैमिली की भी बात करूँ, ओनरशिप की बात करूँ कि फॉर्म में क्या क्या और किस तरह से उनका
3: ओनरशिप? देखिए, एक उसमें सवाल है क्योंकि ये पहली जो मकान सूचीकरण फेज जो हमारा चल रहा है HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, उसमें एक सवाल है कि जिस घर की हम गणना करने जा रहे हैं, जिस सेंसस हाउस की, वो ओन्ड है या रेंटेड है? तो उस केस में, और रेंटेड में भी दो चीजें हैं कि यहाँ पर तो किराए पर रह रहे हैं लेकिन उनका कहीं और पर घर है, तो उसके लिए अलग अलग कोड है। और ओनरशिप मतलब उस हाउसहोल्ड में जितने मेंबर हैं उनमें से किसी का भी वो मकान हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ओनरशिप स्टेटस में जिसको हम हेड ऑफ हाउसहोल्ड बता रहे हैं उसी के नाम पर मकान हो, उस परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी के नाम, किसी का भी वो ओन्ड हो सकता है।
0: बिल्कुल।
3: फिर दूसरी बात आती है हेड ऑफ हाउसहोल्ड की, घर का मुखिया भी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, कोई भी वो पर्सन जिसको कि वो परिवार के सदस्य मानते हैं।

0: ये हमारा सारे डिसीजन लेने में ये पर्सन है, उसका नाम हो सकता है।
1: जी, इससे पहले कि हम शो का जो समय है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और अपने आखिरी चरण की ओर पहुंच रहा है, मैं अपने लिसनर को बता देना चाहूंगी कि हमने एक सवाल पूछा था कि जो हमारा जनगणना का जो ये फेज है वो कितने भागों में बटा हुआ है, क्या फेजेस हैं इसके। तो बहुत से आंसर्स तो आए हैं लेकिन ज़्यादातर गलत आए हैं, तो मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। सही आंसर ये है कि दो फेजेस में बटा हुआ है ये, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस जिसे कहते हैं HLO, और इसके अलावा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जिसे PE कहते हैं, जनगणना यानी कि आपकी काउंटिंग जिसमें होगी। मैं ठीक कह रही हूँ?
0: बिल्कुल।
1: अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं।
0: नहीं जी, बिल्कुल
2: एकदम सही।
1: चलिए, तो आप ये बताइए मुझे शैलेंद्र जी कि ये जो सारा प्रोसीजर है इसका सर्वे सर्वा कौन है, कौन इसे कंडक्ट करता है?
2: बेसिकली सर्वे सर्वा इसमें भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस, इसमें इसके रजिस्ट्रार जनरल हैं, कमिश्नर हैं
1: जी।
2: और वो फिर इसी तरीके से जैसे दिल्ली एक स्टेट है, यूटी है, यूटी कैपिटल सिटी, इसमें डायरेक्टर सेंसस इसके डायरेक्टर हैं और वो सारा इसको देखते हैं। सारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनके अंडर में जो है तो रखकर दिल्ली के सारे जो है तो हम लोग प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स होकर पूरे इसको देखते हैं। हमारे ऊपर जो है तो डिविजनल कमिश्नर हैं और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर ADM हैं, SDMs हैं और चार्ज ऑफिसर्स हैं। हम लोगों ने हर वार्ड में एक चार्ज ऑफिसर बनाए हुए हैं, असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर्स हैं, उसके बाद फिर सुपरवाइजर्स हैं, फिर एनुमरेटर्स हैं, ये पूरी हमारी चेन है।
1: हमारी ड्यूटीज़ की बात आई है विभाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्नो बाउंड एरियाज जो हमारे हैं, जो लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, क्या यहाँ पर प्रक्रिया कुछ अलग है या सेम चलेगी?
0: प्रक्रिया सेम चलेगी, सिर्फ एक अंतर रहेगा जो PE फेज की, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज की आपने बात की कि वो फरवरी 2027 की जगह सितंबर 2026 में ही उन जगहों पर जो स्नो बाउंड एरिया है वहां पर हो जाएगा।
1: ठीक है, सलोनी जी आपके पास आना चाहूंगी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सारा प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाएगा, आई गेस फरवरी या मार्च तक आपने कहा कि ये कंप्लीट हो जाएगा
0: जी,
1: तो उसके बाद क्या कोई प्रूफ, कोई स्लिप कुछ ऐसा हमें मिलेगा जिससे सिटीजन ये कह सकें कि अब हमने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी हैव डन इट, तो वी आर द पार्ट ऑफ इट?
3: नहीं, सिटीजन लेवल पे तो एज सच नहीं मिलेगा, मगर जब ये एन्यूमरेशन की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और जब डेटा कम, क्योंकि अब सब ऑनलाइन कलेक्शन हो रहा है तो डेटा कंपाइल होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेंसस की वेबसाइट है उस पर कंपाइलेशन के बाद जितना जल्दी होगा वो सेंसस की वेबसाइट पे पब्लिश होगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और सिटीजन्स वहाँ से अपना जो भी एग्रीगेट लेवल पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी जो पब्लिक डोमेन पे आएगी वो उस पर इन्फॉर्मेशन अपना ले सकते,
1: डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, जल्दी से फटाफट हमें क्विकली एक एक मिनट के अंदर आप हमें डूज एंड डोंट्स बता दें चलते चलते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, खास तौर पर ख्याल रखना है, होशियार बहुत ज्यादा नहीं बनना मुझे लगता है, आप बताएं।
2: सबसे बड़ी मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से यही अपील है कि इस जनगणना के प्रोसेस में भागीदार हों और इसमें पार्टिसिपेट कर खुलकर करें। जो भी हमारे ऑफिसर्स आएँ उनको इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो इमीडिएटली बताएं और अपना भी ध्यान रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हमारे ऑफिसर्स का भी ध्यान रखें।
1: जी बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी कही है अभी और मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो हैं इतने नरम दिल तो हैं कि वो अपने घर आए मेहमान का स्वागत तो करेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी?
3: सभी श्रोताओं से हमारी यही अपील है कि इसको देश के लिए अपना जो एक देश सेवा का पार्ट मानते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए इस प्रक्रिया में जुड़ें, और जितने भी हमारी टीम्स आएंगी वो हमारे बीच से ही हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा ही हैं, तो उनको उसी स्पिरिट में वेलकम करें और अपनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दें, बिकॉज इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से हमारी डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, तो इसलिए आप सही इन्फॉर्मेशन और पूरी कोऑपरेशन के साथ इसमें भागीदारी बने।
1: आप बताएं विभाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: हाँ, और जनगणना में हमारे जो मेन हीरोज हैं इस एक्सरसाइज के वो हमारे इन्यूमरेटर्स हैं जो कि एक एक घर पे जाकर इतनी गर्मी में काम करेंगे, एंड दे आर मोस्टली स्कूल टीचर्स जो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन से हैं, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए उतना ही उनको रिस्पेक्ट देते हुए सब अपना डेटा जरूर से अच्छे से दें।
1: जी, ना सिर्फ आप इस काम में लगे हों बल्कि आप भी अपना डेटा वहां तक पहुंचा रहे होंगे, आप वो भी प्रक्रिया पूरी करेंगे, खुद की भी पूरी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज रियली डिलाइटफुल टू हैव यू हियर ऑन दिस शो, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ जो है हमने बात करी आशियाना में सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 को लेकर, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहे सलोनी राय IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, और साथ में है शैलेंद्र सिंह परिहार IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ, और इनके साथ हैं विभा शर्मा डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी कड़कती धूप में आप जो काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैडम।
1: लिसनर्स, आप सुन रहे थे आशियाना आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ चालनी। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, जनगणना में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, और यही कहती हूं मैं आपसे कि डिजिटल भारत की नई पहचान जनगणना 2027 का सफल अभियान है कि नहीं।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, जहां वह सिर्फ बोलना नहीं जीना सीखता है। परिवार वह छत है जहां बचपन सपने देखते हैं, और वही नींव है जहां भविष्य खड़ा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हर साल 15 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाती है। इस दिन का उद्देश्य परिवारों की भूमिका और समाज में उनके महत्व को समझना है। इस वर्ष की थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटी।

0: यू।
1: और साथ हैं केया चटर्जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे परिवारों में मौजूद असमानताएं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर MS तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
0: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम, सुरक्षा, जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें है या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग कितना निर्वहन कर रहे हैं। और संस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों में जो हम संस्कार देते हैं वही जो हम बिहेव करते हैं वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो जितना फैमिली का अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं उतना ही बच्चा के विकास पे असर पड़ता है परिवार का।
1: किया जी, आपसे जानेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें।
2: जी देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको अपने माँ से एक जुड़ाव होता है और वो अपने माँ के साथ रहता है, तो जब बढ़ता रहता है तो प्यार पनपता है। सो जैसे आज आपका टॉपिक है लव, सो उसमें भी बच्चा अच्छी तरह ही पनप जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ को या पापा को उनको जादू की झप्पी दे के या उनके साथ बैठ के उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उनको पास रखना होता है। जितना पास रखेंगे, जो फिज़िकल टच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मानसिक एज वेल एज इमोशनल। अब हम आते हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो जिन्होंने रिसर्च किया और एक बुक भी पब्लिश किया, 5 Love Languages ऑफ किड्स। उसमें क्या होता है, उन्होंने डिफाइन किया कि 5 Love Languages, जैसे कि ना कुछ बच्चों को गिफ्ट मिलना बहुत पसंद है, वो फर्स्ट हो गया उसका लव लैंग्वेज। फिर किसी को तारीफ करना पसंद है तो वो हो गया सेकेंड लव लैंग्वेज। फिर हो गया फिजिकल क्लोजनेस। फिर हो गया है कम्युनिकेशन, कैसे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। फिर हो गया है ख्याल रखना। तो ये 5 चीज़ें हो गए। तो जिस बच्चे का माँ को पता लग जाता है कि उस बच्चे का कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा फिफ्थ, उस हिसाब से बच्चों को प्यार देना चाहिए। अब वो तो बचपन की बात हो गई। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है बच्चा, तो उसमें उसके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, तो माँ को पापा को सारा टाइम एक बच्चों को एक माहौल देना है, एक उनको सेफ्टी नेट देना है कि बच्चे तुम्हारे लिए हम सदा पास में रहते हैं, तो बच्चा खुल के बात करेगा। ऐसे करते करते जब बचपन से माँ बाप का सपोर्ट रहता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ आता है उनका पढ़ाई का उच्च होने का इच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस, फिर सब कार्य में उनकी मन की इच्छा भी बड़ी होती है। फिर उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर स्पोर्ट्स से माइंड खेलता है। तो ऐसे करके मेंटल विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है,
1: मतलब मेंटल सिक्योरिटी मेंटली स्ट्रांग करती है बच्चों को।
2: एग्जैक्टली, तो वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना नींव,
1: जी
2: तो नींव से ही स्टार्ट करना होता है।
1: जी, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम?
3: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
1: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: पहले इस सबसे बेहतरीन परिवार को मैं बधाई देती हूँ।
1: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू।
1: रेडियो डॉक्टर आपका परिवार है और आप भी इस रेडियो डॉक्टर का हिस्सा हैं।
3: मैं हिस्सा हूँ, पर मेरा सबसे प्यारा परिवार यही है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक तो मैं रेडियो फ्रीक हूँ, रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, टीवी मेरे को अच्छा नहीं लगता,
0: दैट्स वेरी
3: पर आपका प्रोग्राम मैं एक महीना कनाडा गई थी, बहुत मिस किया।

0: तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई, और
1: आपने
0: आपने
1: मिस
0: जो
1: करा, अगर आप लोगों का कॉल नहीं आता तो शायद हम भी आप लोगों को मिस करते हैं। आप हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए प्रोग्राम में हर बार एक नया
0: बिल्कुल
1: टॉपिक लेकर
0: बिल्कुल,
1: आए। तो
0: आपको
1: बताइए
0: बताओ
1: मिसिज बेदी, क्या प्रश्न है आपका?
0: मेरा प्रश्न। सबसे पहले तो ये जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया ना, पांच प्यार के स्टेप्स बच्चों के लिए,
1: हाँ जी
0: बच्चों की ग्रोथ आजकल इसलिए रुक रही है कि एक तो पेरेंट्स की आपस में ज्यादा अच्छे से नहीं रहते, क्योंकि
1: सही में
0: जॉब
1: बिल्कुल
0: में काफी डिफिकल्टीज आती हैं। अगर पेरेंट्स ही झगड़ेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल
0: दूसरा, फैमिली में अब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, सबसे बड़ी ये कमी आ गई है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़िया ही नहीं है।
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा
0: उनकी
1: पूछा आपने मैडम।
0: गाइडेंस,
1: क्वेश्चन करें तो शायद ज्यादा
0: हाँ
1: लोग
0: बस क्वेश्चन मैं आपको यही
1: जी
0: कर रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं है मेरी आपसे, बस यही
1: जी
0: रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज दुनिया जाने
1: जी
0: और आपका मैसेज दूर दूर तक पहुंचे कि फैमिली बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है।
1: जी हाँ,
0: तो
1: आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं
0: हाँ,
1: कि
0: तो मैं आप
1: फैमिली लोगों
0: सबका,
1: कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
0: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि
1: थैंक यू,
0: इतना बढ़िया आप लोगों का कंसेप्ट है जो आज का है,
1: जी
0: और
1: हम भी
0: आपका,
1: आपके लिए
0: हाँ
1: बहुत थैंकफुल। आप हमारे साथ, आपने कॉल किया, हमारे साथ जुड़े रेडियो डॉक्टर में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी केयर जी ने कहा कि मानसिक विकास बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ऐसे में अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें कि बचपन से ही उनकी ग्रोथ सही हो?
2: देखिए हमारे एक कहावत है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कैसा बनेगा, वो उसके पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। तो पूरी फैमिली को इस पे ध्यान देना है। हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद सोचते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं। कई बार तो 6 महीने पर बच्चा हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। बल्कि जब से बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से आपको उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है। क्योंकि आपका जो, हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में, एक गोल्डन 1000 डेज कहते हैं हम इसको, 1000 दिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मदर का आपको पूरा ख्याल रखना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, उसकी डाइट को अच्छा रखना है। क्योंकि आधे से ज़्यादा विकास बच्चे का पेट के अंदर ही हो जाता है। जो बच्चे के अंग बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसी को आपको कैरी ऑन करना है।
3: इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला ना, तो ये बच्चों का घर में एक माहौल अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना अपने पेरेंट्स से अब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी परेशानियाँ, जैसे कि आर्थिक परेशानियाँ हुए या नॉर्मल कोई भी ऑफिस रिलेटेड हुआ या मानसिक परेशानी, तो बच्चे वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके बिहेवियर में आता है, जैसे वो झल्लाहट करते हैं या टीनेज टैंट्रम्स करते हैं, कुछ
2: बिल्कुल
3: भी
2: बिल्कुल
3: पिटफुल। तो उस वजह से बच्चों को देखना होगा कि भाई माहौल अच्छा है तो ही वो अच्छी तरह कर पाएंगे।
2: बिल्कुल
3: माहौल से
2: आपने
3: हम भी इस माहौल को
2: जी
3: थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: जी

0: खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा। घर घर तभी लगता है जब परिवार में सभी सदस्य हों, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे कि कॉलर ने पहले हमसे लाइन पे कहा था कि आजकल माता पिता वर्किंग है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे में बच्चों के वेलबींग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ सही हो, वो हेल्दी हो? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं हेल्दी है, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, तो क्या किया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्दी होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन को देखें तो इसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। तो कोई बच्चे का वेट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको इमोशनली कितना स्ट्रांग है बच्चा, सोशली वेलबींग है कि नहीं उसकी, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारे कॉलर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पेरेंट्स घर में झगड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए, हम जो पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है, तो मान के चलिए आपके घर में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एग्जैक्टली आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, वो सारा आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। और जाने अनजाने में है, जो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। आपको झगड़ना है वो नेचुरल, आप अकेले में भी झगड़ सकते हैं, आपको एंगर को मैनेजमेंट करना है, और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा वो करेगा। बाकी मैडम आप बताइए, कुछ ऐड कौन करना चाहें इसमें?
0: हाँ किया जी, आप बताइए कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार का क्या रोल रहना चाहिए, कितना अपनापन उनको देना चाहिए?
2: जी देखिए, बचपन से ही बच्चों के साथ रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है, उनके साथ खेले, माँ बाप खेले उनके साथ, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको फील करवाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको बचपन से ही एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग दिलवाना चाहिए कि जी थैंकफुल रहे बड़ों से, या जिनसे भी तुम मिल रहा है तुम्हें थैंकफुल रहे। फिर हम आते हैं कि थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तब जब वो स्कूल जाते हैं, तब उनमें एक पीयर्स प्रेशर के बोल भी बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो, उनके में उनमें एक अग्रेशन आता है, एंगर बिहेवियर आता है। उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि शांति से चीज़ों को सुलझाएं। वो कैसे कराएंगे? वो पहले तो जब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ रहा है, तो वो बच्चों को थोड़ी

0: देर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपने से ही संभल जाए। उसके बाद उनको समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि ये उचित है ये नहीं उचित है, ऐसे करके। उसके बाद एक दैनिक दिनचर्या पर टिके रहे ताकि एक डिसिप्लिन लाए बच्चों में, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होएगा, माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उससे बच्चों का विकास में भी परिवर्तन आएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है ना। उसके बाद जो परिस्थितियों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो परिस्थितियाँ फिर से ना आए, ये माँ बाप को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनको धुतकारे। क्योंकि जैसे माँ बाप, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ बाप जैसे करते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं, इस पे चर्चा विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ठीक पथ पे जाना है। इसीलिए उन बच्चों के साथ समय बिताएं, फिर उनको जब बाहर ले जाएं, फिर प्रोत्साहित कीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ में, जैसे गाना हुआ, उसमें माइंड का बहुत ही असर होता है, फिर योगा हुआ, फिर मेडिटेशन हुआ, इन सब चीज़ों में जो नर्व्स होते हैं उनको सूदिंग मिलता है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एकांत कैसे रहा जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिर एग्ज़ाम्स में परिवर्तन आता है, ऐसे करके शुरू से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान रखे पेरेंट्स।
2: लेकिन आजकल जहाँ सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते खेलने के लिए,
0: क्योंकि उनके होमवर्क भी तो बहुत आते हैं और सारा इंटरनेट से ही आता है।
2: जी, तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनका शारीरिक विकास कैसे करें? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए, आजकल के खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों ही माँ बाप वर्किंग हैं, बहुत मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना। खास करके बच्चों को गुड क्वालिटी टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है, और टाइम पेरेंट्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम नहीं, एंगेजमेंट बच्चे के साथ बहुत कम हो रहा है। स्क्रीन बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस कि 2 साल से पहले, 18 महीने से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो खाना नहीं खाता।
2: हम
1: मम्मी को लगता है यस, तो उसको खाना खिलाने के लिए अक्सर मना करते हैं कि आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना है, लेकिन मम्मी कहती है सर मैं सिर्फ खाना खाते समय दिखाती हूँ।
0: एग्जैक्टली,
1: आपका बच्चा कोई डस्टबिन नहीं है कि आपने मोबाइल के थ्रू उसका मुंह खोला और अंदर खाना डाल दिया, वो खाना उसको हजम भी नहीं होगा, उसको कोई फायदा भी नहीं होना, वो कुछ सीख ही नहीं रहा उस खाने से, उसको टेस्ट को नहीं ले रहा बच्चा, सिर्फ मुंह में अंदर जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है 5-6 महीने से, कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है तो स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस बड़ी फिक्स हैं। आपको 2 से 5 साल का बच्चा है, मैक्सिमम आपको 1 आवर तक आपको देना है। 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है, स्क्रीन और डिजिटल कंट्रोल, जो पेरेंटिंग कंट्रोल है वो आपको रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इतना सारी समस्याएं आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, खास करके हमारे क्लिनिक्स में बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, जिनका न केवल स्क्रीन की वजह से बल्कि जंक फूड को भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली टाइम से आप सलाह लें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है।
2: देखा जाए तो बचपन से हमने ही उनको आदत, फोन देकर एक आदत डाल दी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: लगता है कि बाहर जाएंगे इस अच्छे एक जगह बैठे हैं फोन देख लें। तो लेकिन इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को फोन ना दें?
1: बिल्कुल डिजिटल फ्री जोन आपको डिक्लेयर करना है घर में, कि जैसे आप जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ डिजिटल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए। आपका बच्चों का बेड है जहाँ पर आप सो रहे हैं वो बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए, वहाँ अलाउड ही ना होना चाहिए। 1 घंटे पहले बिल्कुल आपको मोबाइल और टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छा लगता है बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते हैं।
2: और बच्चों का जो खाली टाइम है उस पे फोन देने की बजाय बच्चों को बाहर वर्कआउट के लिए ले
1: जाएं, दिस इज द ओनली वे। अब बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो मानता ही नहीं है, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बच्चों को आप बाहर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे बच्चा आपका मोबाइल छुएगा तक नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए स्पोर्ट्स के लिए।
0: लेकिन आजकल माँ बाप ही इतना फोन पे रहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माँ बाप जो गेमिंग में आते हैं
1: बिल्कुल,
0: और फिर बच्चे इतने छोटे होते हैं 2-3 साल से वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हम थेरेपी देते हैं बच्चों को, प्रॉपर थेरेपी।
2: उसमें क्या होता है थेरेपी में?
0: देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज, न्यूरो इज माइंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक हम जो बात करते हैं अपने माइंड के साथ, और प्रोग्रामिंग हम जैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं इतने सालों से।
1: Exactly.
0: ठीक है, नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, कुछ ये टूल्स है मतलब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसके माध्यम से हम

0: पेशेंट्स को थेरेपी से ठीक करते हैं. इसमें हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिफरेंट टेक्निक्स हैं उससे हम रिलैक्स करवाते हैं पेशेंट को. उसके बाद एक्सरसाइजेस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं. उसके बाद वो बच्चा एक्सरसाइजेस थ्रू माइंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि नथीटा टाइम में होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है, उस टाइम में प्रैक्टिस कर करके वो ठीक होते हैं. बट ये भी पेरेंट्स का ही हाथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट. जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि एक रूल बनाना चाहिए, लेकिन जनरली पेरेंट्स बनाते नहीं है क्योंकि उनके कन्वीनियंस पे चलता है सब कुछ
1: जी.
0: तो अगर वो पेरेंट्स रूल बना दे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो एकदम बच्चा ठीक हो जाता है. तो जैसे
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें, हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, उन्हें क्या करना है. एग्जैक्टली उन्हें क्या लगता है कि अच्छी बुक्स दे देना, अच्छे उनके लिए मोबाइल या कुछ गेमिंग जो आजकल आते हैं वो दे देना, वो पेरेंटिंग नहीं है.
0: एग्जैक्टली
2: आपको ये सीखना है कि आपका रोल एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का रोल इतना होता है कि बच्ची को अच्छी लाइफ जीना कैसे सिखाना है, वो आपको आना चाहिए.
1: देखा जाए तो अगर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते हैं.
2: एग्जैक्टली बहुत सारा फर्क पड़ रहा है इसका.
0: आप मानेंगे नहीं, बच्चे
2: 90% यस यस 90% प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है, जो कि मैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. मैडम आपने भी देखा होगा.
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वेपिंग में आ जाते हैं बचपन से, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं. बट एक बार अगर आ गए तो बस लाइफ तो गई.
1: तो बच्चों में एंग्जाइटी हो गई, वो शायद लोनलीनेस में चले जाते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते.
0: उसके लिए भी हम NLP के थ्रू उनको थेरेपी देते हैं, तब वो सुधरते हैं. अदरवाइज और देखा गया है कि ये जो इंडिया में मानसिक अवस्था है वो कुछ अच्छी नहीं है. वो 5 crore किड्स दे आर अफेक्टेड, पीड़ित है. और 80-90% जो पेशेंट्स है, मतलब प्रॉब्लम है जिनमें, वो चिकित्सा ही नहीं करवाते, कुछ सोशल स्टिग्मा के वजह से, और कुछ जानने ही नहीं खुद पाते हैं कि
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और ये सारा स्टार्ट होता है यही एग्रेशन से, फिर एंगर से, डिप्रेशन, बिहेवियर डिसऑर्डर, और घर से ही तो शुरू होता है ये पहले.
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से. ये लिखते हैं, नमस्कार, बच्चों को प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा ना स्कूलों में हो रहा है ना घरों में, तो क्या इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? डॉक्टर तोमर पहले आप बताएं इस पे.
2: देखिए
1: शारीरिक पूछ रहे हैं कि शारीरिक विकास
2: हाँ
1: कैसे करें.
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कहानी पढ़ने से शारीरिक विकास होगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया. बट डेफिनेटली बच्चे की मेमोरी अच्छी बनती है जब कहानी सुनते हैं, एक बॉन्डिंग बढ़ती है. अक्सर जो दादी माँ की कहानियाँ हुआ करती थी वो एक मैसेज भी देती थी कहीं ना कहीं. तो वो जो हम वैल्यू सीखते हैं परिवार से, तो वो कहानी के थ्रू ही हमें सिखाया जाता था. शारीरिक विकास के लिए तो आपको बच्चे को अच्छा खाना देना है, हेल्दी डाइट देनी है, बच्चे का जो खेलने कूदने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है. बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, और स्क्रीनिंग से आपको दूर रखना है. आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्क्रीन से हो रहा है बच्चों
1: को. स्क्रीन टाइम से बचने के लिए ही बच्चों को शायद कहानी पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रेरित कैसे करें. हाँ, तो इस पे किया जी, आप क्या कहेंगे?
0: जरूर, इससे जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, माइंड को जाएगा वो आवाज़, तो सूदिंग इफेक्ट होगा नर्व्स में, ब्रेन के नर्व्स में होगा, और फिर वो बातों में फिर वो सब आता जाएगा. और फिर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक होता है बच्चों को, स्टमक एक होता है, वो पता लगता रहता है कि बच्चा ठीक से जैसे कि ना चल, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, ये सब मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं उससे पता लगता है. तो ये ज़रूरी है कि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को बहुत आराम मिलता है.
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, सभी स्टूडियो में आए एक्सपर्ट और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून.
0: थैंक यू
1: वो लिखते हैं, स्कूल में इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है, इनका कोई काउंसलिंग होता है क्या, कृपया बताएं. थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड. तो क्या जी, आप क्या कहेंगे इस पे?
0: क्योंकि काउंसलिंग की बात, ये तो होता है. हैप्पीनेस करिकुलम तो खूब ही चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री का जो ये है, कुछ करिकुलम्स है हर स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल्स में करते हैं काफी लोग.
1: बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, शायद पेरेंट्स की भी होती है कि वो बच्चों के
0: साथ का तो होता है. पीटीएम मीटिंग्स हम हर समय पहुंच जाते हैं सैटरडेज को.
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, देवदत्त परसोलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस. नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू देवदत्त जी.
2: थैंक यू सो मच.
1: इस पर

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मेरी दुनिया तू ही रे, हर माँ बाप को बच्चे को ये फील कराना ज़रूरी है कि मेरी दुनिया तू ही रे, जिससे एक परिवार में एक बॉन्डिंग दिखे। डॉक्टर तोमर, आप हमें बताइए कि बच्चे की बचपन से हर एज ग्रुप में ग्रोथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या कहाँ लैग कर रहा है, कैसे पहचाने?
2: देखिए, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी वेलबींग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज गोल्डन 1000 डेज, जो हम पहले भी आप डिस्कस किए थे। शुरू के 9 महीने का जो गर्भावस्था का समय होता है, और उसके अलावा जो 2 साल हैं, बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 90% उसी एज में हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि 2 साल के बाद बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, उसका बुद्धिमान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। आईक्यू लेवल जो होता है बच्चे का, वो 2 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, 90% हो जाता है या मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, दोनों पे ही शारीरिक और मानसिक विकास पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से गर्भ संस्कार जैसे एक कंसेप्ट आया था। जैसे आपने अगर सुना होगा तो, जैसे अभिमन्यु था, पेट में से सीख के आया था, ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हुआ होगा या कुछ सीख के आया होगा। दैट वॉज ए टोटली एपिजेनेटिस, मीन्स वो कंडीशनिंग इस तरीके से किया गया कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वो आपको 9 मंथ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 महीने आपको मदर पर फोकस करना है, मदर को खुद अपने आप पर फोकस करना है, ताकि उसका बच्चा है अच्छे से ग्रो करे अंदर। आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता होगी, जो कि प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज़ में, कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं और एक सीजरन बॉर्न बेबी होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम, उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है। एट द सेम प्रूवन थिंग, हम इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स अक्सर फैमिली प्लानिंग करते नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती ही नहीं है, उसको कई सालों पहले से आपको अपने आप को तैयार करना है, ताकि आप एक हेल्दी बच्चा समाज को दे सकें। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद देखते हैं कि शुरू का जो 6 महीने का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नींव भरती है, वो भरती है, चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो। उस समय 2 चीज़ें होती है बच्चे का, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो बच्चे को बाहर की बीमारियों से बचाना भी है हमको, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसको पहली वैक्सीन्स कहते हैं, वो है माँ का दूध। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे, बहुत सारे स्टडीज़ में ये प्रूवन हुआ है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। माँ का दूध केवल उसी समय पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि 100 साल तक के लिए, लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं आज के टाइम में, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी कैंसर्स हैं, इन सब से आपको बचाना है बच्चे को, तो सिंपल है कि बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड, मीन्स माँ के दूध के अलावा आपको सपने में सोचना भी नहीं है कि कोई एक बूंद भी ऊपर से कुछ देना है। तो ये हमारा 6 महीने तक का टाइम हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिर से स्क्रीन अंदर आ जाती है, तो उससे वहाँ आपको बचाना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको देना है, किसी और की माँ का दूध आपको देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, अक्सर माँ क्या करती है कि उसको गाय भैंस का या डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो उससे आपको बचना है। आप उसको खाना देना स्टार्ट करिएगा, माँ का दूध चलने दीजिए 2 साल तक के लिए, साथ साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से हम बच्चे को 2 साल तक डेवलप कराते हैं। उसके बाद फिर आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मम्मी को बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, सबको शॉर्टकट चाहिए, इतने सारे बेबी फूड आ गए, इसकी इंडस्ट्री देखिए कितनी बड़ी हो गई बेबी फूड की, एंड देर ऑल प्रोसेस फूड, दे आर ऑल जंक फूड, एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, दे प्रमोट ओबेसिटीज, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्शन होता है। अगर आपने कभी एक बार कुछ जंक फूड ले लिया, आपको घर का खाना बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो जंक फूड कभी भी, क्योंकि बहुत हाई शुगर होता है उनके अंदर, बहुत हाई सॉल्ट होता है, और जैसे ही बच्चा वो खाना खाने के बाद फिर घर का खाना खाता है, तो उसको वो किक नहीं मिलती है, उसके ब्रेन में वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, तो बच्चा फिर घर में खाना खाता ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बच्चा और बड़ा होता है, उसके बाद आपको बच्चे को जितना हो सकता है उतना प्ले टाइम देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जब स्कूल जाने लगे तो आपको बच्चे को अच्छा प्ले टाइम देना चाहिए, इससे बच्चा स्क्रीन से ही बचेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैडम कुछ आप एड ऑन करना चाहें इसमें?
3: जी ज़रूर।
1: जी बताइए कि जी कि कैसे बच्चों के, ये तो उन्होंने बताया डॉक्टर तोमर ने, शारीरिक विकास कैसे करें, आप हमें बताएं कि मानसिक विकास बचपन से बच्चे का कैसे करें कि जिससे वो बड़ा होते होते प्रॉपर उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए।
3: हाँ जी, देखिए जैसे ही बच्चा आ गया, बाहर आ गया जैसे बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को उनको पार्क में ले जाए, फिर पार्क में जैसे जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ जब रहेंगे बच्चों, वो अलग ही एक नेचर से इंट्रोडक्शन होएगा बच्चों का। सो ऐसे करते करते थ्रू आउट एवरी डे एक पार्क का हैबिट बनाइए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा, खेलेगा, नंगे पैर पार्क में चलेगा, ग्रास के साथ उसका ग्राउंडिंग होएगा, तो जो ग्रास के साथ उसका पैर में चलने से वो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। फिर बचपन से ही ट्राई करने के लिए कि योगा करें बच्चे, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन मेडिटेशन के रूप में नहीं, साइलेंस प्रैक्टिस करें, बोले कि थोड़ा थोड़ी देर शांत रहो। तो ये शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 5 मिनट से करेंगे, एक हफ्ता 5 मिनट किया, 2 हफ्ता 10 मिनट किया, तो जब बचपन से ही करेंगे बच्चे तो उनका आदत लग जाएगी। फिर घर में देखेंगे कि प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से भी शांति मिलती है, जो इसेंस का जो खुशबू आता है उसमें भी एक आराम मिलता है नसों को, नर्वस सिस्टम को। फिर हम आते हैं, जैसे मैं साइको न्यूरोबिक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, वो है हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने बोला, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस प्रैक्टिस किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर हाई लेवल पे गए, तो जब जब जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम कूल होएगा और आप झगड़ा नहीं करोगे बड़े होके। आजकल क्या होता है, रोड रेजेस होते हैं, रोड रेजेस में क्या होते हैं, झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज़ नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए घर का माहौल एक उचित देने के लिए माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता
1: जैसे
3: है।
1: जैसे अभी आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हो गया, झगड़ना शुरू करते हैं, हाँ, इसी से रिलेटेड एक मैसेज हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, हाउ टू कॉम्बैट द टेम्पर टेंट्रम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
3: हाँ, इसमें मैं अच्छी तरह बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह थेरेपी में मतलब ठीक किया है कुछ बच्चों का। देखिए, जैसे ही बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, छोटा बच्चा भी बहुत हाइपर होता है, ऐसा नहीं कि सब बड़े बच्चे होते हैं, तो जैसे ही हाइपर हो जाते हैं तो एकदम पूरा माहौल शांत करते, ये नहीं कि पेरेंट्स उसी टाइम ही बच्चों को सब कुछ सीखते, नहीं, वो वेट करें जब बच्चों का क्रोध शांत होएगा। देखिए, एक थॉट जब आती है वो थॉट शरीर में 3 घंटे से पहले नहीं जाती है, और वो थॉट शरीर में 60,000 से लेके 2 लाख तक थॉट्स पर डे एक इंसान को आता है। तो जब सोचिए, जब क्रोधित बच्चा या कोई भी क्रोधित जब होता है तो वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि शांति से सुलझाएं, पहले भी मैंने बोला कि कहानियों के माध्यम से उनको समझाएं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाएं, लेकिन समझाना ज़रूरी है, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर बाद।
1: लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी शांत रहना जरूरी है। कई बार होता है पेरेंट्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, वो भी उनको डांटने लगते हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
4: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
4: हाँ जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
4: जी, मेरे 4 सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश।
1: हाँ जी बताइए।
4: तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक मुकम्मल परिवार किसे कहेंगे, क्योंकि कई फैमिली में 2 ही लोग रहते हैं, कई में 4 रहते हैं, कई में 8 रहते हैं, कई 15-20 भी रहते हैं, कुटुम्बदर भी अच्छी खासी रहती है, तो आप एक कम्प्लीट परिवार की परिभाषा मतलब किसे कहेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि होता ही है कि बच्चे माँ बाप तो बिल्कुल बिंदास बेखौफ होके बात करते हैं, कोई भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिमांड करनी है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको उनके सीनियर से कुलीग्स मिलते हैं, तो वहाँ वो भीगी बिल्ली कायर बुजुर्ग बन जाते हैं, तो उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग किया जाए। तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं बच्चों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ पैर छूने चाहिए, उन्हें ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, उनके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए,

0: बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ सीनियर्स में होते हैं उनकी मजबूरी का शराब का फायदा उठाते हैं, इस पे हमें क्या करना चाहिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि संयुक्त परिवार जो है वो एकांकी परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील परिवर्तित, तो इसकी वजह क्या है। और पांचवीं आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी गुजारिश आप सबों से कि जैसे बड़े बुजुर्ग प्यार के भूखे हैं ना मान सम्मान के, ऐसे बच्चे भी हैं प्यार के भूखे मान सम्मान के, तो उन्हें मान सम्मान देना और उन्हें प्यार करना सीखे, क्या कहेंगे आप, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अच्छे परिवार की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे?
2: देखिए शायद आपने
1: जैसे हमारा हाँ इंटरनेशनल
2: हमने शुरुआत ही वहीं से करी थी कि परिवार क्या होता है बेसिकली, जहाँ स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व और संस्कार होते हैं। संस्कार में जैसे आपने बोला वो सब कुछ आ जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो जैसे बाहर बच्चे जाते हैं तो वो बिगी बिल बन जाते हैं, या वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक उसमें भावनात्मक उसमें आती हैं, ये हम यही वैल्यू हमें सीखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाना ये परिवार की जिम्मेदारी होती है। दूसरा आपने बोला कि रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए होता है जितना बड़ों को चाहिए होता है, तो वो बच्चों को हमें सिखाना है कि उन्हें कैसे करना है। और बच्चे को बहुत ज़्यादा हम करेक्ट नहीं करें, दिन भर हम बच्चे को करेक्ट करते रहते हैं ऐसा मत करो वैसा मत करो, बल्कि उसको जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उससे आप सवाल करिएगा, ताकि उसका अपर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, जो ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज क्या है कि दिन भर बच्चा वही सुनता है आप ये मत करो आप वो मत करो, तो उसका भी स्पाइन लेवल पर रिप्लाई आने लगता है फिर वो, तो उस तरीके से करना है। संयुक्त परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इंसान आजकल जो है वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वो आसपास की चीज़ें फिर दिखाई नहीं देती हैं, तो वही हो रहा है। ये सही समय कि हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहिए, हमको अपने आसपास देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए, इससे हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों से मिलना चाहिए। बल्कि दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोज में तो हालत यह है कि ऊपर वाला नीचे वाले को जानता ही नहीं है कि वो कौन रहता है, इससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सोशल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
1: के जी, जैसे इन्होंने एक ये भी पूछा था कि बच्चे घर में तो बिंदास डिमांड करते हैं लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे में उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए?
3: देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि बाहर दिखाना है कि हम बहुत ही सही है, और घर के अंदर वो अपने आप को नॉर्मली बिहेव करते हैं, और उनका नॉर्मल है कि वो जिद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ देयर नॉर्मल थिंग। बट बाहर तो दिखाना ही है कि हम इतने अच्छे हैं, तो ये सब कुछ शुरुआत होती है वो घर से ही, जैसे आपका घर का फैमिली का प्रोग्राम।
1: नहीं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हाँ, वो बाहर नहीं बोलते,
3: हाँ
1: घर में तो बोलते रहते हैं लेकिन बाहर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो वो बाहर भी जैसे आजकल होते छोटी फैमिलीज हैं, ठीक है बच्चे पोजेसिव हो गए रिजर्व हो गए, बाहर उतने सोशल नहीं है, तो उनको सोशल कैसे बनाया जाए वो ये पूछना चाह रहे हैं।
3: हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी क्लासेस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को डालना चाहिए। फिर काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर हमारे जैसे NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके थ्रू से हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्प चाहिए कि अगर देख रहे हैं कि बच्चे कंटिन्यूसली ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो घर पे नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोफेशनल उनको हेल्प लेना चाहिए।
1: लेकिन बच्चों को रिजर्व टू सोशल बनाने के लिए पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
3: पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ना, स्कूल के टीचर्स से मिल के, उनसे बात करके, उनसे डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग लेके, फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
1: एक श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। दोनों डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार ठाकुर साहब।
1: नमस्कार। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा प्रश्न ये था, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना था।
1: जी बताइए।
4: जैसे मानसिक रूप का उससे आज ये प्रोग्राम था, तो ये मानसिक होता है या ऐसा, जैसे बिटिया हमारी 24 साल की है तो उससे पहले भी स्कूल से कि ये ऐसे हवा लग गई करके हो जाती थी, जैसा मूर्छित हो जाती थी, ये बेहोश टाइप की
2: जी,
4: या कभी कुछ जैसे डेथ केस हुए थे तो उसमें भी वो बेहोश हो जाती थी, जैसे कभी पूजा पाठ करती है तो कभी कभी उसमें उसको हो जाती है, बेहोश टाइप की हो जाती है, कि तब मानते हैं ना ये घर का कोई ऐसा कुछ दोष हो या कुछ ऐसा, या कुछ हवा या कुछ ऐसा, तो ये मानसिक होता होगा या क्या होता होगा, इसका तो समझ में नहीं आया।
3: मैं बताती हूँ, ये दोष वोष कुछ नहीं होता है, ये जो अफेक्ट होता है, शॉक मिलता है किसी की डेथ के वजह से, वो

0: माइंड में चलता रहता है, जितना माइंड में चलेगा वो उतना ही दिखता, बड़ा बड़ा दिखता रहेगा। तो आपकी बेटी को थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इस वक्त, ताकि वो इस चीज़ से निकल आए। जैसे ही वो निकल आएंगे फिर वो घर के माहौल में फिर संभल जाएंगे, बट अभी के लिए आपकी बेटी को थोड़ा सा डॉक्टर का या किसी का, काउंसलर का, साइकोनोरोबिक्स होए या साइकोपैथ होए, उनसे हेल्प चाहिए।
1: इस पर डॉक्टर, इस पर क्या जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कई बार होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, कुछ बच्चे होते हैं वो इमिडिएटली हैंडल कर लेते हैं,
0: हाँ जी,
1: कुछ होते हैं उसको एक दिन सोचते रहेंगे, कुछ होगा हफ्ते भर सोचते रहेंगे, कुछ महीनों सोचते रहेंगे,
0: हाँ जी,
1: उसकी वजह से वो चीज़ सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती, ना ही उसका रिजल्ट मिल पाता।
0: नहीं,
1: तो ऐसे में तो उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए?
0: देखिए, कुछ तो अपने में ही होता है, कुछ तो तूफानी बच्चे होते हैं, कुछ स्लो डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को डिफरेंट, जैसे कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू टीचर्स उनको हेल्प करेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि टीचर से बात करके, उनसे काउंसलिंग करके उन बच्चों को नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे ठीक हो रहे हैं और नॉर्मल रिजल्ट्स आने लगे।
1: इस पे डॉक्टर तोमर आप क्या कहेंगे?
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हर किसी के पास ना तो साइकेट्रिस्ट है ना ही डॉक्टर्स हैं, बल्कि आप देखें छोटे शहरों में तो हमें बेसिक किसी भी चीज़ के लिए, समाज को चलाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें आज हम इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने वो जो हमारा पुराना कंसेप्ट था वो खो दिया। तो बच्चों को हमें एक सोशल लाइफ में करना, जैसे कहते हैं बच्चा, कुछ बच्चे बहुत वो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बच्चे को सिखानी है। जैसे बच्चा होता है अपने परिवार में, दादा दादी नाना नानी भाई बहन जितने भी हैं उन सबसे मिलवाइए, उनसे बात कराइए, बच्चा अपने आप ही होने लगेगा। दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत से बच्चे प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम सब कुछ बच्चे को सिखा देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते।
0: कि डिफरेंट स्पून फीडिंग करते हैं,
2: यस, स्पून फीडिंग नहीं करना है बच्चे को, अपने आप इसको नर्चरिंग केयर कहते हैं बेसिकली हम, कि बच्चे को इनिशियली 5 ईयर्स तक तो एक्सपीरियंस करने दीजिए, उससे बच्चे को सीखने दीजिए, आप कुछ मत सिखाइए। आपने देखा होगा बेंगलोर में एक इंसिडेंस हुआ था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा था, शादी के बाद सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, सोशल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों पर बच्चे को तैयार नहीं किया। तो बच्चे को संस्कार से केवल एजुकेशन नहीं देना है आपको, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार करना है कि हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस।
0: कभी कभी हैंडल मतलब जो होता है ना, उसी सिचुएशन को हम सिखा ही नहीं सकते हैं, वो अपने आप ही हैंडल करना होता है, और वो शुरुआत ही होता है नींव से। अगर नींव मजबूत होए तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकेगा।
1: लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी काम होगा तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं कर पाते
0: सब।
1: तो हाँ किया जी, वो कैसे करें? कि क्योंकि बच्चों को बचपन से देखा जाए तो स्कूल भी जाना है, उनको खेलना भी है, उनके पास अपने ही बहुत काम है, तो वो हर चीज़ को आराम से हैंडल कर ले। उसके लिए क्या करें, पेरेंट्स क्या करें और बच्चे क्या करें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मैडम, सवाल ये है कि अगर आजकल के जो मदर हैं वो उनका खुद का ही लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसे ही है, डिसिप्लिन नहीं है, ना हेल्थी हाइजीन का है, बच्चा भी अगर देर से उठता है और देर से सोता है तो मतलब बच्चा भी है, मतलब ब्रेस्ट फीड पे भी है, तो क्या है, बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो यंग मदर्स एंड फादर है, अब ये है कि वो बड़ों की एडवाइस पर तो उनका कोई वो लेती नहीं है, मतलब दे डिपेंड ऑन इंस्टा रील्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से एडवाइस ले लेते हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो ये मतलब बच्चे के लिए कितना मतलब डेवलपमेंट में मतलब बाधा कर सकता है
1: जी? पहले डॉक्टर तोमर आप बताइए कि फिजिकल डेवलपमेंट पे कैसे बाधा करेगा?
2: दो चीज़ हैं सर, आपने जो बताया है कि पहले तो ये कि माँ है आजकल रील देखती हैं या इंस्टा पे है, तो एक चीज़ है हमारे यहाँ समाज में कभी भी पहले ये बैन हुआ करता था कि कोई भी किसी भी टॉपिक पर एडवाइज नहीं दे सकता, लेकिन अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब से आई है तब से कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ पे ज्ञान देने के लिए रील बना लेता है, उसे कभी भी फॉलो निकलना है। खासकर हेल्थ के बारे में आपको बिना एक्सपर्ट के सलाह के नहीं लेनी है। जो माँ है वो भी किसी का बच्चा रहा होगा, तो जब हम समाज को इस तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे वैल्यूज देंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी कल को जाकर के माँ बनेगी, तो उसको डेफिनेटली वो पता रहेगा। और जहाँ तक स्क्रीन का टाइम है, बच्चों की हेल्थ पर असर तो पड़ता ही है। प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की भी नींद पूरी

0: हो रही है, और लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो के और 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका हेल्दी स्लीपिंग हो गया, ये नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्लीपिंग पैटर्न एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। जो लाइफ है हमारी वो सन के अराउंड मूव करती है, हमारी बॉडी के जो हारमोन्स के लेवल हैं वो उसी के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी है।
1: इस पर क्या जी आप क्या कहेंगी?
2: हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी डॉक्टर साहब जी जो बोला कि ये बच्चे आजकल टाइम से नहीं सोते हैं और बहुत रात तक लैपटॉप पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो वो ब्लू लाइट्स आती है आंखों में स्क्रीन से, वो आपके सर्कैडियन साइकिल को अफेक्ट करता है। सर्कैडियन साइकिल क्या है? सोना और जगने का साइकिल। अब जब बच्चा 4 बजे सो रहा है, सपोज रात के 4 बजे सो रहा, तो सुबह उठते हुए मुश्किल होगी, और जैसे ही मुश्किल होगी सुबह उठते हुए उसको नींद ड्राउजीनेस फील होगा थ्रू आउट द डे। बट उसको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, काम तो करना है, तो ओवर द पीरियड वो सुस्त बनता जाएगा, लेजी लथार्जी आता जाएगा। तो ये माँ बाप को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है कि बच्चे तुम टाइम से सोओगे, टाइम से खाओगे, पहले ज़माने के तरह, तो ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे तो ही बच्चे ठीक हो पाएंगे। तो माँ बाप पे फिर आ जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की आजकल बहुत ज़रूरी है। और इंस्टा पे तो आजकल सारे टाइप के रील्स ऐसे होते हैं कि एडिक्शन हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: जी, इसी पर एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे? हेमचंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य, उत्तराखंड।
0: देखिए सर, लाइफ को चलाने के लिए आपको कोई डाइट चार्ट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कल्चर में था, आपको सबको पता होता है कि हेल्दी फूड क्या होता है। स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, नेचुरल खिलाइएगा, प्रोसेस फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं वो अच्छे से खिलाइएगा, और मानसिक रूप से उनको जो है सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, अगर बच्चे घर पर तो दंगा करते हैं लेकिन बाहर जाकर और ज़्यादा दंगा करते हैं और डिमांड करते हैं मोबाइल दो, इसके लिए क्या किया जाए, प्लीज़ कृपया निर्देशित करें। किया जी क्या कहेंगे? ये लिखा है डॉक्टर शिवराज सिंह ने।
2: बच्चे की उम्र क्या है, ये बहुत ज़रूरी है।
1: ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम ले, ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से 10
0: डेफिनेटली बच्चा
1: कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है,
2: क्योंकि मोबाइल, छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
1: दंगा करते हैं और बाहर जाके और करते हैं,
2: हाँ, तो उनके जिद पे ना आए ना, यही तो है पेरेंटिंग।
0: बच्चे को जो है आपको शुरू से ही कंट्रोल करके चलना है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे को आपको पैम्पर नहीं करना है, आप बच्चे को संस्कार दे रहे। एक सिंपल सी, एक छोटी सी, आपको हमेशा याद रखनी बच्चों के मामले में कि बच्चा आपका कच्ची मिट्टी होता है,
2: ठीक,
0: और आप जो है कुंभकार हैं, आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कहाँ आपको अपने हाथ को टाइट करना है, कहाँ आपके हाथ को लूज करना है, कितना सुंदर शेप आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कच्ची मिट्टी हो गए हैं,
2: ठीक,
0: बच्चे उसको मोल्ड कर रहे हैं, जिद किया तो वो तो बच्चा आपका एडिक्टेड हो चुका है। बहुत से बड़े अडल्ट होते हैं वो ड्रग्स के लिए जिद करते हैं, कोई ड्रिंक के लिए जिद करता है, तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा।
1: जी, जैसे कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है, तो हम उस पर बात करें, पेरेंट्स जहाँ इतना बिजी रहते हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो हफ्ते में एक दिन क्या उनको बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्टिविटी करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
0: देखिए, अक्सर ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, और बहुत परेशान होते हैं अक्सर मम्मियाँ, तो उसके लिए सिंपल है कि जब भी आप बच्चों को खाना खाते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाना है, और अक्सर फैमिली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल डिजिटल फ्री एरिया होना चाहिए जिसमें आपको बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है। चलते चलते मैं एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र देकर जाता हूँ कि एक परिवार होता है, परिवार सुखी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, तो उसके लिए हमारे बहुत पहले से एक कंसेप्ट हुआ करता है परिवार के लिए क्या जरूरी है, कि यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, उसका मतलब ये है। तो घर में जो आपके लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चों की माँ हैं, दादी हैं, आप उनको प्रॉपर इज्जत देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, झगड़े कम होंगे, खुशियां रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे।
1: और क्या जी आप क्या मैसेज देंगी जाते जाते हमारे श्रोताओं को, जिससे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है और बच्चों के लिए, जिससे उनका मानसिक विकास सही ढंग से हो?
2: हाँ जी, बच्चों के लिए है कि बच्चे जो माँ बाप बोले वो करें, और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनल, उनकी सुने, उनके साथ रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ साथ सारे कार्य करें ताकि बच्चे भी खुश रहे

0: जादू की छप्पी बहुत ज़रूरी है
1: जी हाँ, इसे ही कहते हैं फैमिली बॉन्ड। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा होगा, आपस में प्यार होगा, तो सब आपस में खुश रहेंगे। श्रोताओं, अगर परिवार में संवाद, समानता और सहयोग हो तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यही संदेश देता है कि बच्चों का बेहतर कल एक बेहतर परिवार से शुरू होता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर MS तोमर और KR चटर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी

सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।

में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल संशोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में 20 नमूनों में से 13 में वायरस पाया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमागुमी को हराया। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत वितेदर्सन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंक तालिका में 5वें स्थान पर चेन्नई ये मैच जीतकर शीर्ष 4 में प्रवेश करना चाहेगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। इंटरनेट 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज न इसके साथ महान अवसर लाए। इसके बाद मानव जाति में बहुत सारे बदलाव हुए। इंटरनेट के बारे में बात करते हुए और अब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ पेश किया गया है। किसी के साथ संपर्क में रहना अब मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया प्रावधान जैसे स्टेटस अपडेट हमें पूरे शब्दों को एक महत्वपूर्ण विषय या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में व्यक्त करने की अनुमति देती है। कनेक्शन केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिक लोगों से संपर्क करना और जानने के लिए भी बहुत आसान है। इंटरनेट मानव जाति के लिए वरदान रहा है, लेकिन विज्ञान द्वारा हमें दिए गए हर दूसरे आविष्कार के रूप में इसमें कभी ड्रॉबैक्स का भी हिस्सा है। कुछ भी ज्यादा होना अच्छा नहीं है, हालांकि ये फायदेमंद हो सकता है। यही सोशल मीडिया साइट्स के साथ समस्या है। इसने दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दी, जिससे दूरी के बावजूद लोगों के बीच बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन हुआ। यह हमें अन्य संस्कृतियों के करीब लाया। हमने उनके बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन इसने एक नई समस्या को जन्म दिया जो सोशल मीडिया के लिए एक लत है। सोशल मीडिया के आदि होने वाले लोगों के पीछे मुख्य कारण जटिल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर निर्भर करता है। हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो महसूस करने वाले अच्छे रसायन निकलते हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। ये हमें स्वीकृति की भावना देती है, क्योंकि ऐसे लोग इसे विशेष क्षण पर्टिकुलर

मोमेंट की खुशी या इस पर निर्भर करते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। वो जो आत्मविश्वास नहीं रखता है या लगातार दूसरों के बारे में सोचता है कि और उसके बारे में क्या सोचता है, ऐसे लोग सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें किसी के सामने बात किए बिना बोलने या व्यक्त करने का मौका देता है। सोशल मीडिया लत आजकल एक लोकप्रिय और अनूठी घटना है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों का निदान किया जा सकता है जो मैं अब लम्हे प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सोशल मीडिया का अनुभव करते समय उत्साहित महसूस करना, उस भावना में इतनी गड़बड़ी यानी एंग्रोस्ड होने के कारण व्यक्ति उस समय चेतना कॉन्शियस को खो देता है। सोशल मीडिया लत के कुछ शारीरिक लक्षण है दोस्तों, धुंधली दृष्टि यानी ब्लर्ड विजन है, उचित नींद नहीं लेना और सिर दर्द का अनुभव। सोशल मीडिया से कनेक्ट होने या पहुंचने योग्य नहीं होने पर चिंतित महसूस करना। प्रतिदिन गतिविधि के बारे में अपडेट करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता, इसे कंपल्सिव नीड कहते हैं। ऐसे लोग जब भी लोगों के समूह के साथ होते हैं तो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। बलपूर्वक सोशल मीडिया से कटौती करते समय क्रोध करना। आजकल समस्याएं बहुत खराब हो रही है क्योंकि किशोरावस्था में यानी टीनेजर सोशल मीडिया के लिए अधिक से अधिक आदि हो रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सुलभ हो गया है। इस लत का निदान करना और उसका इलाज करना सबसे अच्छा तरीका साइकियाट्रिस्ट से परामर्श करना होगा और कुछ सेशंस व्यक्ति को व्यसन से निपटने में मदद करेगा। ये व्यक्ति के व्यवहार को काफी हद तक बदल देते हैं और अचानक पहुंच को रोकने से महत्वपूर्ण वापसी यानी क्रिटिकल विथड्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। सोशल मीडिया लत के लिए उपचार अल्कोहल के एडिक्शन समान ही बनाए गए हैं। इसमें भी विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत खतरनाक है। द पर्सन हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, इसीलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। लक्षण बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की लत एक व्यक्ति के व्यवहार को बाधित कर सकते हैं। तो यह बेहतर है अगर हम इसे रोक सकते हैं और केवल हमारे जीवन के मूल में वृद्धि कर सकते हैं। इसे रोकने के कुछ तरीके में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय होगा। कुछ हॉबीज डेवलप कीजिए जो आपके खाली समय में पढ़ना, गार्डनिंग करना, पहेलियों का सुलझाना आदि में व्यस्त रखें। आप उस समय अपने दोस्तों से बात करना और कुछ नया सीखने में भी व्यतीत कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने खाली समय में परियोजनाएं बनाना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कुछ कविताएं, गीत भी लिखते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ करें जो आपके बोरियत को दूर करे और आपको सोशल मीडिया तक अट्रैक्ट न करे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हाल ही में की गई अध्ययन से ये सुझाव दिया गया है कि उनमें से हृदय गति यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट या असामान्य रक्तचाप यानी इंक्रीज्ड और अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर का अनुभव हो सकता है। इस विशिष्ट लत में वापसी के लक्षण यानी विथड्रॉल सिम्टम्स आमतौर पर गैर जीवन खतरनाक यानी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और नशे की लत चिंता स्तर, एंग्जाइटी लेवल में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, हार्मोन लेवल में असंतुलन की ओर ले जाती है, जबकि अंतिम लक्षण एक कम प्रतिरक्षक प्रणाली यानी डिमिनिशिंग इम्यूनिटी सिस्टम है। कुछ सामान्य रूप से मनाए गए लक्षण हैं: आसानी से परेशान होना, अकेला रहना, उदास, बेचैनी महसूस होना, समूह गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा या भाग नहीं लेना। डियर फ्रेंड्स,
पता चला होगा कि कितना खतरनाक है ये सोशल मीडिया एडिक्शन। स्मोकिंग

अल्कोहल जितना ख़तरनाक हो सकती है, सोशल मीडिया भी उतना ही खतरनाक है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया तो आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, आज हमारे बच्चों के हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। With this very useful and thought-provoking information about social media addiction, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

मैं क्या जी सोनियो मकड़ो की हाल चाल है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर यू आर विद मी शालिनी, क्योंकि शो शुरू हो चुका है एल्फाजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, शो का नाम ही है आज का, स्पेशल शो है हमारा फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के आते आते ना आपको जो है वीकेंड वाला बुखार चढ़ने लगता है। मैं क्या जी कितने जा रहे हो, तो सी बता दो बता दो। लेकिन खबरदार, जो मेरा शो सुने भी ना गए, समझ में आ गई, या तो सुनते सुनते जाइए या सुनकर जाइए, ऐसा नहीं चलेगा। इस गाने के बाद बात करेंगे बैलेंसिंग एकेडमिक्स विद सोशल लाइफ, ठीक है जी।

ऐसे थोड़ी होता है, चांद की चूड़ी कैसे बनाओगे? ऐसे झूठे बातें नहीं करनी किसी से, ठीक है? मैं सच बता रही हूँ आपको। आकाशमणि रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं क्या? I'm for Jen, thank God it's Friday, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर बैलेंसिंग एकेडमिक्स विद सोशल लाइफ की, और वो आप कैसे कर सकते हैं यही बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप 102.6 के अलावा ना हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं, और अगर OTT का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आइए हमारे वेव्स प्लेटफॉर्म पर। इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं मुद्दे की असली बात पर। अगर आपको अपने एकेडमिक्स और सोशल लाइफ को बैलेंस करना है ना, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेने जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको ना डिजिटल कैलेंडर बना लेना चाहिए, क्योंकि आप डिजिटली तो बहुत साउंड है ही, है ना? तो आपको डिजिटल कैलेंडर बनाइए, या फिर आप डायरी भी रख सकते हैं जिसमें आप क्लास, स्टडी, असाइनमेंट और दोस्तों के साथ मस्ती के टाइम को ना पहले स्केड्यूल कर लें। लेकिन इसमें जो मस्ती का जो परसेंटेज है ना, वो थोड़ा कम रखिएगा, नहीं तो मार्क्स भी ना उसी तरह से आएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है। गाना तो मैं चला ही रही हूँ।

सिर्फ मस्ती की पाठशाला से ही काम नहीं चलेगा, आपको परसेंटेज अगर लाने हैं, मार्क्स लाने अच्छे ना, तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मेघा जी नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ चालिनी, और शो चल रहा है क्या अल्फा जैन? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो ये कहते हैं ना कि आपसे पढ़ाई नहीं होती, तो मैं उसका हल लेके आई हूँ आपके पास। बैलेंस करने के लिए एकेडमिक्स को विद सोशल लाइफ कैसे कर सकते हैं आप, वो बता रही हूँ मैं आपको। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना आपने? अगर नहीं सुना तो आप सुन लिया होगा। 25 से 30 मिनट इसमें पढ़ाई करनी होती है, और फिर 5 मिनट का ना छोटा सा ब्रेक लेना।

छोटा सा, मतलब समझे ना, बहुत ही छोटू सा ब्रेक लेना होता है, जिसमें आप स्नैक्स एंड वेफर्स खा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक या फिर थोड़ी सी चिट चैट कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। लेकिन हाँ, इतने सारे स्नैक्स और वेफर्स मत खा लीजिएगा आप कि फिर आप ये कहेंगे साइड में गया पमडर मैं तो सो रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल जो आपने यहाँ पर पोमोडोरो टेक्निक अपनाकर ब्रेक लिया ना 5 मिनट का, उसके लिए गाना एंजॉय करिए। आते हैं फिर से, स्टे ट्यून्ड।

बस करिए, इतना ज्यादा कहेंगे बार बार ना तो हंसने की जगह रोने लगेगी और फिर गुस्से में आके ना आप समझ सकते हैं ना, ये नहीं करने का। आकाशवाणी 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ चालनी और शो चल रहा है क्या अल्फजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज हम बात कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स को आप कैसे बैलेंस करें सोशल लाइफ के साथ, इसकी बात हो रही है और यही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फिलहाल इतनी सारी बातें जो हमने आपसे की है ना, उनको बहुत ध्यान से आपको नोट भी करना है। ये सिर्फ नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, दो कान आपको इसलिए नहीं दिए गए, इस तरह के काम नहीं करने आपको, ठीक है। आप ना अपनी जो सोशल सर्कल है उसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं, उसको भी, मेरा मतलब सोशल सर्कल से नहीं, आपकी सोशल लाइफ से, यानी कि सोशल मीडिया से नहीं है। सोशल मीडिया भी ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आप रील स्क्रॉल करना चालू करते हैं और फिर बंद ही नहीं होते ना 3-4 घंटे तक, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। मैं आपकी सोशल लाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, उनकी बात कर रही हूँ। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके साथ दिन में हुआ उनसे बता सकते हैं, खुशी के मोमेंट शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टाइम का भी, कि एक बार चालू हुए तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेना। जैसे कि आप पहुंची अपनी फ्रेंड के पास और कहती है, सुनना ये वाली तूने कुर्ती कितने की ली, पता है मैं तो इतने की लाई थी, अरे यार इसके साथ ना वो वाले इयररिंग्स ना बहुत अच्छे लगेंगे। और ऐसे करते करते आपको आप 3 बजे

दोपहर में गई थी और रात के 3 बज गए। बताइए ऐसे कैसे पढ़ाई करेंगे आप? ऐसा नहीं चलेगा, आपको ना मैनेज करना पड़ेगा। और वही बता रहे हैं हम आज यहाँ पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शो चल रहा है अल्फा चंद, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और मैं शालिनी आपको बता रही हूँ आज कि आप कैसे अपनी एकेडमिक्स को बैलेंस करें सोशल लाइफ के साथ में। ठीक है जी, अब इंजॉय करते हैं ट्रैक, उसके बाद फिर से मिलते हैं। जाइएगा नहीं बिल्कुल भी।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ਗੱਲਾਂ ਗੋਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਐਲਫਾਜਨ थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एकेडमिक्स को बैलेंस करने के लिए विद सोशल लाइफ क्या करना चाहिए, आपको यही बात कर रहे हैं आज यहाँ पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और इसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि आप ना ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, जो कि आप करने जाते भी होंगे बहुत से लोग, और बहुत से लोग नहीं भी जाते होंगे, बचते होंगे, लेकिन ऐसा है कि ग्रुप में स्टडी करने से ना आपको नए नए पॉइंट्स पता चलते हैं, आपको दूसरों के तरीके पता चलते हैं कि वो किस तरह से उसे इजीली कर पा रहे हैं, तो वो आपको करना है। हाँ, लेकिन ग्रुप में स्टडी करने जाना है, ये करने नहीं जाना कि वहाँ पर आप ग्रुप में जाएं, हम ग्रुप सेल्फी लें, पाउट बना बना के हैं और वहाँ पर रील्स बनाना चालू कर दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे मुझे याद आया कि पाउट वाली सेल्फी और ये जो विक्ट्री वाला साइन बना के जो फोटो खिंचाते थे ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है कि नहीं? हाँ, तो नया ट्रेंड में क्या आया है? कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती आप हैं। अगर कुछ भी ऐसा है जो नया ट्रेंड में आया, तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। क्या चल रहा है नया कैंपस लाइफ में, बताइए हमें। और इसके अलावा आप ना क्लब्स और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। आ हाँ हाँ हाँ, जो आपकी खुशी से जो आपके दांत चमकने लगे हैं ना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ क्लब की, मैं कॉलेज क्लब और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ। जैसे कि आप म्यूजिक सीख सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, या फिर बहुत समय से आप कुछ और चीज़ सीखना चाह रहे हो, आप पेंटिंग सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं, कुछ भी। क्या कह रहे हैं, आपको गाना नहीं आता तो गाएंगे कैसे? अगर आवाज़ के मामले में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो थोड़ा सा आपको दूसरों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, ये बात तो सही है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप करिए प्रैक्टिस, हो सकता है कि आपकी आवाज़ में भी गुड़ की मिठास घुल जाए, जैसी मिठास उस गाने में अगले वाले, सुन लीजिए जरा इसे।

मैं कह जी बस करो, हद ही होगी है अब तो, है आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया था, आप तो हार ही नहीं मान रहे, फर्श तोड़ के ही मानेंगे आप आज है, ऐसा मत करिए ना, प्लीज। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूँ मैं शालिनी, और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी एकेडमिक्स को जो है वो सोशल लाइफ के साथ बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप ना क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप जो है वो अपनी एक जगह जो है वो निश्चित कर लें, कोई स्टडी एरिया जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो, पार्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जहाँ पे लोग बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, ढल गया दिन हो गई शाम है ये वाला नहीं। अब दूसरी बात ये है कि आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर थोड़ी शांति हो और पढ़ाई का माहौल हो, जहाँ पर और भी लोग पढ़ रहे हों, जैसे कि लाइब्रेरी। वो तो आप जानते ही होंगे कि भूल गए, इतना मत कर जाए करिए गानों में, लाइब्रेरी नाम की जगह है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आप उसे, ताकि आपका ध्यान ना भटके। और हाँ, ये जो आप हर पार्टी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है ना, देखना मैं कैसी लग रही हूँ, ये नहीं करना आपको। आपको हर समय तैयार नहीं रहना है, आपको आपके फ्रेंड चाहे कितने भी क्लोज हो, अगर आपको बार बार मना करने पे भी आपको जाने के लिए कह रहे हैं ना, तो उनसे बच के रहिए। ये नहीं करना मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है वो, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वो भी नहीं आएगी ना, फिर मुझे शॉपिंग जाना होता है, मैं किसके साथ जाऊँगी फिर। तो आप खुद जाइए ना अकेले। अगर ऐसे दोस्त हैं जो आपको पढ़ाई से दूर भगा रहे हैं तो वो भी तो गलत है ना, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके शॉपिंग में भी साथ जाएं और आपका पढ़ाई में भी साथ दें, सही समय पर सही चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, अभी ज्ञान की बातों के बाद ना एक अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ, और उसके बाद और भी बातें यहाँ पर करने के लिए एंजॉय कीजिए 102.6 विद मी शालिनी, आकाशवाणी रेनबो, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक डियर्स, यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी। क्योंकि शो चल रहा है कौन सा, ये तो आप जानते ही होंगे, है कि नहीं? अल्फा जन चल रहा है शो, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, नाम है शो का, आज स्पेशल शो है हमारा फ्राइडे का, तो एंजॉय कर रहे हैं आप, है कि नहीं? बताइए, आपकी भावनाएं पहुंच जाती हैं हम तक। मैं बात कर रही हूँ आपसे आज की बैलेंसिंग एकेडमिक्स विद सोशल लाइफ की, कि कैसे आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने एकेडमिक्स को भी और सोशल लाइफ को भी। तो उसमें आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो अब इन सब पढ़ाई के बाद ना, इन सारे असाइनमेंट्स को बनाने के बाद में आपको जो बहुत जरूरी चीज है, वो आपकी नींद भी है। आपको नींद भी लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आप ये सुनकर बहुत खुश हो चुकी है ना, और अपनी मम्मी के सामने आगे मटका मटका के करी अब तो रेडियो पे भी लोग बोलने लगे कि 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैंने 12 घंटे तो बोला ही नहीं, कब बोला है मैंने? मैंने कहा कि पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। तो आप उनसे ये मत कहिए कि अब मुझे 9 बजे से पहले मत उठाना। आप 6 घंटे भी सोकर आराम से एकदम फ्रेश रह सकते हैं, एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। ये सबके लिए अलग अलग है। कोई 6 घंटे सोकर भी एकदम फिट रह सकता है, एनर्जेटिक रह सकता है, कोई 8 घंटे सोता है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। और अगर आप इससे भी कम नींद लेकर एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं ना, तो मेडिटेशन आपके बहुत काम आ सकता है। मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट किडिंग, इट्स ट्रू। आजमाइए थोड़ा सा। और आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे क्या है ना, आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, और आपका जो टेंशन है, थोड़ा सा तनाव है, वो कम होगा। और बहुत जो आप ना किताबों के बारे में सोचते रहते हैं ना, मार्क्स के बारे में सोचते रहते हैं, उससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी आपको। तो आपको अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना है, और पढ़ाई भी करनी है, दोनों काम करने हैं आपको। और क्या करना है?

Hey, Zoobie Doobie, Adobe, Adobe. ये सुनकर मजा तो बहुत आता है, लेकिन इसका क्या मतलब है ना, ये मुझे नहीं पता है। आपको बताओ तो बता दीजिएगा। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं शो अल्फा जेन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और आपके साथ हूँ मैं। कौन? शालिनी, पहचान लिया? कितने अच्छे हैं आप, बता देने के बाद ही पहचानते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर कि आप अपने एकेडमिक्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं सोशल लाइफ के साथ। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें की और आपने देर से ट्यून इन किया ना, तो मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, बता रही हूँ। आगे की बात बता देती हूँ। आप अपने जो नोट्स और असाइनमेंट्स हैं ना, उसको स्टडी मटेरियल को अपने ना वो बहुत मैनेज करके रखें, उसको व्यवस्थित करके रखें, और ताकि जो आखिरी समय पर जो अफरा तफरी होती है ना, भागम भाग मचती है, कहाँ गया, मुझे नहीं मिल नहीं रहा, आपने बनाया नहीं था, आपको तो याद ही नहीं है, ये मत करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो जिस दोस्त पर, जिस फ्रेंड पर आप भरोसा करके बैठे ना, कि वो आपको लास्ट मिनट में सारे नोट्स दे देने वाला या दे देने वाली है, तो हो सकता है वो आपको मना कर दे और फिर आप भीगी बिल्ली बन के घूमेंगे सब तरफ, क्या हाल होगा आपका, सोचिए, मुझे देखा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप उससे बचिए और अपनी सारी चीजें मैनेज करके रखिए। दूसरी चीज, कॉलेज लाइफ जो है ना, वो सिर्फ रटने का नाम नहीं है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी जुबी डुबी एक्टिविटीज़, हाँ इसी तरह से फन एक्टिविटीज़ करनी है आपको, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आपको बनाने हैं वहाँ पर, खूबसूरत यादें वहाँ की आपको, आपके लाइफ लॉन्ग जो है आपके साथ रहेंगी वो। तो आप पढ़ाई को लेकर परेशान मत होइए, उसको भी इन्जॉय कीजिए और कॉलेज लाइफ को भी इन्जॉय करिए, इसका बैलेंस बनाना है आपको, तो आप दोनों चीज़ों को इन्जॉय कर पाएंगे। फिलहाल एंजॉय करिए ये अगला वाला ट्रैक, क्योंकि अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ, जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि टाइम हो चुका ना, जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं शो क्या अल्फा जेन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। चलिए मैं अब चलती हूँ, ठीक है जी, ख्याल रखिए, गाना सुनी जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।

में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सिटी लाइट्स। सिटी यानी शहर सिर्फ इमारतों से नहीं, आपकी हमारी जिंदगी, रिश्ते और बातों से बनता है। सिटी लाइट्स में आपके साथ मैं शैली भाषांजलि। सिटी से ही जुड़ी बातें होंगी, कुछ बहुत खास, कुछ बहुत आम, लेकिन जरूरी।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में सबसे पहले मैं 12th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हो गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार अंक प्राप्त किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, एक्चुअली हार्टी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके परिणाम उनकी अपेक्षाओं से अनुरूप नहीं रहे, तो उनसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मार्क्स में जस्ट शेप अ मोमेंट बट करेज शेप्स ऑल योर वे। कीप बिलीविंग ना, योर बेस्ट इज येट टू कम। कभी कभी रास्ते हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बनते, लेकिन वही रास्ते बहुत मजबूत बनाना सिखाते हैं। आई एम एड्रेसिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, हार्टी कंग्रेचुलेशंस, एम्बार्क ऑन योर नेक्स्ट।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। पंद्रह अगस्त 1947 की सुबह 6:30 बजे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने ऑल इंडिया रेडियो से वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया। ये गायन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष अनुरोध पर बंगिया काफी राग में पिरोकर प्रस्तुत किया था। राष्ट्रगीत के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए पंडित जी ने रेडियो स्टूडियो में खड़े होकर ये प्रस्तुति दी थी। ये गायन केवल संगीत नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। 5:18 और 40 सेकंड हमारे स्टूडियो की घड़ी में। सांझ के शो में शहर से जुड़ी बातें होती हैं और कुछ खास बातें भी होती हैं। हर ओर ये चर्चा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों के बाद एक ऐसे बदलाव की चर्चा है कि जो हमारे सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, दोनों को प्रभावित करता है। एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, इसकी जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। जहां आवश्यकता होगी वहां कटौती की बात हो रही है। पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, जो कि बिल्कुल आवश्यक है आज के परिवेश में, और सड़कों पर ट्रैफिक घटे, सबसे बड़ी बात, इससे भी बेहतर बात है कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा होती है उसे भी बचाया जा सके। मिला जुलाकर एक बहुत बड़ी मैक्रो लेवल पे जो बात है, जो हर शहरवासी को, हर देशवासी को समझना पड़ेगा। ये भी जानते हैं कि हर काम ऑनलाइन संभव नहीं है। डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जिनकी मौजूदगी जरूर बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ विकल्प मौजूद हैं वहाँ टेक्नोलॉजी को समझदारी से अपनाने की शायद वक्त की मांग है। ये कहते हैं फ्लो विथ टाइम एंड बी इन सिंक विथ व्हाटएवर चेंजेस।

वेल, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जा रहा है। परिवार, ये शब्द अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, एक शक्ति, एक सुरक्षा, एक अपनापन वाला शब्द है ना। तो आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इनफैक्ट ऑल द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिलीज विश यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ लव। रिश्ते जब सम्मान से संवारे जाते हैं ना, तो कहते हैं कि घर की दीवारी और आंगन सब संस्कारों से भर जाते हैं। समय बदल जाता है, संसार बदल जाता है, लेकिन जो परिवार है ना, उसका स्नेह बिल्कुल शाश्वत रह जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज विशिंग यू स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ FM रेनबो।

दिन एक और मायने में ना बहुत खास है। आज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे भी मनाया जाता है। हर वर्ष के मई के तीसरे शुक्रवार यानी आज 15 मई को 2026 ये दिवस मनाया जा रहा है, जो संकटग्रस्त जो वन्य जीव होते हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, उनके संरक्षण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए एक महत्वपूर्ण कदम था कि इन प्रजातियों की सुरक्षा बने। और आप जानते हैं कि धरती में एक भी प्रजाति अगर समाप्त होती है ना, तो प्रकृति का जो संतुलन है वो प्रभावित हो जाता है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हमें ये दिमाग में रख लेना चाहिए। मधुमक्खियां नहीं रहेंगी ना तो परागण रुक जाएगा, दैट इज पॉलिनेशन विल नॉट हैपन। गिद्ध नहीं रहेंगे तो पर्यावरण में बीमारियां बढ़ेंगी। मतलब हर एक जीव है ना अनिवार्य कड़ी है। इसीलिए ये दिवस है कि जागरूक रहें, संकल्प बनाएं कि रक्षा करें, संतुलन बनाएं प्रकृति का। ये जो कड़ी है ना, इसकी निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मेरा नाम है शैली भाषांजलि और ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ बातें आपको करेंगे। इट्स अ पीक आवर, ड्राइव एब्सोल्युटली केयरफुली।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बजकर 36 मिनट हो चुके हैं। वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, उसके लिए ना एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको निर्देश दिया है कि जो यात्री वाहन है उसमें जो स्पीड गवर्नर है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD है और इमरजेंसी पैनिक बटन है, अनिवार्य रूप से लगाया जाए। दैट इज इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी करने के लिए बोला गया है, स्पेशली कंसिडरिंग विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने ये बात कही है। लेकिन ये सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, सवाल सड़क पर अनुशासन का भी है। अब लेन ड्राइविंग की ही बात ले लीजिए, निर्धारित लेन में चलाना सड़क दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आंकड़े कहते हैं, शब्दों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंकड़े जब आंखों के सामने आ जाएंगे तो आपको ये बात स्वतः समझ में आ जाएगी। लेकिन लेन के जो नियम होते हैं उसका पालन नहीं करते, इसलिए जुर्माना नहीं जागरूकता की भी जरूरत है। ऐसा कहा गया है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग में लेन अनुशासन को अनिवार्य बनाया जाए। दूसरी बात, स्कूल स्तर पर सुरक्षा सड़क की जो होती है वो शिक्षा दी जाए, लाइक अ कोर्स करिकुलम, और सड़कों पर स्पष्ट लेन मार्किंग और डिजिटल निगरानी बढ़ाई जाए। ये सारी बातें ताकि सड़क की सुरक्षा बनी रहे। कमिटेड टू द कोर कंसर्न्स ऑफ द सिटी, ये शो है सिटी लाइट्स।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में कुछ सिटी की और बातें करते हैं, सिटी की कुछ जगहों की बात करते हैं। एक्चुअली जो लोग, ठीक है गर्मी है, अपने चरम पे भी गर्मी है, लेकिन जो लोग थोड़े से कीन होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उत्सुक होते हैं, उनको उनका उत्साह ना जीवंत होता है। तो गर्मी भले ही हो, लेकिन जो अनाउंसमेंट दिल्ली टूरिज्म की तरफ से हुआ है वो उनके लिए खास अट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस समर सीजन में एक खास अनुभव कीजिए अपने शहर का, दिल्ली को देखो, महसूस करो और जी लो, ये टैगलाइन की तरह पेश किया गया है। तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली को और गहराई से, दिल से, करीब से देखना चाहते हैं, उनके लिए ये सिलसिला, ये मौका बना है कि जो ऐतिहासिक स्थल हैं, वो शाम की जो फिज़ाएँ होती हैं ठंडी ठंडी, सोच में अगर डालिएगा तो महसूस भी कर लीजिएगा। तो सांस्कृतिक रंग जो हैं वो आकर्षित कर रहे हैं आपको। अब दिल्ली पर्यटन की आइकॉनिक डबल डेकर बस सफारी से शाम के समय शहर की हेरिटेज साइट्स की सैर का आनंद लिया जा सकता है। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ ऑल जो एक विशेष अनुभव के तौर पर आपकी तरफ पेश किया जा रहा है, उसका आप आनंद ले सकते हैं, कला संस्कृति उसका स्वाद ले सकते हैं। क्योंकि भारत की विविधता जब एक जगह सिमट जाती है, जैसे दिल्ली हाट, जैसे कई और स्थान, वो इसी शहर में है। तो सिर्फ गर्मी को मत देखिए, महसूस कीजिए और उसके आसपास जो अच्छी बातें हैं उसको महसूस कीजिए। ढल रही है धूप, धीरे धीरे सांझ गहरी हो रही है। कहते भी हैं कि इस सांझ को जोड़ा जाता है, इस ढलती धूप को जोड़ा जाता है जीवन के उत्तरार्ध से, जहाँ अनुभव की रोशनी तो होती है लेकिन इच्छाओं की जो मांग होती है ना, इच्छाओं की जो आवाज़ होती है ना, वो धीमी पड़ जाती है। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आपसे कुछ और बातें करने वापस आती हूँ।

अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ढूंढ रही थी कौन सी खबर। ये खबर शायद बहुत लोगों को बहुत विशेष लगेगी, अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। जो जो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक विशेष पहल की गई है, डीडीए ने जो अपने उनके पार्क्स हैं, सुबह सुबह 10 बजे तक फ्री एंट्री मिलेगी। इनफैक्ट दिस इज़ क्वाइट एनकरेजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। वही एक मोटिवेशन बन जाए कि जाके जागरूक रहें, दौड़ करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, ताज़ी हवा, हरियाली, शांत वातावरण, आनंद लीजिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आज के शो में आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि। और अपने हौसलों को इतना ऊंचा रखो है दोस्त कि मुश्किलें भी कह उठे ये शख्स अलग है।

0: लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय

द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान

कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौत वितिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 6:05। यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूं गीता। क्या हाल है मेरे रेडियो लवर्स? आई थिंक मस्त होंगे, क्योंकि मौसम तो गर्मी है लेकिन स्टूडियो में मौसम बहुत अच्छा हम बना देते हैं, इसलिए आप मस्त होने चाहिए। वेल दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, जहां बातें होती हैं दिल से लेकिन पूरे मसाले के साथ। वेल, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी आपको। मैं लेकर आई हूं एक ऐसा टॉपिक जो सीधा आपके दिल, दिमाग और नोटिफिकेशन बार तीनों पर हिट करेगा। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है लेकिन आंसर थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, भाई क्या है ऐसा सवाल जिसका आंसर डेंजरस हो सकता है? तो जनाब, आपको ये बताना है कि हम सच में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हैं आजकल, है ना? ये तो सभी जानते हैं। वो कौन सी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सी चीज़ है जिसका इंतज़ार हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं? या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि क्या हमारी जो जनरेशन है उसको अब वेट करना आता ही नहीं है? बहुत सिंपल सा सवाल है। और सच सच बताना, अगर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के 2 मिनट बाद भी रिप्लाई ना आए तो हम क्या करते हैं? क्लूज दे रही हूँ मैं आपको, क्या करते हैं? पहले लास्ट सीन चेक करेंगे, फिर डीपी चेक करेंगे, फिर सोशल मीडिया पर स्टोरी चेक करेंगे और फिर अपने दिमाग में जनाब CID की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अभी ऑनलाइन तो था, रिप्लाई क्यों नहीं किया? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? किसी और से बात तो नहीं कर रहा? और ये सिर्फ दोस्तों मैसेजेस तक शामिल नहीं है। आज के वक्त, आज के टाइम में जो हमारी जनरेशन है उसको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, एकदम से फास्ट चाहिए। तो जनाब फटाफट से 6:07 हो चुके हैं, आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसका इंतज़ार हम और आप बिल्कुल नहीं कर सकते, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज की जो जनरेशन है उसको इंतज़ार करना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप अपने सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, मैं बता देती हूँ, 9868107070। यह है 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम ट्रिपल एम यानी मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूँ गीता।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

रिया उत्तराखंड से जुड़ी हैं मेरे साथ, लिखती हैं कि इन चीज़ों का इंतज़ार बिल्कुल नहीं होता। और नीचे कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, इन्होंने लिखा है कि किसी ने हमें पैसे भेजने हो तो उसका वेट भी बिल्कुल नहीं होता है। जब मैरिड डॉटर को अपनी मम्मी के घर जाना हो तब सब्र नहीं होता, और जब प्रेशर बना हो तो बाथरूम में कोई ऑलरेडी है उस वक्त दुनिया बिल्कुल बेकार लगती है। जी बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, थैंक यू सो मच रिया जी मैसेज करने के लिए।

क्या बात है, क्या बात है। उदित नारायण साहब ने तो स्टूडियो में समा बांध दिया बिल्कुल। हाँ, नूरवी खान लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं मेरे साथ, लिखते हैं, डियर मैम गुड इवनिंग, हाउ आर यू, आई एम फिट एंड फाइन। आगे लिखते हैं, मैम स्पेशली मुझे फ़ोन ना मिले तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। और ये बात सही कही आपने कि अभी तो ऑनलाइन था, कहा गया ये सही बात है, जब भी हम ऐसे व्हाट्सएप देखते हैं ना तो हमें ऑनलाइन बंदा दिखता है, थोड़ी देर बाद अरे कहाँ गायब हो गया

हाँ जी, वेलकम बैक, स्वागत है आपका। टाइम हो गया है 6:17, प्रोग्राम ट्रिपल एम। मैं हूँ गीता, प्यार से आप गीतू भी कहते हैं। कुरेश, रिजवान, आफिया, तौफीक, रेहान जहांगीरपुरी दिल्ली से जुड़े हैं। नीचे लिखते हैं कि पैसा खर्च करना, वक्त बर्बाद करना, इन सभी का आपको इंतज़ार नहीं होता। जी हाँ, थैंक यू सो मच। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा, सब लोग जुड़े हैं मेरे साथ। सब लोग हमेशा ये प्रोग्राम सुनते हैं। ये लिखते हैं कि मेरे बच्चे हर फैसले का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, मैं ही उनको रोकता हूँ। आजकल के बच्चे बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं। बिल्कुल सही लिखा, आजकल हमें सब कुछ एकदम से फास्ट चाहिए। फूड ऑर्डर किया तो हर 30 सेकेंड बाद ऐप खोल कर देखेंगे, भाई राइडर कहाँ पहुँचा। अरे हैव पेशेंस। कैब बुक की है आपने तो ड्राइवर 1 मिनट लेट, क्या दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की ट्रेन छूट जाएगी, है ना। वीडियो अगर बफर हो रहा है तो इंसान वाईफाई राउटर को ऐसे घूरता है जैसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वही हो। ये प्रॉब्लम है हमारी आज की जनरेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच फारूक साहब, आप सभी का जो भी आप सभी में इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच।

पंकज अमरावती से जुड़े हैं, लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे गीता मैडम जी, सादर प्रणाम, आपको भी मेरा प्यारा सा नमस्कार। कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, हम लोग सुन रहे हैं 15 मई 2026 विश्व परिवार दिवस की सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आप सभी को। आगे लिखते हैं, आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी अपने कॉल, कोई अपना कॉल करते हैं और वो कॉल में फ़ोन अटेंड नहीं करता, हम उसे दोबारा फ़ोन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि उसके जीवन में हमारा कोई मतलब नहीं, हम सोचते हैं सामने वाले इंसान ने एक रिंग में फ़ोन उठाया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बुरा समझते हैं, और दिन भर हमारा धैर्य कम होता जा रहा है। हमें कोई भी क्या लिखा है, शब्द समझ नहीं आ रहा, हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंतज़ार करना पसंद नहीं है। पंकज जी, पूरी तरह से मैं आपकी बात से थोड़ा पार्शली सहमत हूँ, लेकिन कई बार हम जब किसी को कॉल करते हैं ना, तो अगर उसने एक बार में कॉल नहीं उठाया तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है या वो हमें वक्त देना नहीं चाहता। हो सकता है वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ होगा, है ना, और अगर हाँ उसकी कॉल बैक नहीं आती है तो तब तो हमें ज़रूर ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरा दिन में तो इंसान फ़ोन कॉल्स या मिस कॉल देखता है ना, तो कॉल बैक ज़रूर करनी चाहिए, एटलीस्ट उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग में कर लो, सॉरी बोल लो कि हाँ सॉरी फ़ोन नहीं देखा, या अब कुछ भी बहाने बनाते हैं लोग। थैंक यू सो मच पंकज जी। और एक और मैसेज मेरे पास आया है, अनिल शर्मा सरिता विहार से जुड़े हैं, लिखते हैं, आजकल इंतज़ार देर नहीं जल्दी से चाहते हैं, शायद ट्रेन का इंतज़ार सब्र नहीं कर सकते, शाम पार्टी पर उसका इंतज़ार महंगा, उसका संदेश सफल, एक्सीडेंट में घायल मिला। आपका जो मैसेज है ना, थोड़ा सा दोबारा से ड्राफ्ट करके और दोबारा से लिखिए अनिल जी। सुनील कुमार लिखते हैं, प्यार के इजहार का इंतज़ार, आए हाय क्या बात है, थोड़ा डिटेल में लिखिए, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, ओए होए माय गॉड, बहुत सारे लोग जुड़े। पहले तो एक बात बताइए, सारे लोग मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं या सिर्फ अब नाम लिख देते हैं कि चलो चलो भाई सबका नाम लिख देते हैं, हाँ सब लोग सुन रहे हैं। आपको देख नहीं सकती लेकिन आपकी जो सहमति है ना, आपने गर्दन हिलाई ना, मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। आपने लिखा है कि आपको नमस्कार, आपको कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तभी तो आपसे बतियाने आ जाती हूँ, और मैं भी एकदम अच्छा हूँ, थैंक यू जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे तमाम दोस्तों पर ऐसे ही बना रहे, और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आ रहे हैं, और प्रोग्राम से अच्छी आपकी आवाज़ लगती है, चने के झाड़ पर बहुत चढ़ाते हैं मेरे दोस्त। चलिए थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है ना दोस्तों, वो मुकेश जी आपको ही बता देती हूँ कि मैंने जो सवाल पूछा है बड़ा छोटा सा, और हमारा ये जो सवाल है ना हमारी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में ये चलता ही रहता है, वो कौन सी चीज़ है जिसका इंतज़ार हम और आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ख़ासतौर से आज की जो जनरेशन है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज की जनरेशन को वेट करना बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, धीरे से बोलती हूँ 9868107070, ये है 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम का नाम ट्रिपल एम, मैं आपकी आरजे गीता।

मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से जुड़ गए हैं और लिखते हैं कि शायराना अंदाज में मैं जवाब दे रहा हूँ, प्लीज आप पढ़ लेना। हर चीज यहाँ फास्ट हुई, हर रिश्ता भी शॉर्ट हुआ, थोड़े से इंतजार में ही अब दिल बड़ा अपसेट हुआ। ऑनलाइन तो सारी दुनिया है, हर चेहरा भी स्मार्ट हुआ, बस सब्र और सच्चे रिश्तों का नेटवर्क थोड़ा वीक हुआ। वाओ, फैंटास्टिक मैसेज। और जो आपने मीटर जो शायराना अंदाज में लिखा है ना, वाकई में काबिल तारीफ़ है। वैसे भी बहुत अच्छा लिखते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद सरफराज जी।

प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से जुड़ गए हैं और लिखते हैं कि बुजदिल की तरह खुद को रुलाया भी नहीं। आह क्या बात है, बुजदिल की तरह खुद को रुलाया भी नहीं, दर्द अपना जमाने को बताया भी नहीं, और मैं तमाम उम्र इजहार किया उस मुसाफिर के लिए, मैं तमाम उम्र इजहार किया उस मुसाफिर के लिए, वो भी कभी लौट के आया भी नहीं, आया भी नहीं। वाह फैंटास्टिक लाइंस। और मेरे साथ जुड़े हैं कैलाश शर्मा गुरुग्राम से। आज की दुनिया फास्ट ट्रैक पर चल रही है, हर चीज़ बिना देरी किए हुए चाहिए। आज की जनरेशन में बिल्कुल भी ऐसा संयम नहीं है कि थोड़ी देर वेट करे। मेरी ग्रैंड डॉटर है 4 साल की, और वो भी मुँह से बोल नहीं सकती, और उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। बोलती है दादू अभी चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, तो हम बार बार फ़ोन पर ट्राई करते हैं, और हमें इतना पेशेंस नहीं है कि थोड़ी देर वेट कर लें। बिल्कुल सही कहा है आपने, एकदम से दिल को छूने वाली बात कही है। और पता है कि आज की जनरेशन को हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट सक्सेस,

और शायद इंस्टेंट रिश्ते भी। लेकिन ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं, सबसे प्यारी चीज़ें जो होती हैं, वो हमेशा तो वक्त मांगती हैं, टाइम मांगती हैं। आप एक पौधा लगाइए और उसको पेड़ बनने से पहले धूप चाहिए होती है, बारिश भी चाहिए होती है, और वो इन तमाम चीज़ों का इंतज़ार करता है वो छोटा सा पौधा, फिर जाके कहीं वो पेड़ बनता है। तो फिर इंसान अपनी मंजिल बिना पेशेंस के कैसे पा सकते हैं, ये थोड़ा सा हम सभी को, और बेसिकली मैं आज के जनरेशन की बात कर रही हूँ, जो युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम है, उनको थोड़ा सा अपने संयम को बढ़ाने की ज़रूरत है। कभी कभी वेट करना हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाता दोस्तों, बल्कि हमें पहले से ज़्यादा मजबूत और वो समझदार बना देता है। पुराने दौर के टाइम तुम्हें याद होगा, जब हम छोटे थे इनफैक्ट, और याद होगा जो भी हमारे जनरेशन के लोग हैं, हम जब छोटे थे तो चिट्ठियों का इंतज़ार कैसे करते थे, है ना, दरवाजे पर टकटकी लगाए, हाँ, डाकिये का इंतज़ार करते थे। और आज किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, व्हाट्सएप पर ब्लू टिक। ओहो, बस फ़र्क इतना है दोस्तों कि पहले इंतज़ार में अपनापन था और आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, बेचैनी है हर तरफ। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ देर हो रही है तो उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, या कहीं आपने अप्लाई किया है तो वहाँ से कॉल नहीं आ रहा है, तो आप एकदम फ्रस्ट्रेट होकर मत बैठ जाइए, है ना। तो उसे अपना फेलियर भी बिल्कुल मत समझिए, हो सकता है ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने आपके लिए बहुत ही बेहतर कोई चीज़ लिखी होगी। बिकॉज यू नो एवरी गुड थिंग्स टेक्स टाइम एंड पेशेंस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो पेशेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से तीनों हमारे जो लिसनर्स हैं वो जुड़ गए हैं। आज लिखते हैं कि आज की जनरेशन को मोबाइल का नेटवर्क यदि एक मिनट भी चला जाए तो उनको इंतज़ार नहीं होता। बिल्कुल सही लिखा है, मतलब ये क्या चीज़, ये जो मैं अभी बात कर रही थी आपके मैसेज से पहले, वो यही दिखाता है कि उनको पेशेंस ही नहीं है। अरे आ जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो, है ना। थैंक यू सो मच आप सभी का मैसेज करने के लिए। और एक और रोहिणी सेक्टर से सतीश कुमार जी जुड़ गए हैं। नमस्ते मैम, आपको भी प्यारा सा प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। लिखते हैं कि मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ मुझे इंतज़ार नहीं होता अगर बाथरूम में कोई हो। तो आप थोड़ा और जल्दी उठिए, अगर इंतज़ार नहीं तो थोड़ा सा और एक घंटा पहले उठ जाइए, है ना, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, फिर उसके बाद आप वॉशरूम जाइए। थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास आया, उसे भी ले लेती हूँ। यह है गुंजडूवारा से शमशुल कंवर राही। लिखते हैं, गुड इवनिंग गीता जी, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अब किसके पास इतना वक्त जो किसी का इंतजार करे, बस एक हम श्रोता ही हैं, हर शाम एफएम रेनबो का इंतजार करते हैं। वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी, ये तो सही बात है दोस्तों। आप मतलब जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो आपको इंतज़ार होता है कि MMM आएगा, मैसेज मसाला मिक्स का प्रोग्राम, और आपको इंतज़ार भी होता होगा कि आपके फेवरेट आरजेस होंगे, आपको किसका प्रोग्राम सुनना है। तो ये अच्छी बात है कि आप इंतज़ार करते हैं। थैंक यू शमशुल कमर राही साहब आपका मैसेज लिखने के लिए। और गुड इवनिंग ये हैं देवेंद्र त्यागी सहारनपुर से। आज के समय में सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिनका इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज़ मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार, ट्रू, वेरी ट्रू, मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार। दूसरी चीज़ मैसेजेस का रिप्लाई आने का इंतज़ार। इस भागदौड़ के समय में हर व्यक्ति इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि धैर्य इंतज़ार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। वही बात मैंने अभी आपसे कही थी कि आज की जनरेशन को रुकना और ठहरना सबसे मुश्किल काम लगता है, और वही आपने कहा इंटरनेट स्लो हो जाए, मैसेज का रिप्लाई ना आए तो बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को, है ना, रिप्लाई लेट आए तो इनसिक्योरिटी हो जाती है, और सक्सेस में थोड़ा टाइम लगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि लाइफ कोई रील नहीं है जो 30 सेकेंड से 60 सेकेंड से 1 मिनट में परफेक्ट बन जाती है। ज़िंदगी का असली मज़ा
उस सफ़र में है जहाँ इंसान धीरे धीरे सीखता है, गिरता है, संभलता है और फिर आगे बढ़ता है। हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है। वो ज़्यादा लेक्चर हो गया ना। चलिए बहुत प्यारा सा गाना सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट के आती हूँ। स्टे ट्यून्ड।

हे सुनिए सुनिए, आई होप आज की प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आ रही होगी। इफ यस, प्लीज डू राइट इनटू रेनबो 102.6 एफएम @gmail.com राइट नाउ। आपकी रिएक्शंस का, आपके प्यार का हमें इंतजार रहता है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आ रहा है, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक। टाइम हो गया है ठीक 6:40 होने वाले हैं और यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता आपके साथ। प्रोग्राम MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स।

मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं, आज की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी परेशानी को खुशी में बदलने का मैं वेट नहीं करता हूँ। गम तो जमाना देता है, चलो मुस्कुरा लेते हैं कोई बहाना बना के। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। बाकी आगे लिखा कि फोन का मैंने नोटिफिकेशन बंद कर रखा है, जो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, थैंक यू सो मच।

भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ जुड़े हैं जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। लिखते हैं, इंतजार तो सबको रहता है किसी ना किसी चीज का, बस इंतहा ना हो इंतजार की। हमें भी नई नई जगह पर यात्राएं करने का इंतजार रहता है और अभी भी हम यात्रा कर रहे हैं। वाह, यात्रा करना, घूमना फिरना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और सभी को इंतजार भी रहता है। थैंक यू सो मच।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रिपल एम यानी मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं गीता आपके साथ और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। लिखते हैं कि हम भी आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम और गीत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसका इंतज़ार आप और हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ख़ास तौर से हमारी ये जो जनरेशन है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज की

जनरेशन को वेट करना बिल्कुल भी नहीं आता, ये मेरा सवाल था। तो थैंक यू सो मच अब्बासी, पूरे अब्बासी परिवार को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और एक और आदिल कमर गुन्नौर से लिखते हैं, दूसरे के गम में भी मुस्कुरा देता हूँ मैं, अपनी हर परेशानी को भुला देता हूँ। थैंक यू सो मच आपका। और ये मैसेज आया, लिखते हैं कि कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स के प्रस्तुतकर्ता जी सादर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आज के दौर में छोटे से बड़े तक किसी को इंतज़ार करना पसंद नहीं है। सोशल मीडिया ने सबको तुरंत पाने की आदत दे दी है, लेकिन असली रिश्ते और सफलता आज भी धैर्य मांगती है, पेशेंस मांगती है। इसी पर कुछ पंक्तियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे इन्होंने लिखा है कि सीन होकर भी जवाब ना आए तो बेचैनी है, सीन होकर भी जवाब ना आए तो बेचैनी है, दो नीली टिक का मतलब अब जिंदगी मौत जैसी है, स्टेटस का व्यूज गिनते गिनते सब्र का दामन छूट जाता है। सच कहूँ तो आज के दौर में सब्र सबसे महंगी चीज़ हो गई है, जो पल में मिले वही अपना लगे, इंतज़ार की आदत कहीं खो गई है। फैंटास्टिक, ये लिखने वाले हैं गाँव ढाड़ी कुतुबपुर तहसील और ज़िला हांसी से रामधारी अवानावा। बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट आपने मैसेज किया है और थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ज़िंदगी का असली मज़ा उस सफ़र में है दोस्तों, जहां इंसान धीरे धीरे सीखता है, गिरता है, संभलता है, फिर आगे बढ़ता है। और हर चीज़ की टाइमिंग होती है, सूरज भी रोज़ अपने वक्त पर निकलता है, पहले तो नहीं निकलता ना। इसलिए अगर आपकी मेहनत का रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट मिल रहा है तो खुद पर डाउट मत कीजिए, खुद पर संदेह मत कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि अक्सर देर से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा ख़ास होती हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, फास्ट जो लाइफ होती है ना, फास्ट लाइफ में गिव क्विक मोमेंट्स बट पेशेंस गिव्स ब्यूटिफुल मेमोरीज, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एक और मैसेज आया है मेरे पास। मैडम जी नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। इंतज़ार करने के लिए, सब्र करने के लिए बस एक ही मंत्र मैंने अपना रखा है, गैस की लाइन हो या बैंक की लाइन हो या राशन की लाइन हो, मैं एक दिन में एक ही काम करता हूँ, पूरा दिन उसी के नाम कर देता हूँ, इससे टेंशन नहीं होती है। ये भी सही बात है, जब मल्टीटास्किंग हम होते हैं ना, या बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा काम, कई सारे काम करते हैं, तो कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है। तो आपने अपना जो वो है, अपना जो क्या बोलेंगे इसको, मतलब एक प्लानिंग जो है वो बहुत बढ़िया है कि एक दिन में मुझे एक ही काम करना है, तो इसलिए मुझे टेंशन कम होती है। थैंक यू सो मच। और एक मैं थोड़ी देर से जुड़ा हूँ इसलिए आज का विषय नहीं जान पाया, लेकिन कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से। तो जनाब, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मैसेज, अपना मैसेज का जो टॉपिक है वो बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसका इंतज़ार आप और हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर से आज की जनरेशन को इंतज़ार करना आता ही नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्त 9868107070। यह है 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम, MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स। मैं गीता आपके साथ हूँ।

प्रवीण चौहान जुड़े हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखते हैं भीड़ वाली जगह पर किसी का इंतजार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फंक्शन हो जैसे शादी उसमें भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जल्दी से भागो वहां से क्योंकि मैं अपने को भावनात्मक रूप से बहुत अकेला महसूस करता हूं, फिर नर्वस हो जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मत सोचिए, ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं नर्वस हो जाऊंगा? आप कोशिश करिए अपने दोस्तों में बैठने की और फंक्शंस में को अटेंड करने की, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाएं और थोड़ी देर बैठे, एंजॉय करें उस मोमेंट को दोस्त। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से लिख रहे हैं कि सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आज की पीढ़ी परिणाम और सफलता का इंतज़ार नहीं कर सकती। बिल्कुल सही लिखा आपने, थैंक यू सो मच। और सरफराज आलम ने एक बार फिर लिखा है कि आज की जनरेशन सब कुछ फास्ट चाहती है, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन रिश्ते, भरोसा और सफलता आज भी थोड़ा इंतज़ार और सब्र मांगते हैं और धीरे धीरे कहीं ऑफलाइन होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। शायद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो प्रॉब्लम है वो इंतज़ार में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ जल्दी चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, छोटी खुशियों को फील करना हम भूल गए हैं। अब मसलन हम सनसेट देखने गए हैं कहीं पर, सनसेट व्यू है और वो हम देख रहे हैं, तो सनसेट देखने से ज़्यादा मज़ा लोग उसकी स्टोरी अपलोड करने में लेते हैं। कमाल है, हद हो गई बिल्कुल, है ना। फैमिली के साथ बैठे होते हैं लेकिन अटेंशन कहाँ होती है, अटेंशन मोबाइल को देते हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप उसको सही कर लें तो सही मायने में जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा सा बहुत, उसका जो माइंड सेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा।

कि गीता जी नमस्ते, मैंने आपका पूरा प्रोग्राम सुना है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका तलफ़ुज बहुत लाजवाब है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच। जब ऐसा कोई लिखता है तो वाकई में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं ना, तो ऐसा लगता है वाकई में उसका फल हमें मिल गया है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, और अपना जो बेशकीमती वक्त है वो निकालते हैं, साथ ही मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लिसनर्स का, क्योंकि अब शायद मैं आपसे और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि 7 बजे आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद 8 बजे आपसे मेरी मुलाकात होगी।

वेल दोस्तों, इस खूबसूरत सफर के आखिर में दिल से एक छोटा सा थैंक यू आप सभी को कहना चाहूंगी, आप सभी लिसनर्स का जिन्होंने इस प्रोग्राम को यानी ट्रिपल एम को इतना सारा प्यार दिया, मैसेजेस किए, सिर्फ आपने सुना ही नहीं बल्कि अपने लवली मैसेजेस के जरिए इस महफिल को बहुत ही स्पेशल बना दिया। आपके हर मैसेज में जो इमोशंस थे, जो वॉर्म थी, वही हमारे शो की असली स्ट्रेंथ है। थैंक यू सो मच। अभी 7 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद लिपिका आपके साथ होंगी और मेरी मुलाकात दोबारा से आपसे होगी ठीक 8 बजे। तब तक चलती हूँ, बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण

ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Welcome back to the Delhi studio. So people, this is AIRS FM Rainbow 102.0 megahertz is the frequency, and you are listening to Friday Fiesta, the program that always brings you latest global releases. So football lovers across the world are counting sleeps, isn't it? I'm one of them. Less than 4 weeks left for world's biggest sporting event, FIFA World Cup 2026. And you know what? The mega stars for the opening ceremony of the tournament have been announced. For the first time, this tournament is taking place in the United States. And artists who will be headlining the opening ceremony are Katy Perry, rapper Future, Brazilian singer and actress Anita, Nigerian singer, songwriter, rapper, any guess? Rema, yes, K-pop sensation Lisa of

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:02। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जी हाँ, जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। ये है 102.6 FM रेनबो और मैं हूँ गीता। ठीक 9 बजे तक आपके साथ रहूंगी। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वेल, दोस्तों, इस स्टूडियो की घड़ी अब बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि अब जरीन प्रोग्राम लेकर आएंगी ठीक 9 बजे। आप उनके साथ रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम करती हैं वो। मैं चलती हूँ, गुड नाइट।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त जरी। जी हाँ, जहाँ हर लफ्ज में बसती है मोहब्बत और हर धुन में छुपा है एहसासों का जादू। इस खूबसूरत शाम को लेकर आ गई हूँ मैं, जहाँ दिल से निकली कुछ बातें होंगी, खूबसूरत शायरियाँ होंगी और साथ में होंगे फिल्मी गीत, खासकर 90 के दशक वाले। बहरहाल, ये अगला ट्रैक जो सबसे पहले आपके लिए प्ले कर रही हूँ वो है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। जी हाँ, फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये शानदार ट्रैक आपके लिए।

और क्या क्या ही कहें आपको, कभी कभी ना मोहब्बत सिर्फ इजहार में नहीं होती साहब, वो खामोशियों में भी सुनाई दे जाती है। जब कोई बिना कुछ कहे आपकी हर बात समझ जाए, वही तो असली प्यार होता है। अगर आपके दिल में भी कोई है तो आज ही उसे बता दीजिए, क्योंकि मोहब्बत छुपाने से नहीं जताने से बढ़ती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। इस वक्त मैं आपके साथ आपकी दोस्त जरी हूँ। ये अगला मदमस्त ट्रैक आपके लिए शुद्ध देसी रोमांस का मोहित और सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: है मेरी लव लाइफ।
1: होता क्या है, कभी कभी दिल की हर धड़कन में किसी अपने का नाम इस कदर बस जाता है कि उसके बिना इस जहाँ का हर सुकून जैसे अधूरा सा लगता है। वो मिल जाए तो ज़िंदगी रंगीन सी लगती है, वरना उसके बिना हर ख्वाब अधूरा सा लगता है। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? खैर, हुआ है या नहीं हुआ है, ये एहसास से आप रूबरू हो सकते हैं अगर इस गाने को आंखें बंद करके

102.6 माइंड ब्लोइंग मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त मैं आपके साथ हूँ ज़रीन। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया 9:16। कहीं फिसल ना जाऊँ तेरे ख्यालों में चलते चलते, अपनी यादों को रोको, मेरे शहर में बारिश हो रही है। वैसे बारिश के पानी का भी क्या अजब खेल है ना, न कोई रंग होता है न कोई रूप होता है बारिश के पानी का। जब बरसता है तो सारी कायनात को रंगीन बना देता है, जहां से गुजरता है उसे ही अपना आकार दे देता है। ये मौसम बहुत सुहाना लगता है इस गाने की तरह।

वैसे साहब कह सकते हैं कि रोमानियत का मौसम भी मोहब्बत के मौसम से कुछ कम नहीं होता। एक कप गर्म कॉफी, हल्की धुंध और किसी अपने का साथ, बस और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना।

अगर आपके दिल में भी किसी मौसम से जुड़ी कोई प्यारी सी याद है या कोई ऐसा इंसान जिसे आप इस मौसम में सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, तो ये जो अगला ट्रैक हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं डेफिनेटली आपके दिल को छूने वाला है। मौसम भले ही बदलते रहे लेकिन कुछ एहसास हमेशा दिल में ठहर जाते हैं। ऐसी ही रोमानियत को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए और सुनते रहिए FM रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक। अगला ट्रैक अरमान मलिक की आवाज़ में आपके लिए है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: इट्स 9:35 बाय द स्टूडियो क्लॉक। मैं आपके साथ इस वक्त जरीन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। जब आपको लगे सब कुछ भीतर से खाली हो गया है, लफ्ज थक गए हैं और मन में बस शोर बाकी बचा है, तब आप हमारे पास चले आई। जी हाँ, जब गुस्सा तर्क से ज्यादा तेज दौड़ने लगे, हाथ घबराहट में कांपने लगे, आंखें जवाब ढूंढने लगे, तब भी ना आप हमारे पास चले आई। मैं कोई सोल्यूशन नहीं बनूंगी आपके लिए, ना ही कोई उपदेश दूंगी, बस एक ठहराव बन जाऊंगी जहां आपका गुस्सा

धीरे धीरे सांस लेना सीखेगा, ठंडी सांसें, राहत भरी सांसें। मैं सक्षम हूं आपको संभालने के, आपके उस पल को संभालने के लिए जिसमें जब आप टूट जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, तो हम बस कुछ मधुर संगीत का सहारा दे देते हैं, सुरीले गीत आप तक पहुंचा देते हैं और कंधा दे देते हैं। कुछ ऐसा ही टची गाना है ये अगला, शंघाई फिल्म का, नंदिनी श्रीकर और अरिजीत सिंह की आवाज़ में, वेरी टची सॉन्ग।

0: आत्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: यू नो दोस्तों, जिंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग जो है ना, गलतियां कर करके उसे बेहद मुश्किल बना देते हैं। हर कोई जिंदगी में खुश रहना चाहता है, पॉजिटिव होना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि अच्छी फैमिली, बहुत से दोस्त, हेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक हैप्पी लाइफ के लिए एनफ नहीं होता। लेकिन हम ना अपनी पूरी जिंदगी लोगों के साथ खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिता देते हैं, अपने आप को लकी मानने के बजाय ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, और उस चक्कर में ज़िंदगी क्या है और कैसे जीनी चाहिए उसका ना स्वाद चखना ही भूल जाते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ज़िंदगी में, वही असली खुशी है। और हाँ, किसी के दर्द को महसूस कर लेना ही सच्ची इबादत है। कहते हैं ना कि हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से खुश नहीं होता, जो आंसू पोंछ दे बेआवाज होकर, वही इंसान रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। मोहब्बत, रहम और इंसानियत बांटते चलिए, क्योंकि यही वो दौलत है जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। इशक ज़ादे फिल्म का ये अगला सुपर्ब ट्रैक, जावेद अली की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट। आप सुन रहे हैं FM रेनबो इंडिया, 9:43 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक।

0: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: मैं क्या सोचती थी अक्सर कि जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, नहीं? फिर बड़े हुए तो लगा जॉब मिल जाए सब सेट हो जाएगा, फिर लगा प्यार व्यार मिल जाए तो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हर बार जब हम एक डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं ना, तो दिल कहता है फिर बस इतना सा। शायद इसलिए क्योंकि हमने रास्ते के उन लम्हों को महसूस ही नहीं किया, वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो अनजानी मुलाकातें, वो गिरना संभलना, फिर से चलना, फिर से दौड़ लगाना। ये जो जर्नी है ना लाइफ की, यही तो हमें बनाती है, यही हमें सिखाती है कि हम आखिर हैं कौन। तो आज थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, समझिए, सांस लीजिए और अपनी जर्नी को फिर से महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी डेस्टिनी से ज़्यादा खूबसूरत ना जर्नी होती है। जैसे कि ये प्रोग्राम, इसमें हम आएँ आपसे बातें की, कुछ गाने चलाएं, और जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है तो दिल धक से कर रहा है कि अरे यार ये सफ़र ना यहीं पर रहने देते। बट हर जर्नी की एक डेस्टिनी होती है और वो तो होएगी ही ना, तो फिलहाल रास्ते को ही एंजॉय किया जाए। अगला ट्रैक अलका जी की आवाज़ में, फिर तेरी कहानी याद आएगा, ये 90s का सुपरहिट गाना।

अब प्रोग्राम के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां पर हमें आपसे इजाज़त लेना होगा, लेकिन इस वादे के साथ जाएंगे कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारी रंगे महफिल में खूबसूरत गज़लों के साथ 11 से 12। वैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये शहर ये गलियां जब जब मेरे सामने आए, किसी नए इश्क की तरह तुम बड़ी शिद्दत से याद आए, बड़ी शिद्दत से याद आए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक

0: संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी दूसरी यात्रा के चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और इनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुटुरपत्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कल मेडिकल कॉलेज में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये फैसला ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर-17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते। इससे पहले एशियाई अंडर-15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते थे। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल आपका रंगे महफिल में, जहां हर लफ्ज में बसती है मोहब्बत और हर धुन में छुपा है एहसास का जादू। मैं हूं जरी, आपकी हमसफर, और इस खूबसूरत रात में दिल से निकली कुछ बातें लेकर आई हूं, कुछ शायरी और कुछ गजलें।

जी हाँ, कहते हैं तिश्नगी रोज मुलाकात में रह जाती है, मेरी हर एक बात कहीं बात में रह जाती है। इस तेज

ये फन अता किया है तो इतना कमाल दे, वो शेर कह सकूं कि जमाना मिसाल दे, किस इम्तहान में दोस्तों कैसा सवाल दे, ये जिंदगी है कब किसे उलझन में डाल दे। आप सुन रहे हैं रंग महफिल जर्री के संग। अगली गजल पंकज उदास साहब की आवाज में।

आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 11:15। कुछ लोग महफिलों की रौनक होते हैं और कुछ लोग खामोशी में भी याद आते हैं। रंगे महफिल के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूँ जरी। महफिल सजी थी, लोग भी थे, बातें भी थी, फिर भी कहीं एक अधूरापन सा था। शायद कुछ रिश्ते आवाज़ से नहीं बस एहसास से पूरे होते हैं। आप क्या कहते हैं?

एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती। इश्क वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। कितने बेबस हो जाता है ना इंसान। अब वो किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता।

0: रंगी महफिल में हर कोई मुस्कुराता मिला, कोई अपनी जीत पर कोई हालात छुपाता मिला। अजीब दौर है साहब, यह चेहरों के पीछे हर शख्स थोड़ा छूटा मिला।
1: कूद फलांग अगर पसंद हो आपको और इजाजत हो तो गजल के साथ एक छलांग लगाएं। एकदम 80s में दाखिल हूं।
2: एक दौर ऐसा आया था कि सुधा जी का भी काफी नाम था प्लेबैक सिंगिंग में, तो उन्होंने भी एक गजल का रिकॉर्ड बनाया जो कि मैंने कंपोज किया था। चलिए उसी से एक गजल सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं रंगी महफिल। इस वक्त मैं आपके साथ जर्रीन, प्रोग्राम जहां हर लफ्ज में बसती है मोहब्बत और हर धुन में छुपा है एहसास का जादू। मैं नाज आपके हम सफर और आज किस खूबसूरत रात में लेकर आई हूं दिल से निकली कुछ बातें, कुछ शायरी, कुछ गजलें। कहते हैं कभी कभी मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं होती, वो खामोशियों में भी सुनाई देती है। जब कोई बिना कुछ कहे आपकी हर बात समझ जाए, वही तो असली प्यार है। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी ही बात है तो बता दीजिए, क्योंकि कहते हैं मोहब्बत छुपाने से नहीं जताने से बढ़ती है।

आज की रात थोड़ी तन्हा है, थोड़ी महकी हुई है, बिल्कुल उस एहसास की तरह जब दिल के पास सिर्फ यादें होती हैं और एक हल्का सा दर्द भी। कभी कभी ना जिंदगी के सफर में हम भीड़ में होते हुए भी बेहद अकेला महसूस करते हैं, और कभी एक शख्स की याद ही पूरी दुनिया बन जाती है। चांद भी आज उदास सा लगता है, जैसे उसको भी किसी का इंतजार है। हर कोई खिड़की पर बैठा सोचता है कि क्या उसे मेरा ख्याल होगा।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है। यह

0: सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: 102.6 पर आप सुन रहे रंगे महफिल, इस वक्त में जरी आपके साथ। आज दिल कुछ ज्यादा ही खामोश है, लेकिन इस खामोशी में भी एक सवाल बार बार उठ रहा है। बारहा दिल में एक सवाल आया, क्यों कुछ बातें हम कह नहीं पाते किसी से, क्यों कुछ एहसास दिल में ही रह जाते हैं। और फिर आज अचानक ये ख्याल आया, आज जब सोचा तो ये ख्याल आया दिल में कि क्या होता अगर हम वो कह देते जो सालों से दिल में छुपा के रखे हैं। शायद कुछ बदल जाता या फिर सब कुछ वैसा ही रहता। लेकिन जनाब, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, बस वो हमारी धड़कनों के साथ जीते रहते हैं। अगर आपके दिल में भी ऐसा ही कोई सवाल है तो ज़रा उसे महसूस कीजिए। शायद जवाब ना मिले, लेकिन सुकून ज़रूर मिलेगा इस गज़ल की तरह।

0: फूल खिलते हैं।
1: 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम रंगे महफिल इस वक्त जारी है। मैं आपके साथ जर्री। वो कहते हैं कि एक आह, एक गहरी सांस जो उसे असर करने में पूरी उम्र लग जाती है और तब शायद इंसान जिंदा भी न रहे। और दूसरी लाइन में किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि अपने महबूब की जुल्फों की उलझनों की बात की जाए तो उन उलझनों के सुलझने तक कौन जीता है भला। यानी यूं कहें कि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं बल्कि सब्र और इंतजार का भी नाम है। यही बातें चंदन दास जी कह रहे हैं अपनी अगली गजल में। पेश खिदमत आपके लिए।

ये गजलें, ये गीत बस रोमानियत ही नहीं फरमाते हैं, बल्कि ज़िंदगी की हकीकत भी बताते हैं हमें कि इस दुनिया से किस तरह से हमें बावस्ता होना है। बहरहाल, इस वादे के साथ जा रही हूँ कि अगली दफ़ा आपसे इसी खूबसूरत मोड़ पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक

0: में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTE की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कल हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पांच सेकंड हुए हैं, आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।

0: अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम का अगला गीत है इस रात की सुबह नई फिल्म से, आवाज चित्रा और एमएम करीम की।

चुप तुम रहो चुप हम रहे। इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था इस रात की सुबह नहीं। और अब जो गीत है वो है हम चुप हैं ये दिल सुन रहे हैं, और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है फासले।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों जीरो आर शो में आइए अब सुनवाते हैं आपको कसूर फिल्म का गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी

0: भी आसान बनाई गई हैं। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: और दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल का गाया फिल्म बाहर आने तक का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया।

ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनल पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पहले महीने में पुलिस ने 806 लोगों को गिरफ्तार किया और 724 मामले दर्ज किए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधान

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसे ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और UAE ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. D. पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी।

समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाई ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सरगम के साथ। संगीत के तो सिर्फ सात ही सुर हैं, मगर पंचम की शख्सियत में बेपनाह सुर थे और सारे के सारे हमने एक साथ जिए। अब ये एक और परिचय है उसकी चुप का, जो तभी बीतेगा

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने हुरमूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के

प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम की अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माही, दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, जारी है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगतोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगतोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।

ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

0: संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने उनकी अबूधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगोले और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिकोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के बीच अस्थिर युद्ध विराम रविवार को समाप्त होने वाला था। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत।